सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58.24 हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना।

0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम ओ वंदना।

जब ये प्रातःकाल आँख खुले प्रभु, तो बस ऐसे शुभ पावन बेला पर एक नई सुबह आपकी ही कृपा से तो मिली है। तो आपके स्मरण के साथ, नमन के साथ हर सुबह हो।

इस सांसारिक जग यानी कि जीवन में आकर नाना प्रकार के विषय वासनाओं से ग्रस्त होकर यह मन जो पावन होता है, आत्मा जो पावन होती है, प्राण जो पावन होते हैं, वह उसके विकार में ग्रस्त होकर और तमाम यानी कितने कर्म प्राणी करता है, और जब उसे खुद का जब होश आता है तो फिर यह मन तो फिर कहीं उठता है ना कि हे प्रभु, हमसे जितने भी अपराध हुए, जो भी हमसे कर्म हुआ, बुरा कर्म हुआ, किसी को तकलीफ हुई, लेकिन प्रभु मैं तो अब तुम्हारी शरण हूँ, पश्चाताप के साथ आपकी शरण में आया हूँ। जो भी मेरे कर्म रहे और अब आपकी शरण हूँ प्रभु, बारी तो अब आपकी है।

0: आप सुन रहे थे अभी संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वरों में भक्ति परक रचनाएं आपने सुनी वे गायक स्वर थे ब्रह्माचारी भगवान दास, सुखदेव दास, अनूप जलोटा, लता मंगेशकर और किशोरी अमोनकर के। साथियों, आज का ये वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है चिंतन बिंदु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है आज योग साधना संबंधी विचार। आलेख डॉक्टर चंद्र किशोर पाठक और स्वर अंजू पांगती का है।
1: दर्शन में योग अपनी संपूर्णता के साथ विकसित होकर सर्वव्यापक हो गया है। आज इसका प्रचार प्रसार हर ओर परिलक्षित हो रहा है। योग साधना के दो मार्ग हैं, पहला तपस्या का और दूसरा समर्पण का। तपस्या का मार्ग कठोर है। इस मार्ग में सर्वथा अपने ऊपर ही निर्भर रहकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आगे बढ़ा जाता है। अपनी शक्ति के परिमाण में ही ऊंचे उठकर उसी के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। इस मार्ग में नीचे गिरने का भय सदा लगा रहता है। तपस्या भंग होने पर या इससे पतित होने पर भयंकर दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। योग का दूसरा समर्पण का मार्ग निरापद और निश्चिंत है। पाश्चात्य सभ्यता वालों को इस मार्ग में कठिनाई होती है। इसका मुख्य कारण है कि वे व्यक्तित्व की भावना को अपनी माँ के दूध के साथ ग्रहण करते हैं। समर्पण में व्यक्तिगत हित का ही तो त्याग है। बंदर के बच्चे और बिल्ली के बच्चे में से किसी एक का मार्ग अनुसरण किया जा सकता है। बंदर के बच्चे को इधर से उधर तक ले जाए जाने के लिए अपनी माँ की छाती से चिपक जाना होता है। उसे अपनी माँ को कस कर पकड़े रहना पड़ता है और यदि कहीं उसकी मुट्ठी ढीली हो जाए तो वो गिर जाता है। दूसरी ओर बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता, वरन उसकी माँ ही उसको पकड़े रहती है। इसीलिए उसे न कोई भय होता है और न उसका कोई दायित्व। उसे तो केवल इतना ही करना पड़ता है कि अपनी माँ की पकड़ में आ जाए और तब तक माँ माँ पुकारता रहे। ये समर्पण भाव यदि पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार कर लिया जाए तब इसमें कोई गंभीर कठिनाई अथवा भय नहीं रहता। योग का ये मार्ग अत्यधिक सुरक्षित और सभी चिंताओं से विमुक्त करने वाला है। नैष्ठिक और सच्चा प्रयास न करने वालों के लिए योग का ये मार्ग अधिक अच्छा परिणाम नहीं देगा। मानवीय विषयों में आडंबर या धोखाधड़ी आ सकती है और एक सीमा तक उसमें सफलता भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवान के साथ व्यवहार में धोखे का कोई स्थान नहीं होता। वरन इसके विपरीत कभी भयंकर दुष्परिणाम सामने आते हैं। हम भगवान को धोखा दे भी नहीं सकते। चाहे किसी भी मार्ग का अनुसरण किया जाए, व्यक्तिगत प्रयास तब तक सदा आवश्यक होगा जब तक कि तादात्म्य का क्षण न आ जाए। उस समय स्वयं में से एक नया स्वरूप प्रस्फुटित होता है। पहले जो अदृश्य था वो सम्मुख आ जाता है। पहले जो असंभव था वो संभव हो जाता है। संपूर्ण परिस्थितियां और मार्ग सहज सुगम हो जाती हैं। भारतीय संस्कृति में किसी के समक्ष स्वयं का समर्पण उसको महान बनाता है। बात है समर्पण के उस प्रयोजन की और उस लक्ष्य की जो उसे महान से महान बनाता है। लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण निष्ठा और समग्रता से बढ़ जाना सफलता का निश्चित सोपान है।

चिंतन बिंदु क्रम में अभी आप सुन रहे थे योग साधना संबंधी ये विचार, आलेख डॉक्टर चंद्रकिशोर पाठक और वचन अंजू पांगती का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततोगत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूँगी। मंथरा अपने स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आँखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे सुबह 9 बजे हिंदी वार्ता क्रम में महेश चंद्र गोस्वामी की वार्ता, विषय होगा नदियां हमारी जीवन धाराएं। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय वही रहेगा हमेशा की तरह सुबह 9:25 का। आज इस कार्यक्रम में राजेश महावर जानकारी देंगे संतुलित पर्यावरण मनुष्य की आवश्यकता। ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:30 पर। दोपहर 12 बजे का समय रहेगा श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम का, गीत बात एसएमएस और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुन सकते हैं शाम 7:31 पर। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज रांझा गायन, प्रस्तुत करेंगे भगवान दास अज्ञानी। बहनें कार्यक्रम सुन सकेंगी दिन में 1:15 पर। वनिता लोग आज इस कार्यक्रम में किशोरियों में पोषण और एनीमिया से बचाव और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इन विषयों पर चर्चा और इसी कार्यक्रम में आगे आरोग्य भेंट वार्ता में थायराइड कारण लक्षण और निदान, इस विषय पर डॉक्टर बीवी गर्ग से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता भी बहनें इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगी। साथ ही कुछ घरेलू टिप्स और फिल्म संगीत भी प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 2:30 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा। आज इस कार्यक्रम में काव्यांकुर में विजय महाजन प्रस्तुत करेंगे काव्य पाठ।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर ए हरिहरन, उत्तरा केलकर और मिताली बी सिंह के संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज अशोक कुमार जोशी वार्ता प्रस्तुत करेंगे ब्रज में यमुना नदी के प्रमुख घाट और विनको इतिहास इस विषय से संबंधित। और संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 6:50 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज सुनिएगा दिलीप यादव की ली गई भेंट वार्ता डॉक्टर एस के झा से। विषय होगा सरसों की लाभकारी खेती। रात्रि 10:00 सत्यनारायण केशोरैया की लिखी गई नौटंकी हम सुधरे और जग सुधरे ये नौटंकी आप सुनेंगे। प्रस्तुति रामगोपाल की होगी। और प्रातः 7:31 पर सुनिएगा ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज कवि मुखसो क्रम में रत्नेश दत्त चतुर्वेदी का काव्य पाठ। प्रातः 7:00 का समय रहेगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: श्रोता साथियों, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में आइए जानकारी लेते हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार सारस्वत से, सरसों फसल बुवाई की तैयारी।
1: राई सरसों की खेती विभिन्न और कई प्रकार की मिट्टी वाली भूमि में की जा सकती है, परंतु सबसे उपयुक्त इसके लिए जो भूमि है वो दोमट मिट्टी वाली होती है। हालांकि इसकी खेती भरपूर उपज हल्की दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी तक ली जा सकती है। मिट्टी गहरी और संतोषजनक जल धारण क्षमता की होनी चाहिए। फसल के दौरान पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। उत्तम जल निकास की उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। समतल खेत होना चाहिए। मिट्टी के सबसे वांछित पीएच जो है वो 7 से लेकर 8.2 है। अत्यधिक क्षारीय, लवणीय और अम्लीय मिट्टी से उत्पादकता पर असर निश्चित पड़ता है।

0: हालांकि यह फसल अन्य फसलों के बनस्पत हल्की लवणीय भूमि जिसको के जिसकी ईसी 4 से कम में भी अच्छी पैदावार दे देती है। लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए भूमि सुधार के पहलुओं और किस्म चुनाव में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राई सरसों की अच्छी पैदावार के लिए ठीक से खेत तैयार करना जरूरी है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बरानी क्षेत्रों में भूमि तैयार के वक्त नमी संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भूमि की तैयारी वर्षा ऋतु से ही शुरू हो जाती है। खरपतवार नष्ट करने और नमी संरक्षण के लिए मिट्टी पलटने वाला हल से एक गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद हर बारिश के बाद खेत की जुताई करें तथा जुताई के तुरंत बाद उसमें पाटा लगाएं। यह नमी संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि संभव हो तो खेत की जुताई शाम के समय करके खुला छोड़ दें ताकि रात्रि में ओस से नमी मिल सके और प्रातः धूप तेज होने से पूर्व ही उसमें पाटा लगाया जा सके। अंतिम बारिश के बाद गहरी जुताई करके पाटा लगा करके नमी को संरक्षित करें। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो बारिश का पानी है मिट्टी में जाएगा और मिट्टी के लवण की कुछ मात्रा भी जड़ क्षेत्र से नीचे चली जाएगी। बुवाई से पहले फिर कल्टीवेटर से दो आड़ी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना दें। खेत में ढेलों का होना अवांछनीय है क्योंकि इसमें नमी का तेजी से ह्रास होता है। द्विफसलीय अथवा सिंचित क्षेत्रों में बुवाई के लिए भूमि की तैयारी खरीफ फसलों के कटाई के बाद पलेवा दे करके प्रारंभ की जाती है। पलेवा के बाद दो या तीन जुताई हल्की या भारी मिट्टियों के लिए करें और पाटा लगाएं। हर दशा में खेत की मिट्टी को भुरभुरा और समतल बनाएं। फसल को भूमिगत कीड़ों से बचाने के लिए भूमि उपचार भी आवश्यक है। इंडोसल्फान 4% या क्यूनल्फास 1.5%, इनमें से कोई भी दवा 25 किलोग्राम चूर्ण के रूप में मिलती है। एक हेक्टेयर क्षेत्र में आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिलाएं। इससे भूमिगत कीटों से फसल का बचाव होगा। अगर आपकी भूमि क्षारीय है तो मिट्टी की जांच के अनुसार जो भी जिप्सम की आवश्यकता है उसे वर्षा ऋतु से पहले ही मिट्टी में मिलाएं। मिट्टी जांच से अभिप्राय है कि किसी खेत की मिट्टी उपजाऊ शक्ति का सही मूल्यांकन करना और वैज्ञानिक जांच के आधार पर उर्वरकों और आवश्यक भूमि रसायनों की सही मात्रा का जायजा लेकर के उनका इस्तेमाल करना ताकि किसी भी खेत से किसान भूमि के स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए निरंतर अच्छी पैदावार ले सके। आमतौर पर मिट्टी जांच से हमें यह मालूम होता है कि भूमि में उपलब्ध नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास आदि पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है। भूमि की बनावट कैसी है। भूमि उस फसल के लिए उपयुक्त है भी कि नहीं जिसकी खेती हम करने जा रहे हैं। जो फसल हम बोने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी और कितनी खाद डालनी चाहिए। भूमि के लिए किसी भूमि सुधारक रसायन जैसे कि ऊसर भूमि के लिए जिप्सम या पायराइट्स की और अम्लीय भूमि के लिए चूने की आवश्यकता होती है और कितनी इसकी आवश्यकता की जरूरत है और कितने हमको भूमि सुधारक रसायन है इनका इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मिट्टी की जांच भी कराई जाती है।
1: सरसों फसल बुवाई की तैयारी इस विषय पर कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत आप अभी जानकारी सुन रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारसों से। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुशीफलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। भारत फ्रांस मैत्री सम्बन्धान् प्रशंसयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पेरिस नगरे स्वामीनारायण मन्दिरस्य उद्घाटनम् अकरोत्। तेन राष्ट्रपति मैक्रों वर्यस्य योगदानं संस्मृत्य प्रोक्तं यत् एआई प्रौद्योगिक्याः अथ जलवायु संकट निवारणस्य दिशि उभौ देशौ जागतिक नेतृत्वं वहतः। मन्दिर निर्माणं सांस्कृतिक सेतुरूपेण कार्यं करिष्यति इति तेन प्रतिपादितम्।
1: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां भारत के प्राचीन विचार और मानवीय

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जो कि आप जानते हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित होता है। तो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का ये पहला गीत साथियों आप सबकी नजर इस किस्से है।

आप सुन रहे थे अभी मुकेश की आवाज़ में फिल्म मेला के इस गीत को। शब्द रचना शकील बदायूं की थी और संगीत नौशाद साहब का था। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

उनकी गीत को लिखा था शकील बदायूं ने, संगीत नौशाद साहब का था। अब ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी ये खूबसूरत सा गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, फिल्म दिल ही तो है से के ये गीत था। लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत रोशन का। अब ये अगला गीत।

शारदा और मुकेश की, वो मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में आप अभी सुन रहे थे तुमसे अच्छा कौन है का फिल्म का ये गीत। आज का ये कार्यक्रम साथियों इसी गीत के साथ यहीं पर संपन्न होता है। अगला प्रसारण अब से कुछ ही देर में।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, 800 परिवारों में बांटी राहत सामग्री। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की, प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद के दिए निर्देश। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के करीब 2 दर्जन जिले बाढ़ से प्रभावित, बारिश के कारण हुए अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी जनगणना, 16 से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा स्वगणना का

0: विकल्प। और यूपी टी20 लीग के फाइनल मुकाबले में मेरठ मैवेरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को 94 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित 800 परिवारों को राहत सामग्री, आश्रयहीन परिवारों को आवास के लिए भूमि आवंटन प्रमाण पत्र और राहत राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में पूरी मजबूती और संवेदनशीलता के साथ खड़ी है।
1: आपदा की इस घड़ी में आप सबको राहत सामग्री के साथ साथ मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता तो प्रधानमंत्री आवास और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे दो।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट में SDRF और PAC की अतिरिक्त कंपनियों को बाढ़ नियंत्रण, राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। श्री योगी ने कहा कि फसल नुकसान का सर्वे भी करवाया जाएगा और आकलन के आधार पर राहत राशि मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को राहत शिविरों में भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा की समुचित तथा प्रभावी व्यवस्था के निर्देश दिए। इस दौरान श्री योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाढ़ प्रभावित जनपद चित्रकूट के निरीक्षण के बाद अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए, फसल तथा मकान की क्षति का तत्काल सर्वे कराकर पात्र लोगों को नियमानुसार मदद दी जाए। मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी नदी के कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण का चिन्हांकन कर उसे हटाने, नदी पर बने फुटओवर ब्रिज का सेफ्टी ऑडिट कराने तथा मंदाकिनी में सीवर और नालों का पानी किसी भी दशा में न जाने देने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने चित्रकूट धाम के व्यापार और मठ मंदिरों को हुए नुकसान का आकलन कर सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसल क्षति का सर्वे शीघ्र पूरा कराया जाए और पात्र किसानों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रदेश में भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और कई नदियां अब भी उफान पर हैं। एक रिपोर्ट।
3: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। प्रशासन ने गर्रा और खाखरा नदियों के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के कारण लगातार कटान हो रही है और यातायात बाधित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्रावस्ती जिले की जमुनहा तहसील के वीरपुर लोहकैया में राप्ती नदी के तेज बहाव से आसपास की जमीनें जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ और बारिश को देखते हुए बिजनौर, बदायूं, रामपुर और पीलीभीत के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। भारी बारिश से कल कानपुर में मकान गिरने से 4, बदायूं में 1, वहीं महोबा में एक गड्ढे में बरसात का पानी भर जाने के कारण उसमें डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में जनसंख्या की गणना आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक की जाएगी।
4: यूपी उत्तराखंड सहित चार राज्यों के मैदानी इलाकों में जनसंख्या की गणना 1 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 4 जनवरी तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा राज्यों में 2027 के शुरू में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को समय से पहले कराया जा रहा है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने इस संबंध में जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा है कि इन क्षेत्रों के लोग 16 नवम्बर से 30 नवम्बर तक

0: सम जानकारी दर्ज कराने का विकल्प अपना सकते हैं। मुख्य गणना के बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी तक संशोधन चक्र भी चलाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: ब्रिक्स समूह के सहभागी देशों के मुख्य न्यायाधीशों सहित 65 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल ने कल आगरा में ताजमहल और वहां का किला देखा। एक रिपोर्ट।
2: प्रतिनिधिमंडल में रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया सहित 10 से ज्यादा देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। हल्की बारिश के बीच ताजमहल पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने ताज के सौंदर्य को निहारा और डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया। सदस्यों ने ताजमहल के इतिहास, निर्माण शैली और पच्चीकारी कला के बारे में भी विस्तार से जानकारी हासिल की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल आगरा किला पहुंचा और वहां के कई ऐतिहासिक स्थलों तथा मुगल कालीन स्थापित्य कला को देखा। सज्जन सागर, आकाशवाणी आगरा।
1: हज 2027 के लिए चयनित आजमीने हज संबंधी मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस दो चरणों में कराना अनिवार्य किया गया है। इसमें पहला चरण चयन के बाद और दूसरा हज यात्रा की उड़ान से पहले कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव मोहम्मद तारिक ने बताया कि पहले चरण में आजमीने हज को सरकारी चिकित्सा केंद्र से एलोपैथिक डॉक्टर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। इस सिलसिले में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी T20 लीग के फाइनल मुकाबले में कल मेरठ मावेरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को 94 रनों से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेरठ की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम 109 रन पर ही ढेर हो गई। संभल जिले के बहजोई इलाके में कल सुबह एक ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर बमरेटा गांव के समीप उस समय हुआ जब सवारियों से भरी एक टेम्पो की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और मेरठ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में कराई गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। 800 परिवारों में बांटी राहत सामग्री। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद के दिए निर्देश। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के करीब 2 दर्जन जिले बाढ़ से प्रभावित। बारिश के कारण हुए अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी जनगणना। 16 से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा स्वगणना का विकल्प। और यूपी T20 लीग के फाइनल मुकाबले में मेरठ मावेरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को 94 रनों से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: श्रोता साथियों, आप सब बढ़िया ही होंगे। हम तो यही राधा रानी से दुआ करें हैं कि आप हमारे सब श्रोता साथी जो हैं वे सब राजी खुशी रहें, स्वस्थ रहें। तभी तो जब उनको सबको मन प्रसन्न होएगो तो फिर बात करवे को आनंद और आयोग को नया आवेगो। जो अच्छा आप बताओ, और फिर कार्यक्रम सुन के तो और आवेगो। और ब्रज माधुरी तो अपना कार्यक्रम है ही ऐसा, या मैं तरिया तरिया के कैसे रंग हुए हैं। अब देखो आज है सोमवार और हम आपके ताई लेके आए हैं आज कवि मुखसों क्रम में कवि रत्नेश दत्त चतुर्वेदी को काव्य पाठ। तो देखो कवि तो कहे ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि की उड़ान जो है, बाकी मन की उड़ान, बाकी भावनान की उड़ान जो है, पल भर में बहुत बहुत ऊंची दूर दूर चली जाए है, और जहाँ की हम कल्पना उनाएँ कर सके हैं। और क्योंकि वाकई जो कल्पनान के जो पंख हैं वे तो बहुत ही तेज उड़ान भरे हैं। कोई जो है विषय होए, को भाव होए, को स्थिति होए, कछु होए, और कवि मन तो जो है अपनी बात तो कही डारे है। अब बात चाहे प्रदूषण की होए, चाहे बात मतलब और कौ भाव को लेके हो, कौ विषय से, जैसा अभी हम आपसे कह के चुके हैं, तो प्रदूषण होए या फिर और कोई होए, तो सुंदर सुंदर शब्दंते जो है, ऐसे सुंदर जो है चित्र प्रस्तुत है जाए है आंखन के सामने कि ऐसा लगे कि जैसे मानो अभी हम सब कुछ देख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और है ही जाए, क्योंकि साधारणीकरण को अर्थ यही होए कि जब सामने वाले की बात जाए सुन के हम, और वा में जो अपनी बात कह रहे हो है या बात के सहित दोनों के संग एक एक में है जाए है सब कुछ, और शुद्ध बुद्ध जो है हम सब खोए बैठे हैं कि भाई रस तो रस है, आनंद तो आनंद है, चित्त की एकाग्रता तो बहुत ही जरूरी है। चाहे श्रोता होए, चाहे वो वक्ता होए, को होए, चित्त की एकाग्रता जो है ये साधना में बहुत जरूरी होवे है। चाहे वो काव्य साधना होए, लेखन की कोई विधा हो, या कोई कला, कोई संस्कृति है ना, कोई विषय होए, तो एकाग्रता को है वो बहुत जरूरी है। तो हम आप समझ रहे हैं हम कहाँ कहे वो चाह रहे हैं। हाँ, आप अगर कछु काम कर ही रहे हैं तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस विश्राम ले लें और सुने और आनंद लें काव्य पाठ को।
1: भानु की दुलारी और श्याम रंग वारी, भानु की दुलारी और श्याम रंग वारी, निज भक्त घेतकारी मात यमुना हमारी है, निज भक्त घेतकारी मात यमुना हमारी है, सब वेदने को सार जाकी महिमा अपार, सब वेदने

हरी है, जाकी अमरती की धार, जाको को नाए पार, जाकी अमरती की धार, जाको को नाए पार, जाको मोक्ष।

आए बहले खारी है, ये दूसरी कविता यमुना जी के चरण में। यमुना है शरद चंद्र, यमुना है पुष्प गंध, यमुना है शरद चंद्र,

गौलोक धाम यमुना है श्यामा श्याम, यमुना गौलोक धाम यमुना है श्यामा श्याम, यमुना है बांसुरी व यशुमती के छैया की, कृष्ण रंग प्यारी नाम कालिंद्री पढ़ो गए जाको, कृष्ण रंग प्यारी नाम कालिंदी पढ़ो गए जाको, बाल कवि प्रेम सो जय बोलो जमुना मैया की, बाल कवि प्रेम सो जय बोलो जमुना मैया की। एक हफ्ता और यमुना जी के चरण में, यमुना उर श्याम विराजत है, यमुना उर श्याम विराजत है, जो ब्रज मंडल की प्यारी भई, ब्रजवासिनी मात कहलावत है, ब्रजवासिनी मात कहलावत है, जो भक्तन की हितकारी भई, पावन तट पे जहां रास रचो, पावन तट पे जहां रास रचो, जो सब जग में अनियारी भई, जाय भेद पुराण रटत है सदा, जाय भेद पुराण रटत है सदा, जो नद नंदनी की दुलारी भई, जो पाप हरे सब भक्तन को, जो पाप हरे सब भक्तन को, जो ब्रजवासिनी की न्यारी भई, जा धेनु चरावत श्याम सखा संग, जहाँ धेनु चरावत श्याम सखा संग, जो संतन की बलिहारी भई, वो कष्ट निवारण भानुसुता, वो कष्ट निवारण भानुसुता, निज रूप को तज अंधियारी भई, कवि बाल ये पीर उठे ही मैं, कवि बाल ये पीर उठे ही मैं, के ही कारण यमुना कारी भई, के ही कारण यमुना कारी भई। बड़ो दुखे या बात कहो, जो दुनिया ते दूर दूर ते भक्त आ रहे हैं दर्शन करवे और यमुना जी को आचमन करें, यमुना जी को प्रदूषण इतना ज्यादा है चुको है, अब जो वास्तविक स्वरूप है यमुना जी को वह छोड़ के कार्य रंग में प्रवृत्त है गई है, जो अधम है उदाहरण पाप उतारण, जो भानुसुता कहलावत है, जो अधम उदाहरण पापन।

जो भानु सुता कहलावत है, जो ब्रज के और ब्रजवासिन के ही है मध्य बसत हरसावत है। वो कृष्ण पिया निज दासन पे, वो कृष्ण पिया निज

वसेरी यमुना मेरे नैनन नेत समावत है, मेरे नैनन नेत समावत है। एक सवैया, ये ब्रज हमारा जो है तीनों लोकन में न्यारो है, तो ब्रज के

कभी वसेरी यमुना मेरे नैनन नेत समावत है, मेरे नैनन नेत समावत है। एक सवैया, ये ब्रज हमारा जो है तीनों लोकन में न्यारो है, तो ब्रज के ऊपर एक सवैया। ब्रज है महान, ब्रजवासी महान, ब्रज है महान।

को बखान बहु बेदन बखानी है। ब्रज जैसो तीर्थ धाम ब्रज के से श्याम श्याम, ब्रज के से तीर्थ धाम ब्रज के से श्याम श्याम, ब्रज के महान हरदास जुग्यानी है। ब्रज जैसो खान पान ब्रज जैसो धर्म ज्ञान, ब्रज जैसो खान पान ब्रज जैसो धर्म ज्ञान, ब्रज घाटन बसे श्री यमुना महारानी है। ब्रज घाटन बसे श्री यमुना महारानी है। ब्रज की सी बोल चाल और ब्रज के से गौए ग्वाल, ब्रज की सी बोल चाल ब्रज के से गौए ग्वाल, बाल कवि ब्रज को एक हु नसानी है। बाल कवि ब्रज को एक हु नसानी है। यमुना जी को जो वास्तविक स्वरूप एकदम लुप्त रह चुका है, या के बड़े दुख की कारण है, या के ऊपर एक कविता मैया को समर्पित। जा मैया आंचल अपने, जा मैया आंचल अपने, नाजों से तुमको पालो है, और स्वार्थ भरे उन दम्भिन ने ये काते का करडार हो गए। दर्शन परसन करवे को जो, दर्शन परसन

कवि बाल प्रार्थना है सब सो, कवि बाल प्रार्थना है सब सो, होश करो जय घोष करो, हम सब धर्म तुम्हारे साथ खड़े, मेरी शुद्धि को संघर्ष करो, मेरी शुद्धि को संघर्ष करो। एक बिहारी के चरण में सवैया, एक छोटा सभा की बात में गीत। फूलन के द्वार जा में कपाट सो गए, फूलन के द्वार जा में कपाट सो गए, फूलन के चौक जाकी शोभा अति न्यारी है, फूलन के चौक जाकी शोभा अति न्यारी है, फूलन के हार और फूलन के बाजू बंद, फूलन के हार और फूलन के बाजू बंद, फूलन को मुकट देख मने भले हारी है, चंपा चमेली और गुलाब जूही महक रहे, चंपा चमेली और गुलाब जूही महक रहे, फूलन की सुगंध इनते फूली फूले वारी है, बाल कवि फूलन को एक बंगला बनाए डारो, बाल कवि फूलन को एक बंगला बनाए डारो, और फूलन

0: मेरो बाकी बिहारी है। अरे रूपे माधुरी ऐसी बरसे है, रूपे माधुरी ऐसी बरसे और देखत काम लजे, बिहारी तेरो बंगला खूब सजे, बिहारी तेरो बंगला खूब सजे, रूप माधुरी ऐसी बरसे, रूप माधुरी ऐसी बरसे, देखत काम लजे, बिहारी तेरो बंगला खूब सजे। और महक रही कैसी फुलवारी, महक रही कैसी फुलवारी, फूल रही है डारी डारी, फूल रही है डारी डारी, चंपा जूगी गुलाब चमेली के, चंपा जूगी गुलाब चमेली के, आंगन चौक सजे, बिहारी तेरो बंगला खूब सजे, बिहारी तेरो बंगला खूब सजे, अतर फुलेल बड़ो ही भीनो, अतर फुलेल बड़ो ही भीनो, डारे गले पीतांबर झीनो, डारे गले पीतांबर झीनो, अरे दर्शन करवे भक्त जुआ में, दर्शन करवे भक्त जुआ में, भक्ति को भाव जगे, बिहारी तेरो बंगला खूब सजे, बिहारी तेरो बंगला खूब सजे।
1: वाह, कह कितनो सुंदर वर्ण, बिहारी तेरो बंगला खूब सजे। तो बांके बिहारी को अबे जो हम तुम सब भव्य अनुपम रूप माधुर्य सौंदर्य विनको या काव्य पाठ के माध्यम से हम सब सुन के ले रहे थे। और यही काव्य पाठ में देखो कवि ने जो है कैसी चिंता व्यक्त करी है, यमुना जो माँ है, जो पतित पावनी है, सब उनको वे पावन करें, यानी कि मोक्षदानी आप कह सको, है ना, कृष्ण पटरानी हैं। और वे आज कैसी है रही हैं, कितने प्रदूषण ने जो है विन को अति मैलो कर दियो है। तो या ऊपर विन ने चिंता व्यक्त करी कवि महोदय ने, और बहुत ही बढ़िया काव्य पाठ है। तो कहा कि बहुत आनंद आयो हम सबन को। और कवि हते रत्नेश दत्त चतुर्वेदी अपने कार्यक्रम में साथियों, आओ अब आगे बढ़ें और फिर कछु लोकगीत सुन के आनंद ले लियो जाए। तो फिर आओ सुने चे लोकगीत।

तो अभी जो है आप सुन रहे थे नंद किशोर सैनी की आवाज़ में इस लोकगीत को। अब आओ सुने जे अगलो लोकगीत।

तो अभी आप श्रीमती नीरज की आवाज में से लोकगीत को सुन रहे थे। आज को ब्रजमादरी कार्यक्रम यही विश्राम ले है। आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट।

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
5: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
6: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध हैं।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
7: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की

0: संभावना है। जम्मू कश्मीर में दो दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 01123310481, 01123717117 और 01123314444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है, नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under 20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship

0: बजने दे जरा।
1: जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

फिल्म आह के इस गीत में आवाजें दी थी लता मंगेशकर मुकेश ने। गीतकार हसरत जयपुरी साहब थे और संगीत शंकर जयकिशन का था। साथियों, कार्यक्रम का आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे शारदा की आवाज़ में फिल्म दीवाना का ये गीत। शैलेंद्र साहब ने गीत को लिखा था और संगीत शंकर जयकिशन का था। आइए आप सुनते हैं ये अगला गीत।

निदा अफाजली जनब की इस रचना को आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी साहब ने, संगीत बद्ध किया था इस गीत को उषा खन्ना ने, और फिल्म आप तो ऐसे ना थे का अभी आपने सुना ये गीत। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: दो दूनी चार, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को, किशोर कुमार की आवाज़ में। गुलजार साहब ने गीत लिखा था और संगीत हेमंत कुमार का था। साथियों, आज का ये कार्यक्रम इसी गीत के साथ ही यहीं पर संपन्न होता है। आइए अब हिंदी वार्ता क्रम में सुनते हैं महेश चंद्र गोस्वामी की वार्ता। विषय है नदियाँ हमारी जीवन धाराएं।
1: रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जिस प्रकार से शरीर में रक्त का संवहन नस नाड़ियां करती हैं, उसी प्रकार धरती पर जल का संवहन हमारी नदियां करती हैं। नदियां सदैव जीवन दायिनी रही हैं, प्रकृति का अभिन्न अंग है नदियां। नदियां जहां जहां बहती हैं, वर्षा के स्वच्छ जल को एकत्र करके एक बड़े भूभाग में फैला देती हैं। यहाँ रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे अपना जीवन पाते हैं। इनके जल से मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार लहलहाती फसलें पैदा करता है, क्योंकि जल जीवन के लिए आवश्यक है। यही कारण है अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं जनजातियां नदियों के समीप ही विकसित हुई हैं। भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता नदी के पास ही विकसित हुई है, जो सिंधु नदी थी। संपूर्ण

विश्व के बहुत बड़े भूभाग में पीने का पानी और घरेलू उपयोग के लिए जल नदियों से ही प्राप्त किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से नदियाँ बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि उद्योगों के लिए आवश्यक जल नदियों से आसानी से प्राप्त हो जाता है। कृषि के लिए सिंचाई हेतु आवश्यक जल नदियों द्वारा प्रदान किया जाता है। नदियाँ खेती के लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की अच्छी स्रोत हैं। नदियाँ न केवल जल प्रदान करती हैं, बल्कि घरेलू एवं औद्योगिक गंदे अवशिष्ट जल को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और प्रकृति की सफाई करती हैं। नदियों में मत्स्य पालन से मछली के रूप में खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होता है। नदियों पर बांध बनाकर उन पर पनबिजली घर हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित कर बिजली का उत्पादन किया जाता है। पर्यटकों के लिए भी नदियों में कई मनोरंजन के साधन जैसे बोटिंग एवं रिवर राफ्टिंग आदि से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। संसार के विभिन्न महाद्वीपों में अनेक नदियां पाई जाती हैं, जैसे एशिया महाद्वीप में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, आमूर, लेना, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, याक्सी, वांगो नदियां हैं। अफ्रीका महाद्वीप में नील, कांगो, नाइजर, जम्बेजी नदियां पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी, हडसन, डेलावेयर, मैकेंजी, वहीं दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी प्रमुख है। यूरोप में वोल्गा, टेम्स और ऑस्ट्रेलिया में मरे एवं डार्लिंग विश्व विख्यात नदियां हैं। भारतीय जनजीवन में नदियों का महत्व इसी से जाना जाता है कि हमारे धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, शैक्षिक, वैज्ञानिक, औषधि, पर्यावरण, गीत संगीत, फिल्में, मनोरंजन, न जाने कितने क्षेत्र हैं जो हमारी नदियों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यह माना जाता है कि पानी की स्वच्छ करने की शक्ति आंतरिक बाधाओं को दूर करने में सहायता करती है। जहां हम घरों एवं अपने परिवेश को वैज्ञानिक चिकित्सा कारणों से स्वच्छ भी पानी से धोकर करते हैं, वहीं हम अपनी नदियों के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो इन नदियों का जल हमारे नकारात्मक विचारों अर्थात पापों से मुक्त करता है। फिर भी नदियों का पानी पवित्र ही रहता है। नदियों का जल वह पवित्र मार्ग है जो पापियों को पवित्र, छोटों को बड़ों से, स्त्री को पुरुषों से, सभी को एक साथ जोड़कर बिना किसी रंग भेद, लिंग भेद, जात भेद के सामाजिक भेदभाव को दूर करने की शिक्षा देता है, जिससे सभी लोग सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य जिस मनोरथ और जिस ध्यान से नदी में स्नान करता है, उसके वही मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। इसीलिए नदियों को देवी और देवताओं का दर्जा दिया गया है। गंगा, यमुना नदी के निश्चित औषधीय गुण पर्वतों की हिमालय श्रृंखला में पाए जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियों की उपस्थिति से बढ़ते हैं। इन नदियों के जल में रेडियो धर्मता सूक्ष्म स्तर पर पाई जाती है, इसलिए नदियों का पानी स्वतः ही अनेकों रोगों का उपचार कर देता है। हमारे भारत देश में नदियों की पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से है। नदियों को देवी देवताओं के समकक्ष माना गया है। अनेक नदियों को देवी स्वरूप मानकर इनकी पूजा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आज भी लगभग सभी नदियों को माँ के रूप में सम्मान दिया गया है। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय के उद्घोष बड़े ही सामान्य और जोश से हमारे समाज में दिए जाते हैं। दूसरी नदियों को भी गंगा यमुना से कम महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। ऐसा माना गया है नर्मदा माता को देखने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, और कहा जाता है नर्मदा का हरेक कंकड़ साक्षात है शिव शंकर। अतः इन कंकड़ों को अपने घरों में और अपने घरों के पूजा घरों में स्थापित करने के लिए लोग अपने अपने घरों के लिए ले जाते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका, वैशाली, तक्षशिला, गया, हमारे ये सभी नगर नदियों के किनारे स्थित हैं। ऐसी मान्यता है ये सप्तर्षि आकाश में तारों के रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे ही भारत माता की नदियां जैसे गंगा, सरस्वती, सिंधु, गोदा, कृष्णा, महानदी, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, शिप्रा, नर्मदा, च गंडकी, ये सब भारतवर्ष की नदियां अपने भक्तों का सुख समृद्धि के लिए अवतरित हुई हैं।

गंगा नदी को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लाने की भागीरथ द्वारा महादेव की तप की कथा पूरे देश में प्रचलित है। देश में नदियों के योगदान एवं महत्व इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि वाराणसी आज विश्व के प्राचीनतम नगर, हमारी सनातन संस्कृति का शिक्षा केंद्र एवं प्राचीनतम जीवित सभ्यता के रूप में जाना जाता है, हमारी गंगा मैया के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, नासिक, उज्जैन, गुवाहाटी, गया, पटना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, सूरत, हैदराबाद, मैसूर, हुबली आदि धार्मिक, शैक्षिक, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सभी नगर किसी न किसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि हम नदियों के विकास का संबंध प्राचीन काल से ही हमारी नदियों से हमारी सभ्यता का रहा है। अपनी इन्हीं मान्यताओं के कारण हम इन नदियों को पवित्र बनाए रखने में एक लंबे समय तक सफल भी हुए हैं। इनके प्रति सम्मान इसलिए भी जरूरी है कि हम भविष्य में इनकी स्वच्छता एवं पवित्रता को चिरकाल तक बनाए रख सके हैं। ये हमारी संस्कृति के ही कारण संभव हुआ है। हमारी इन मान्यताओं का लोहा अंग्रेजों ने भी माना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जब भारत आते थे तो अपने साथ गंगा जल ले जाते थे, क्योंकि वो ये भली भांत जानते थे कि यह जल कभी खराब नहीं होता है। वे जल को अपने घर जाकर भी फेंकते नहीं थे, बल्कि अपने घरों में रखते थे। कभी किसी के चोट लग जाती थी तो घाव साफ करने के लिए भी इस गंगा जल का प्रयोग करते थे, क्योंकि वो जानते थे इसके औषधि गुण क्या क्या हैं। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, स्वतंत्रता के बाद से शुरू हुए अनियोजित विकास, दिशाहीन औद्योगिकीकरण के कारण हमारी नदियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। इससे हमें सिर्फ सामाजिक ही नहीं आर्थिक हानि भी उठानी पड़ रही है। नदियों पर आधारित कृषि पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदियों पर बड़े बांधों की परियोजनाओं के कारण नदियां सूख रही हैं। बहाव रुकने से प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इससे कृषि योग्य भूमि भी मृदा प्रदूषण से ग्रस्त होने लगी है। कृषि के उपज की गुणवत्ता भी खराब हुई है। परिणाम स्वरूप गांव, शहर, किसान, व्यवसायी सबकी सेहत पर खराब असर पड़ रहा है। नदियों के तटीय क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण एवं खदान ने नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को समाप्त कर दिया है। नदियों के तटीय क्षेत्र डूब की भूमि बेटलैंड आज अवैध निर्माणों से भर गए हैं। वहां की आबादी नदियों में कूड़ा करकट डालकर प्रदूषित कर रही है। बड़े होते नगरों की सीवर लाइनों से प्रदूषित करके खतरनाक स्तर पर ले आए हैं। इस कारण अनेकों नदियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, अथवा ये नदियां गंदे नालों के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं। इनका असर प्राकृतिक संतुलन पर पड़ रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जीवनदायिनी कही जाने वाली नदियां खुद संकट में हैं। देश में 521 नदियों के पानी की मॉनिटरिंग करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश की 198 नदियां ही स्वच्छ पाई गई हैं। इनमें अधिकांश छोटी एवं मौसमी नदियां हैं, जबकि बड़ी नदियां भयंकर प्रदूषण की चपेट में हैं। लोगों के द्वारा काफी समय से सीवर, औद्योगिक कचरा, पॉलीथिन आदि इन नदियों में डाला जा रहा है, जिससे भारत की नदियां दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। दिल्ली में यमुना, कानपुर में गंगा और मुंबई में मीठी नदी अत्यंत प्रदूषित है। इन नदियों का पानी ही नहीं बल्कि इनके आसपास की भूमि भी बंजर होती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ नदियों को माता कहकर हम पूजा करते हैं, दूसरी तरफ सीवर कचरा सब डालकर हम उन्हें गंदा करते जा रहे हैं। ऐसे में नदियों को पूजने का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। हम नदियों को प्रदूषित करने के कारक खुद बनते जा रहे हैं। केवल कर्मकांडों से ही नदियों को खुशी मिलने वाली नहीं है, और न ही कर्मकांडों से हमारा कल्याण होने वाला है। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है इन नदियों को स्वच्छ करें। इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले नदियों के किनारों से, नदियों के डूब क्षेत्र तथा बेटलैंड से अवैध निर्माण को हटाना ही होगा, जिससे नदियों को फैलने का पूरा मौका मिले। इसके साथ ही देश की नदियों में शुद्ध पानी, बारिश के पानी को रोकने के लिए भी हमें बड़े कदम उठाने होंगे। प्रदूषण से बचाने के लिए नदियों को परस्पर जोड़ा जाना भी एक श्रेष्ठ उपाय है। जहाँ एक ओर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ से निजात मिलेगी, तो दूसरी ओर सूखती हुई नदियों में शुद्ध जल मिलेगा।
इसलिए जल का समान वितरण हो

0: सकेगा। नदियों पर हर 50 किलोमीटर पर छोटे छोटे बांध बनाए जाने चाहिए, जिससे संचित बरसाती जल स्वच्छ हो सके। नदियों के तट पर बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाएं, वृक्षारोपण हो, जिससे अच्छी वर्षा की संभावना बढ़े। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो वेस्ट वाटर को साफ करें, उनकी व्यवस्था बड़े स्तर पर हर नगर में जो गंगा नदी या जमुना नदी या किसी भी नदी के किनारे हैं, वहां पर स्थापित किए जाएं, जिससे उनमें ट्रीटेड वाटर ही छोड़ा जाए, जिससे ये नदियां प्रदूषण से बच सकें। हर औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपने यहाँ पॉल्यूशन लेस डिवाइस स्थापित करनी चाहिए, जिससे कि जल को खुद ही वो ट्रीट करके नालों में छोड़ें, जिससे नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो उपायों से देश में पीने के पानी की कमी की समस्या भी हमेशा के लिए समाप्त होगी और हमारी नदियां भी प्रदूषण रहित सुरक्षित रह सकेंगी। इसके लिए स्वयं हम सबको संकल्पबद्ध होना ही होगा, स्वयं से किया संकल्प भी निभाना ही होगा। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने के उपाय भी करने होंगे। यही नदियों की सच्ची सेवा है, प्रकृति की सच्ची सेवा है। नहीं तो बाढ़, सूखा, जल संकट, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण ऐसी समस्याएं, और यही नहीं प्राकृतिक आपदाएं भी झेलनी होंगी। हम पहले से ही सचेत होकर के जल के अमूल्य स्रोतों को हम संरक्षित कर सकते हैं। हमारा पहला धर्म अपनी यमुना मैया को बचाने को संगठित एवं जागरूक होना है। हम जन सामान्य की सबसे बड़ी भूमिका है, हम भी उसमें एक भूमिका अदा करें।
1: आप अभी सुन रहे थे महेश चंद्र गोस्वामी की वार्ता। विषय था नदियां हमारी जीवन धाराएं।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का।
2: कुशीनगर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कलेक्ट्रेट भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा आजादी के अमर सपूतों एवं क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि
3: जो जो भी कार्य क्षेत्र हमारा है, जहाँ जहाँ भी जिस जिस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, उस काम में अपना 100% योगदान इस राष्ट्र निर्माण के रूप में दें। हम ये मान के चलें कि हमारा छोटा सा काम भी जो है इस राष्ट्र को आगे लेके जाएगा।
2: इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा सहित कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन पर तथा मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने विकास भवन पर ध्वजारोहण करते हुए उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संभ्रांत नागरिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को सम्मानित किया। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय में संरक्षित बौद्ध, जैन एवं कुशीनगर के आसपास के खुदाई में प्राप्त अन्य प्राचीन काल की धरोहरों के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर के व्यापक सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि संस्कृत विभाग के अंतर्गत कराए जा रहे इस महत्वपूर्ण कार्य की मूल स्वीकृति लगभग 22,53,00,000 रुपए है। उन्होंने बताया कि परियोजना का कार्य 12 जुलाई 2026 से प्रारंभ किया गया है तथा इसे 11 जनवरी 2028 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के अंतर्गत संग्रहालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक एवं सुविधाजनक बनाया जाएगा। सौंदर्यीकरण कार्य में कार्यदायी संस्था द्वारा इंटीरियर फिनिशिंग, CCTV सर्विलांस एवं सिक्योरिटी सिस्टम, आंतरिक

0: एवं बाहरी प्रकाश व्यवस्था, साइनेज एवं ग्राफिक्स पैनल, ऑडियो विजुअल एवं इंटरैक्टिव सिस्टम, कंटेंट डेवलपमेंट सहित विविध कार्य कराए जाएंगे। परियोजना के लिए प्रथम चरण में 3 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। राज्य के बौद्ध संग्रहालय के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण से कुशीनगर में बौद्ध विरासत को और बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी तथा देश विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को आधुनिक एवं बेहतर संग्रहालय अनुभव प्राप्त होगा। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही लगातार वर्षा तथा भोटे कोसी त्रिशूली नदी में बढ़ते पानी और मलबा के बीच नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में नारायणी नदी उतार चढ़ाव के साथ बह रही है। हालांकि संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। जिले के खड्डा और तमकुही तहसील क्षेत्रों में दियारा और तटवर्ती गाँव में विशेष चौकसी बरती जा रही है। SDRF व NDRF की टीमें पूरी तरह सक्रिय है। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों के लिए आपदा संबंधी सूचना व सहायता के लिए जिला मुख्यालय पर आपदा कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहां 24 घंटे कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आपदा कंट्रोल रूम का नंबर है 0556424590 तथा टोल फ्री नंबर है 1077। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कुशीनगर जिले में कृषि विभाग द्वारा समृद्धि की बात किसान के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ एवं फसल सुरक्षा के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल बीमा के लाभ, जोखिम से सुरक्षा तथा योजना की उपयोगिता के संबंध में जागरूक करना रहा। इस अवसर पर प्रगतिशील एवं सफल किसानों को फार्मर चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया। इन कृषकों द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए अन्य किसानों को भी फसल बीमा योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया।
1: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सावन श्रीवास्तव का।
2: सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर PM पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों का सम्मान समारोह एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद मुख्यालय और हर तहसील में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यरत रसोइयों को सम्मानित करते हुए उन्हें कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में पूरे जिले के तहसीलों पर PM पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों का सम्मान समारोह एवं कैशलेस चिकित्सा वितरण कार्यक्रम किया गया। जिले के करीब 6000 रसोइयों को लाभ मिलेगा।
3: जो हमारे कर्मचारी है उनके नियुक्ति से लेके उनके जो पेंशन ग्रेचुटी हर चीज का उनका वेलफेयर के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे और इसमें उनके और उनके परिवार के लिए 5 लाख तक मुफ्त इलाज का भी इसमें प्रोविजन है, तो ये बहुत अच्छा कदम है।
2: सिद्धार्थनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के नव नियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का जिला मुख्यालय पर प्रथम आगमन हुआ। जिले में पहुंचने पर सिद्धार्थनगर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह सहित जन प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद जिला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण जिला बैठक भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वह उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कपिलवस्तु में स्थित बौद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो व सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर में विपासना केंद्र बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। इन दोनों प्रोजेक्ट का निर्माण CSR फंड से किया गया, जिसकी लागत लगभग 12.82 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, कपिल वस्तु विधायक श्याम धनी राही, कुलपति कविता शाह सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कपिल वस्तु स्थित बौद्ध स्तूप पर्यटन की दृष्टि से बौद्ध धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने जीवन के प्रारंभिक 29 वर्ष यहाँ रहे और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यहाँ आए। इसी वजह से बौद्ध धर्म को मानने वाले देश विदेश के लोग यहाँ भारी संख्या में दर्शनार्थ आते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने में जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट परिसर में सावन के अंतिम सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन एवं कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ द्वारा किया गया। सिद्धार्थनगर जिले की मोहाना क्षेत्र थाने की पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय बाइक लिफ्टर को पकड़ने में सफल सफलता पाई। ये बाइक लिफ्टर भारत नेपाल के

0: अंतर्राष्ट्रीय सीमा ककराहवा बॉर्डर से पकड़ा गया। यह अभियुक्त भारत से बाइकों को मास्टर चाबी से नेपाल ले जाकर बेचने का कार्य करता था। पकड़े गए अभियुक्त के पास से दो चोरी की बाइकें, एक मास्टर चाबी, एक फोन, नेपाली करेंसी बरामद हुई है। वही मीडिया से बात करते हुए एएसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यह लिफ्टर नेपाल राष्ट्र का निवासी है, जो कि भारत से बाइकों को चोरी कर नेपाल से ले जाकर बेचने का कार्य करता था। मोहाना थाना व सोरतगढ़ थाने में पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में मुकदमा पंजीकृत था। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले की मोहाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए सभी अभियुक्त मोहाना थाना क्षेत्र के बड़पुर नंबर 5 टोला छोटकी बेलहरी के निवासी हैं। 26 जून 2026 को मोहान थाना क्षेत्र के ग्राम बेलहरी में दो बच्चों के बीच मारपीट हुई थी। इसी मारपीट में जमाल अहमद पुत्र अकबर अली के सर में गंभीर चोटें आई थीं। घायल जमाल अहमद का इलाज लखनऊ के राम मनोहर अस्पताल में चल रहा था, जहां से वो ठीक होकर घर आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ी और उसे दोबारा भर्ती किया गया। इसी बीच इलाज के दौरान 28-29 अगस्त की रात में उसकी मौत हो गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग।

श्रोता साथियों, कार्यक्रम आबोहवा का अब समय हो चुका है, तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में राजेश महावर से जानकारी। विषय है संतुलित पर्यावरण, मनुष्य की आवश्यकता।

सामान्यतः पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है और मनुष्य को एक अलग इकाई और उसके चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त चीजों को उसका पर्यावरण घोषित कर दिया जाता है। किंतु यहाँ ये भी ध्यान रहे कि अभी भी इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं हैं जो अपने को पर्यावरण से अलग नहीं मानती और उसकी नजर में समस्त प्रकृति एक ही इकाई है जिसका मनुष्य भी एक हिस्सा है। वस्तुतः मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले वे हैं जो तकनीकी रूप से विकसित हैं और विज्ञान और तकनीक के व्यापक प्रयोग से अपनी प्राकृतिक दशाओं में काफी बदलाव लाने में समर्थ हैं। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो प्रखंडों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक यानी नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। हालांकि पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें मानव हस्तक्षेप बिल्कुल न हुआ हो या पूर्ण रूपेण मानव निर्मित पर्यावरण जिसमें सब कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित हो कहीं नहीं पाए जाते। ये विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता का सूचक मात्र है। परिस्थिति की

और पर्यावरण भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग पर्यावास के लिए भी होता है। तकनीकी मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है, जिससे प्राकृतिक व्यवस्था या प्रणाली के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। इस तरह की समस्याएं पर्यावरणीय अवनयन कहलाती हैं। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन मनुष्य को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही हैं। और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की चर्चा है। मनुष्य वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों से नुकसान को कम करने में कितना सक्षम है, आर्थिक और राजनीतिक हितों की टकराहट में पर्यावरण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और मनुष्यता अपने पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक है, ये आज के ज्वलंत प्रश्न हैं। पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किए हुए हैं। प्रकृति और भूगोल में यह शब्द अंग्रेजी के एनवायरमेंट के पर्याय के रूप में इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट स्वयं प्राकृतिक अर्थ में काफी बाद में प्रयुक्त हुआ और ये शुरुआती दौर में आसपास की सामान्य दशाओं के लिए प्रयुक्त होता था। आज पर्यावरण एक जरूरी सवाल बल्कि ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, लेकिन आज लोगों में इसे लेकर कोई जागरूकता नहीं है। ग्रामीण समाज को छोड़ दें तो भी महानगरीय जीवन में इसके प्रति खास उत्सुकता नहीं पाई जाती। परिणाम स्वरूप पर्यावरण सुरक्षा महज एक सरकारी एजेंडा ही बनकर रह गया है, जबकि ये पूरे समाज से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखने वाला सवाल है। जब तक इसके प्रति लोगों में एक स्वाभाविक लगाव पैदा नहीं होता, पर्यावरण संरक्षण एक दूर का सपना ही बना रहेगा। संपूर्ण विश्व एक गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। यद्यपि हमारे पास पर्यावरण संबंधी पाठ्य सामग्री की कमी है, तथापि संदर्भ सामग्री की कमी नहीं है। वास्तव में आज पर्यावरण से संबद्ध उपलब्ध ज्ञान को व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है, ताकि समस्या को जनमानस सहज रूप में समझ सके। ऐसी विषम परिस्थिति में समाज को उसके कर्तव्य और दायित्व का एहसास होना आवश्यक है।

आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत जानकारी राजेश महावर से। विषय था संतुलित पर्यावरण मनुष्य की आवश्यकता।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। जिस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रही हैं सुरभि शर्मा।
1: श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं आप बड़ी बेसब्री से इंतजार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी।
0: कार्यक्रम के संयोजक हैं ओपी सिंह।
1: श्रोता, शुरुआत करते हैं आज के विचार के साथ। आज का विचार है अपनी धरा को हरा भरा बनाएं। जब भी हम देखते हैं कि हरी भरी धरा, स्वच्छ नीला आकाश, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारे मन में उत्साह और उमंग का संचार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम कंक्रीट का जंगल देखते हैं, चारों तरफ बिल्डिंग हैं, इमारतें हैं, तो मन परेशान हो जाता है। उस स्थिति को देखकर मन और व्यथित हो जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है स्वच्छ वायु और नीले आकाश को लेकर भी, तो उसके लिए प्रयास हमें ही करने होंगे, क्योंकि अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी हम अपने अधिकार का पालन कर पाएंगे। जरा सी गर्मी होते ही लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं कि वहाँ पे स्वच्छ वायु है, हरे भरे पहाड़ हैं, स्वच्छ आकाश है, झरना बहता है झरझर, स्वच्छ जल है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जगह की जो स्थिति है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। नित्य प्रति हम पेड़ों को काट रहे हैं, जलवायु का जो परिवर्तन हमारे इलाके झेल रहे हैं उसे कहीं ना कहीं मानव ही जिम्मेदार है। आज के समय में अपनी लालसा को जीवित करने के लिए, सिर्फ अपनी भोग की वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति ने प्रकृति से छेड़छाड़ करी है। ये दिवस ये बताता है कि आप जिम्मेदार हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं स्वच्छ वायु के लिए, स्वच्छ आकाश के लिए। क्योंकि प्रदूषण जो एक सुरसा के रूप में फैलता जाता है, वो पूरी मानव जाति को नील जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्तर पर प्रयास करें, वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। हर व्यक्ति अपने मन में ठान लेगा कि वो सिर्फ एक पौधा लगाए, लेकिन उसके बढ़ने तक उसकी पूरी जिम्मेदारी ले, उसको पुष्पित करें, पल्लवित करें। हर व्यक्ति का ये एक प्रयास जब सामूहिक रूप लेगा, एक समाज का रूप धारण करेगा, तो हमारी धरती हरा भरा होगी, हरी भरी रहेगी और स्वच्छ वायु होगी, स्वच्छ आकाश होगा। तभी तो हम कह पाएंगे कि नीले आकाश के तले हमारे पास स्वर्ग का विधान है।

श्रोतम, अगर कहा जाए कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन अगर यही भविष्य कुपोषण का शिकार हो जाए

0: तो कोई भी देश पंगु हो जाएगा। देश के भविष्य को बचाने के लिए, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। ये पोषण क्या है, कुपोषण क्या है, कैसे इनसे बचा जा सकता है, हमारे जनपद में कुपोषित बच्चों के लिए किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, इसी बारे में हमने जानकारी हासिल करी हमारे साथ।
1: आकाशवाणी के श्रोताओं को नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक सारस्वत मथुरा में संयुक्त जिला चिकित्सालय के अंदर एक पोषण पुनर्वास केंद्र है, वहाँ पर डाइटिशियन के रूप में कार्यरत हूँ। तथा इस माह 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके विषय में कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। साथियों, जो कुपोषण है, ये हमारे समाज के अंदर और हमारे देश के विकास के अंदर एक दीमक की तरह काम करता है और हमारे मानव संसाधन को, जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाला भविष्य है, अगर वो कमज़ोर होंगे तो उनकी कार्यप्रणाली, उनकी कार्य क्षमता सभी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का जो विकास होना है वो काफ़ी प्रभावित होगा और हम जिस दिशा में, जिस तेज़ी के साथ उभर रहे हैं एक विकास विकसित देश बनने के लिए, तो उसमें भी एक रोड़े का की तरह काम करता है। इसी सब को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं कुपोषण को ख़त्म करने के लिए चलाई जा रही हैं। हम कुपोषण जो है वो एक चक्र है, जिसमें एक कुपोषित माँ अगर होगी और उसका अगर कुपोषण नहीं ख़त्म किया जाएगा जब वो धात्री होगी, तो वो एक कमज़ोर बच्चे को जन्म देगी। अगर वो कमज़ोर बच्चा एक बालिका हुई, तो बालिका जो है आगे चल के वो भी एक कमज़ोर महिला और कमज़ोर माता के रूप में ही बनेगी और उससे आने वाली आगे की पीढ़ी जो होंगी वो भी कमज़ोरी से ग्रसित रहेंगी। इस चक्र को ख़त्म करने के लिए शासन ने कई स्तर पर काम करना शुरू किया है। जैसे जो धात्री महिलाएं हैं उनके लिए आंगनवाड़ी विभाग द्वारा गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है, उनको पोषण आहार दिया जाता है, जिससे कि जो हमारी धात्री हैं वो जन्म से पहले ही इस कुपोषण से दूर निकल जाएं और एक स्वस्थ और अच्छे तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दें, जिससे कि हमारा जो बच्चा है वो पहली सीढ़ी से ही कुपोषण से मुक्त हो जाए। उसके बाद हमारे यहाँ कई विभिन्न प्रकार के पोषक आहार जो हैं वो बच्चों को वितरित किए जाते हैं, स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा दी जाती है, ताकि जो कक्षा 5 वर्ष तक के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस कुपोषण के चक्र से अगर ग्रसित हैं तो वहाँ से बाहर निकाल लिए जाएं। साथियों, जैसा विदित है कि ये जो सप्ताह है हमारा, ये इस कुपोषण से जो हमारी लड़ाई है इसके प्रति जन जागरूक अभियान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मनाया इसलिए जाता है कि कुपोषण क्या है, क्या इसकी कमियां हैं, क्या इसकी परेशानियां हैं, इसको कैसे सही करना है, इसके बारे में हम आपस में जनमानस को इसकी जानकारी प्रदान की जा सके और हम इस लड़ाई में उनका सहयोग लेते हुए शीघ्र अपने देश और प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करा सकें। साथियों, आंगनवाड़ियों में प्रत्येक माह बच्चे का एक वजन दिवस होता है। इस वजन दिवस के अवसर पर जितने भी उस क्षेत्र के बच्चे होते हैं उसका वजन कराया जाता है और वजन कराने के बाद हम बच्चों को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, जिसको हम लाल, पीला और हरे के रूप में जानते हैं। हरा जो कलर है वो उस बात का सूचक होता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ है। पीला जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो ये माने जाते हैं कि ये अभी कमज़ोर हैं, इनमें कुपोषण का स्तर स्टार्ट हो गया है, लेकिन अगर इन्हें पूरक आहार और अच्छे से देखभाल की जाए तो ये स्वस्थ हो सकते हैं। लाल श्रेणी के वो बच्चे हैं जिनको कहीं कोई ऐसी गंभीर बीमारी या कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो पोषण के स्तर को एक साधारण तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को जो कि हम जिनको सैम कहते हैं, तो सैम विद कॉम्प्लिकेशन या जो सैम के साथ गंभीरता के साथ, जैसे मान लीजिए उल्टी दस्त है, बुखार है, दस्त और कोई स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, आँखों की प्रॉब्लम्स हैं, अगर इस प्रकार की परेशानियों से बच्चा ग्रस्त है और वो किसी भी तरीके से उसकी भूख जो है वो जागृत नहीं हो पा रही है, कुपोषण अपने आप में एक ऐसा चक्र है कि वो हमारे शरीर को इस बात का एहसास करा देता है कि खाना इतना ही मिलता है और जिसकी वजह से हमारी जो भूख है वो उस हद तक सीमित हो जाती है और हम उस सीमित संसाधन में ही अपने को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। इससे होता क्या है कि तत्काल रूप में तो हमारा जो शरीर का जो मास है वो घटने लगता है, जिसको हम वास्टिंग या मस्कुलर कमजोरी भी कहते हैं कि मांसपेशी जो है एक तरीके से हमारा क्षय होने लगती है। और जब लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है तो हमारे शरीर के अंदर स्टंटिंग हो जाती है, मतलब हमारा शरीर जो है वो एक आम उम्र के

से, या जो बच्चे की उम्र होती है उसके हिसाब से उसकी लंबाई भी कम हो जाती है। लेकिन अगर उसको हम तत्काल में ही सही कर लें तो हम दोनों ही परेशानियों से बच सकते हैं। इसके निमित्त हमारे यहाँ पर जिला संयुक्त चिकित्सालय में एक केंद्र स्थापित है जिसको पोषण पुनर्वास केंद्र कहते हैं। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं कुपोषित, जिनके साथ में कोई गंभीर बीमारी भी है, उनको हम 15 दिन के लिए भर्ती करते हैं। यहाँ पे बच्चे को पोषण

0: करते हैं। यहाँ पे बच्चे को पोषक आहार, खेलना खिलाना, सब तरीके से माताओं को उसकी देखभाल करने के बारे में हम समझाते हैं, काउंसलिंग करी जाती है। और 15 दिन के बाद ये कोशिश की जाती है कि जो बच्चा जिस वजन के साथ आया था, भर्ती हुआ था, उससे कम से कम 15% की हम बढ़ोतरी वजन में कराकर उसकी छुट्टी करें। उसके बाद भी 15 दिन के बाद जब बच्चा घर चला जाता है, तो हम हर 15 दिन पे 4 बार, मतलब 2 महीने में 4 बार हम उसके फॉलोअप के लिए उसको बुलाते हैं और इस बात की निगरानी करते हैं कि बच्चा जब केंद्र से वापस गया था, उसके बाद उसका वजन जो है सतत रूप से बढ़ रहा है अथवा नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक 2.5 महीने का जो पूरी कार्यप्रणाली है, इसके द्वारा अभी तक कई सारे असंख्य बच्चों को हमारे ज़िले में कुपोषण से मुक्त कराया जा चुका है। मेरा श्रोताओं से इस बात का अनुरोध है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इसको बताएं, जिससे कि जो भी कुपोषित बच्चे अगर हमारे ज़िले में कहीं पर भी हैं, उनको जिला चिकित्सालय में NRC में भर्ती कराने में सहयोग करें, जिससे हम इस कुपोषण से जीत सकें। और हमारे यहाँ जो 10 बेड हैं NRC के अंदर, और मेरी मंशा है कि वो 10 के 10 बेड हमेशा फुल रहें और हम जल्दी से जल्दी अपने इस स्तर को प्राप्त करें कि हम अपने ज़िले को कुपोषण मुक्त कहने के लिए गर्व महसूस करें।
1: कुपोषण एक गंभीर समस्या है। क्या हर आयु में कुपोषण हो सकता है? हर वर्ग में कुपोषण हो सकता है? क्या जो तबका बिल्कुल सक्षम है खाने पीने में, के जो जिनकी इनकम हाई है, क्या वहाँ भी कुपोषण एक समस्या हो सकती है? कुपोषण के मूल रूप से लक्षण क्या है?
0: देखिए, जैसा कि एक आम जनमानस में भाव होता है कि कुपोषण का मतलब कमजोरी।
1: आजकल के जमाने में माताएं चाहती हैं कि मेरा बच्चा हट्टा कट्टा
0: जी
1: मोटा
0: हाँ,
1: ना जाओ।
0: जी हाँ, बिल्कुल। तो हम केवल कुपोषण को कमजोरी के रूप में ही समझते हैं, जबकि कुपोषण 2 प्रकार का होता है। एक कुपोषण वो है जिसमें कि हमारे शरीर के अंदर वजन कम होता है, और दूसरे प्रकार का जो कुपोषण है वो ये है कि जिसमें हमारा वजन वजन जो है बढ़ जाता है। कुपोषण की परिभाषा ही यही है कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कम या ज़्यादा रूप में मात्रा अगर हमारे शरीर में आती है, तो वो एक कुपोषण का द्योतक होता है। जो हमारा ओबीज वाला जो है, जिसको हम बोलते हैं कि मोटापा जो है, ये भी एक प्रकार का कुपोषण होता है, लेकिन इसको हम ओवरवेट या मोटापे के रूप में जानते हैं, जिसको सामान्यतः जनमानस जो है कुपोषण से संबंधित नहीं समझता है, जबकि एक बहुत गंभीर बीमारी है। अक्सर जो ज़्यादातर वसा का खाना है या फास्ट फूड है, इनका सेवन हम जब करते हैं, तो हमारे अंदर खास करके जो सैचुरेटेड फैट है या जो तेल चिकनाई है, इनका जब सेवन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे बॉडी में ये चिकनाई जो है जमने लगती है। इससे हमारे अंदर ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं,
1: जो आजकल बच्चों
0: और
1: में बहुत
0: जी
1: आम हो गई
0: हाँ,
1: है।
0: बिल्कुल आम हो गई हैं, तो इनके जो खतरनाक परिणाम जो हैं वो आने लग। जो दूसरा कुपोषण है वो कमजोरी से होता है, जिसमें कि आदमी को यही नहीं पता कि मुझको क्या चीज़ें खानी चाहिए। जैसे अक्सर एक यहाँ पे बड़ा एक तरीके से रिवाज बन गया है कि माँ बाप बिस्कुट बहुत खिलाते हैं
1: बिस्कुट, ब्रेड,
0: घर में।
1: ब्रेड
0: अब
1: नट्स,
0: एक ज़माना था जब घर में दाल, चावल, हलवा, खीर बना करती थी,
1: लड्डू
0: लेकिन
1: मठरी।
0: अब जहाँ भी देखें आप, तो या तो कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, या समोसे आ जाएंगे, बाजार से कचौड़ी आ जाएगी, पिज़्ज़ा बर्गर आ जाएंगे। तो जो एक रसोई में जो माँ का प्रेम होता था, जो हम कभी कभी कहते हैं कि एक हमारे छोटे क्लासों में बच्चों को माँ के ऊपर निबंध लिखाने के लिए बोलते थे, तो हम लोग अगर माँ के बारे में अगर कुछ सोचेंगे, तो हमें आंखें बंद करने पर भी ये ध्यान आएगा कि हमारी माँ ने हमारे जन्मदिन पे हलवा बनाया था, खीर बनाई थी, हमको क्या पसंद है क्या नापसंद है ये माँ को पता होता था। लेकिन आज की भागम भाग की ज़िंदगी में माताएं जो है घर में बनाने के बजाय बाजार से, दुकान से सीधे खरीद के, कुरकुरे, चिप्स, ये चीज़ें खरीद के जो बच्चों को दे रही हैं, इनसे बच्चों के अंदर एनर्जी तो बहुत मिलती है, बच्चा बहुत त्वरित रूप से भाग दौड़ करता है, बहुत तेज तर्रार बनता है, लेकिन अंदरूनी रूप से उसका जो पोषण का स्तर है वो घटने लगता है, प्रोटीन कम होने लगता है, बच्चा वज़न कम हो जाता है, बच्चे के अंदर बाकी जो हार्मोन्स हैं।
1: विज्ञापन भी भ्रामक तरीके से प्रचारित
0: जी
1: किए जाते
0: हाँ
1: हैं कि
0: जी
1: कितना
0: हाँ
1: अच्छा है।
0: जी हाँ, तो वो तो हमारी ज़रूरतें बना दी जाती हैं, आर्टिफिशियल डिमांड जो है वो क्रिएट की जाती है। विज्ञापनों का काम ही यही है, अगर वो विज्ञापन इस तरीके से नहीं बनेंगे तो उनका प्रचार कैसे होगा और उनको लाभ कैसे मिलेगा। लेकिन हमें अपने लाभ के बारे में भी सोचना चाहिए, और मेरी सभी माताओं से इस बात का विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चे को अपने हाथ से ज़रूर खिलाएं, क्योंकि ये जो वक्त होता है वो माँ और बच्चे के बीच में एक ऐसा समय है, ऐसा बॉन्ड क्रिएट करता है जो बुढ़ापे तक उनको उस प्यार का एहसास बना रहता है, और आँख बंद करने पे आपको अपनी माँ की याद आती है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आगे जब भविष्य में जब बच्चे माँ के बारे में सोचें, तो उनको कुरकुरे, चिप्स और बिस्कुट ही याद आए।
1: निम्न वर्ग

0: कुपोषण बहुत आम समस्या है, क्या उच्च वर्ग में भी कुपोषण की समस्या देखने को मिले, क्या खिलाना चाहिए ताकि कुपोषण से बचे?
1: देखिए, भोजन में बच्चे को, बच्चा जो होता है वो 6 महीने तक तो उसको माँ का दूध ही देना है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चा 3 महीने में जाके गर्दन साधता है और बैठना सीखता है, और जब तक वो बैठना सीखता है तो उसके लिए सकिंग एक सबसे सेफेस्ट मेथड है। अगर हम मुंह पर कुछ भी ऊपर से डालेंगे तो उसके श्वास नली में जाने का खतरा रहता है, जान जोखिम भी हो सकता है। इसलिए प्रकृति ने ही ये कहा है कि बच्चा माँ से ही अपना जो है वो भोजन प्राप्त करेगा। जब बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्ट। जैसे बच्चा पैदा होने के बाद कई परिवार जो हैं, कई जो परिवार के सदस्य होते हैं वो बच्चे से बातचीत करने लग जाते हैं, बेटा देखो पापा पापा, तो हमें कई बार कई समय लगता है, एक लंबा समय, तब जाके हम बच्चे को ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि बेटा पापा ये होते हैं। इसी तरीके से हमको हर व्यक्ति, हर बच्चे को हर खाने जो खाद्य पदार्थ है उनके टेस्ट से अवगत कराना है, स्वाद से परिचय कराना है। और ये स्वाद से परिचय तब होगा जब हम किसी एक खाद्य वस्तु को चयनित कर लें और उसको हम कम से कम 7-8 दिन लगातार उस बच्चे को खिलाएं। पहले दिन हो सकता है वो उसका 1-2 चम्मच मुंह में लेगा या बाहर निकाल देगा, लेकिन जब लगातार हम उस चीज़ को कोशिश करेंगे, मान लीजिए हमने मूंग की दाल ही ले ली, या हमने केला ले लिया, या किसी दिन हमने एप्पल ले लिया या आलू ले लिया, तो उसको 7 दिन तक जब हम बच्चे को लगातार खिलाएंगे तो बच्चा उस चीज़ से अभ्यस्त हो जाएगा कि ये खाने की चीज़ होती है, और धीरे धीरे करके वो उसको खाने लगेगा। तो ये इंट्रोडक्शन और टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार हम ये कहते हैं कि आज कुछ बना लिया, कल कुछ बनाया, परसों कुछ और चीज़ बना ली, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इस चीज़ का टेस्ट क्या है, और वो उससे फेमिलियर हो नहीं पाता और खाता नहीं है। तो माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा खाना नहीं चाह रहा, खाएगा ही नहीं, उसको दूध ही दूध पर रखते हैं, जो कि कुपोषण का एक अन्य एक बहुत अच्छा कारण है कि जब दूध की रिक्वायरमेंट के साथ में हमको एलिमेंट्री फीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है और हम उसको समय से नहीं देते हैं तो भी कुपोषण के चांस बन जाते हैं। इसलिए 6 महीने से ऊपर बच्चे को जो खाद्य पदार्थ हैं वो, जैसे सबसे पहले हम देते हैं उसको क्लियर लिक्विड, ऐसा कोई पेय पदार्थ जो कि जिसमें आर पार हम देख सकते हैं, जैसे नारियल का पानी है, फलों के जूस हैं, तो दाल का पानी है, ये चीज़ें दी जा सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है जब बच्चा बाहर से कुछ चीज़ें लेने लग जाता है, एक्सेप्ट करने लग जाता है, तो फिर हम उसको थिक चीज़ें देना शुरू कर जाते हैं, लेकिन वो इतनी पतली हों कि चम्मच से नीचे टपक जाए। तीसरे स्तर पे हम उस चीज़ों को लेना शुरू करते हैं जो चम्मच में चिपक जाती हैं, जैसे लपसी हो गई, हलवा हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, तो वो थिक चीज़ें धीरे धीरे बच्चा कर लेता है। और ये हमारी कोशिश होती है कि 6 महीने से लेके 1.5 साल तक हम इस पूरे क्रम को प्राप्त कर लें और 1.5 साल तक बच्चे को रोटी सब्जी पे ले आए। ये पूरा एक प्रक्रिया है जो एक बच्चे के साथ जीवन में होनी चाहिए, जिससे कि वो खाने पे आ जाए और 1.5-2 साल के बाद बच्चे को दूध की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती, मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं होती उसको सबसे ज़्यादा दाल दलिया रोटी सीरियल्स खिलाने चाहिए। जो हमारे यहाँ छोटे बच्चों में पेट दर्द का एक आम कारण है, आपने देखा होगा हर चीज़ को हम बीमारी समझ लेते हैं, जो बच्चे अत्यधिक दूध का सेवन करते हैं उनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो पॉटी भी नहीं कई बार जा पाते हैं, लैट्रिन उनकी सख्त हो जाती है, तो अगर हम उनको सीरियल्स देंगे तो उनके जो शरीर का विकास है वो बहुत जल्दी होगा, जिसमें दलिया है, खिचड़ी है, चावल है, दाल है ना, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स हैं, इससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा।
0: क्या कहना चाहिए सभी श्रोताओं
1: से? मैं सभी श्रोताओं से यही मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पोषण सप्ताह को सफल बनाने के लिए जो जो प्रयास हमारे शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं उनकी व्यक्तिगत रूप से जानकारी रखें और लोगों को इस जानकारी को साझा करें और कोशिश करें कि हमारे क्षेत्र का कोई भी बच्चा कुपोषण में ना रहे।

अब डालेंगे नजर आज के समाचारों पर। वृंदावन में बनेगा लेबर शेल्टर होम। रोजगार की तलाश में शहर आने वाले कामगारों को रहने के लिए सस्ता और सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। वृंदावन में लेबर शेल्टर होम के लिए 3000 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है। रोजगार मिलने के बाद वे अपनी आय के अनुसार स्थायी आवास तलाश सकेंगे। सहायक श्रमायुक्त राजकुमार सिंह ने बताया कि मथुरा में योजना के तहत भूमि चिन्हित की गई है। जनपद में 2 हॉस्टल लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जाएंगे। यार्ड के रीमॉडलिंग से 1 दर्जन ट्रेनों पर पड़ेगा असर। धौरपुर रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते 8 से 17 सितंबर तक कई ट्रेनों को रास्ते में रोककर चलाया जाएगा। इस दौरान ट्रेनों को 15 से 60 मिनट तक रेगुलेट किया जाएगा। इसे मथुरा होकर जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों को कुछ समय की देरी का सामना करना पड़ सकता है। अब डालते एक नजर आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। आज ही के दिन 1695 में अंग्रेजी समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने हिंद महासागर में मुगल जहाज गंजे सवाई पर हमला किया, जिसे समुद्री डकैती के इतिहास में सबसे बड़े और लाभदायक हमलों में गिना जाता है। वहीं 1882 में ब्राजील ने पुर्तगाल से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसे क्राई ऑफ इम्परिंगा भी कहा जाता है। 1906 में मुंबई में प्रख्यात व्यापारियों द्वारा बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1921 में अमेरिका के अटलांटिक सिटी में पहली मिस अमेरिका सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। वहीं 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना ने गुजरात के द्वारका तट पर हमला किया। वहीं आज ही के दिन 1887 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का जन्म हुआ था। क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत बातचीत करते हैं विषयों के बारे में जो होते हैं आम बन जाते हैं खास। पुलिस विभाग हमारी सुरक्षा के लिए है, हमें पुलिस विभाग का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। जो नियम पुलिस विभाग द्वारा बनाए गए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। पुलिस के साथ आपका सहयोग हो, इसके लिए दिवस भी निर्धारित किया गया है ताकि आम जनता का पुलिस के साथ जो संबंध है वो मधुर बना रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि पुलिस अधिकारी, पुलिस से जुड़े सभी लोग, पुलिस के जवान बड़ी मुस्तैद

से अपना कार्य करते हैं उनके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। हम बिना बात के उनको तंग करते हैं, उन पर आक्षेप लगा देते हैं, अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें सही सूचना सही समय पर मिल जाए तो पुलिस विभाग अपना कार्य पूरी मुस्तैदी से करता है। एक नागरिक के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी तरीके से ऐसा कोई कार्य ना कर रहे जिससे कहीं ना कहीं किसी भी तरह की परेशानी हो। हमारी जिम्मेदारी है कि आप अपने शहर को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर स्वच्छता होगी वहीं पर स्वास्थ्य होगा। जब हम अपने आसपास स्वच्छता का माहौल रखेंगे, स्वच्छता का वातावरण रखेंगे, तो हमारे आसपास बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि जहां पर गंदगी होती है वहीं पर बीमारियां खुला निमंत्रण लेकर आती हैं। मक्खी मच्छरों के पनपने का पूरा पूरा अंदेशा रहता है। और आजकल का जो मौसम है जिस पे बार बार बारिश हो जाती है, एकदम से तेज़ धूप निकल जाती है, ऐसे में वेक्टर बॉर्न डिजीज़ अपने पैर पसार जाती हैं। ऐसे में आपका पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के माहौल को भी स्वच्छ रखें। जब स्वच्छता आपके आसपास रहेगी तो आपका जीवन भी स्वास्थ्य से पूरा होगा, यानी आप स्वस्थ रहेंगे। प्रयास कीजिए अपने घर के साथ साथ अपने घर के बाहर की सड़क को भी स्वच्छ रखें। अक्सर हम अपने घर को पूरा स्वच्छ रखते हैं, उसका पूरा जो कूड़ा है उसको निकाल कर सड़क पर डाल देते हैं और ये भूल जाते हैं यही सड़क एक दिन हमारे घर तक भी आती है। ऐसे में अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानियां आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें, एक वृक्ष जरूर लगाएं, सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। और इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति सुरभि शर्मा की थी, संयोजक ओपी सिंह थे। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

दूध का कर्ज, आपने सुना अभी साथियों इस फिल्म के गीत को मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन अनु मलिक की थी। आइए आप सुनते हैं ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे परदेश फिल्म के गीत को अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और सैथियों की आवाज़ में। आनंद बख्शी की इस शब्द रचना को धुन से संवारा था संगीतकार नदीम श्रवण ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में। अभी आपने सुना फिल्म थी रोटी, और अब ये कार्यक्रम का अगला गीत है।

कुर्बानी फिल्म के इस गीत को आपने सुना अभी कंचन आनंद और मनोहर उदास की आवाज में। गीत को लिखा था इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे अभिजीत हरिहरन के अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में फिल्म ओम जय जगदीश का ये गीत।

आप सुन रहे थे अभी मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में प्रतिज्ञाबद्ध फिल्म के गीत को। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं साथियों इसी क्रम में ये अगला गीत।

मोहम्मद अजीज सलमा आगा की आवाज़ों में आपने सुना पति पत्नी और तवाई फिल्म के गीत को। आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों आइए आप सुनते हैं ये अगला गीत।

आशा भोसले बप्पी लाहिड़ी की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का ये गीत। इंदिवर के लिखे इस गीत को बप्पी दा ने ही संगीत से संवारा था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से फिल्म संगीत का।

0: आप अभी सुन रहे थे फिल्म एक्शन रिप्ले का ये गीत। दलेर मेहंदी, ऋचा शर्मा और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था और आज का ये कार्यक्रम इसी गीत के साथ ही अब यहीं पर संपन्न होता है। अब समय हो चुका है साथियों फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का, तो फिर आइए सुनते हैं ये फोन इन कार्यक्रम। प्रस्तुति चंद्रिका कुमार की है।
1: हेलो आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपके रेडियो साथी चंद्रिका कुमार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व हम बताना चाहेंगे कि जो श्रोता हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम से जुड़कर अपनी पसंद का फिल्मी नगमा सुनना चाहते हैं, वो हमें हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर कॉल करके अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 10:30 पर होती है, जिसका प्रसारण रविवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 11 किया जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो आकाशवाणी।
2: परम आदरणीय दीदी शादर नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन से साथी बात कर रहे हैं?
2: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी, काफी दिनों के पश्चात आपसे एक बार पुनः वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
1: जी, हमें भी आपसे बात करने का ये शुभ अवसर कहूंगी मिला है, क्योंकि जब भी हमारे श्रोता साथी हमें फोन करते हैं और हृदय से नमन करते हैं हम उनको कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में हमसे बातचीत की।
2: जी दीदी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है आपसे वार्तालाप करके, और जब भी आकाशवाणी मथुरा वृंदावन में फोन लगता है तो बेहद खुशी प्रसन्नता होती है। दीदी, आपको, आकाशवाणी परिवार को, समस्त श्रोताओं को कृष्ण जन्मोत्सव और नंद उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
1: आपको भी इस पवित्र उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। तो आज क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से?
2: जी, हमारे मथुरा वृंदावन में इस वक्त भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। जन्मोत्सव तो बीत चुका है लेकिन नंद उत्सव तो प्रारंभ है और ये कई दिनों तक चलता रहता है हमारे ब्रज में।

0: और ये खुशी आस्था श्रद्धा का जो पर्व है बड़े ही आनंद और उत्साह पूर्वक मनाया जाता है।
1: बिल्कुल खूब कहा आपने। और ये उत्सव हमें संदेश देता है कि हम हर दिन अपने परमात्मा को याद करें, अपने ईश्वर को नमन करें और प्रभु के चरणों में सदा अपने को झुका कर रखें। क्योंकि जब हम परमेश्वर को नमन करते हुए उसके चरणों में शीश झुकाते हैं तो हम जीवन में बहुत ऊंचा उठते हैं, बहुत ऊंचा।
0: जी बिल्कुल, आपकी बातों से सहमत हूँ। भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि प्रेम ही पूजा है और प्रेम ही करना चाहिए, सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल देना ईश्वर के हाथ में है।
1: बिल्कुल, कर्म तो हमारा सबसे बड़ा ही धर्म कहेंगे है। और यही हमें गीता का संदेश भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुवा ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान कृष्ण के इस खूबसूरत से संदेश के साथ आज फरमाइश बताएं, किस गीत की फरमाइश है आपकी?
0: यदि आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शेष नाग, छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत।
1: सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर करता हूँ नमस्कार।
1: आपको भी नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आकाशवाणी, राधे राधे मैम।
0: राधे राधे। कौन से साथी बात कर रही हैं?
1: ये मऊली से बोल रहा हूँ मैम, मैं नाम चंद्रपाल है मैम।
0: बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आज जन्माष्टमी का उत्सव है, सभी हम उत्सव मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से आज?
1: मैम जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और आज क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से जो इस समय आपको सुन रहे हैं?
1: ये सब प्रेम भाव से बने रहे और सब प्रेम से रहे, जैसे श्री कृष्ण भगवान रहते थे प्रेम से।
0: बिल्कुल, आपके इसी संदेश को हमारे जो भी श्रोता साथी सुन रहे हैं उस पर जरूर अमल करेंगे, अपने प्रभु के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने व्यवहार में भी उतारेंगे।
1: मैम मैं एक नाम लेना चाहूँ अपने भाई का। मेरे भाई का नाम है पंडित श्री मुनेश गौतम प्रधान जी।
0: जी, तो अपनी फरमाइश भी बताइए आज।
1: फरमाइश मैम यही है, हरे रामा हरे कृष्णा कोई कीर्तन सुना दीजिए।
0: कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: राधे राधे मैम।
0: हेलो आकाशवाणी, कौन से साथी बात कर रही हैं?
2: नमस्कार जी,
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
2: मैं ब्रज रेडियो का श्रोता मित्र सांवरिया गांव थैरावर तहसील कुमेर जिला डीग राजस्थान।
0: सांवरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
2: हम बिल्कुल ठीक हैं जी, और आप बताओ कैसी हैं?
0: जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में? आपका फोन लगा है, हमसे बात हो रही है।
2: पहले तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई शुभकामनाएं।
0: आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के उत्सव की।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बस मैं कहूंगा, और हमारे साथी हैं श्री चौधरी महेंद्र सिंह जी, शारदा प्रसाद प्रजापति जी और यादराम जी, और जनूथर से हैं श्री रमन लाल मैकेनिक जी। इनकी पसंद पर आप गाना सुनवाइए हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: जी मैं जिला अलीगढ़ तहसील इजलास से बात कर रहा हूँ।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अपना नाम बताएं।
1: नरेंद्र कुमार।
0: नरेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, पहली बार कॉल लगाया काफी ट्राई करने के बाद।
0: क्या बात है, और पहली बार आपकी कार्यक्रम में कॉल लगी है तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कहना चाहेंगे, पहली बार कॉल लगा है आपका तो अपने श्रोताओं से?
1: मैम मैं ये कहना चाहूंगा बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए कि पहली बार कॉल लग गया है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ नए नए श्रोता जुड़ते हैं और नए नए श्रोता अपने विचार, अपने जो बात है वो हमसे साझा करते हैं, जिसे हमारे जो और सुनने वाले श्रोता हैं वो भी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। तो आज फरमाइश क्या रहेगी आप?
1: ओ प्रिया और प्रिया गाने का बोल है वो।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्ते। चिंदवाड़ा
0: नमस्कार। कौन से साथी बात कर रहे हैं?
1: मध्य प्रदेश से बोल रहा था दीदी, सतीश रघुवंशी
0: सतीश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: जी। हम तो बढ़िया दीदी, आप बताएं आप कैसे हैं।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज कार्यक्रम में आपसे हमारी बात हो रही है, क्या संदेश है श्रोताओं के लिए आज?
1: सबसे पहले दीदी आपको और आकाशवाणी परिवार को और सभी सुनने वाले श्रोताओं को दीदी मेरी ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दीदी।
0: आपको भी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप और घर परिवार में सब लोग कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल बढ़िया है दीदी। और आपके यहाँ और आप कैसे हैं दीदी?
0: हमारे परिवार में, हमारे आकाशवाणी परिवार में भी सभी बहुत अच्छे हैं। तो जन्माष्टमी का उत्सव कैसे मनाया आपने?
1: बिल्कुल दीदी, बस फुल तैयारी है दीदी आज मनाने की ढोल नगाड़े के साथ।
0: चलिए अपने जन्माष्टमी के उत्सव को मनाइए और अपने प्रभु को याद कीजिए। लल्ला का जन्मदिन मनाइए आज, उनका प्रकटे उत्सव मनाइए और आज अपनी फरमाइश भी बताइए हमारे कार्यक्रम में।
1: दीदी आप मुझे सुन दीजिए, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया।
0: सुनवाते हैं कार्यक्रम में आपको, आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: और कुछ दोस्तों को डेडिकेट कर सकते हैं दीदी?
0: जी नाम बताएं।
1: हमारे मित्र हैं दीदी, गौतम राय बोले जी हैं, राजू यादव जी हैं, राजन गंगवार जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, और दीदी सुनने वाले सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आप सभी साथियों की पसंद पर कार्यक्रम का ये गीत।
1: जी थैंक यू दीदी।
0: हेलो आकाशवाणी,
2: नमस्कार,
0: नमस्कार। कौन से साथी बात कर रहे हैं?
2: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और कैसे हैं?
2: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: क्या कहना चाहेंगे आज आपकी और हमारी बात हो रही है?
2: अब जन्माष्टमी तो मना रहे हैं आज
0: जी,
2: और कार्यक्रम आपका अच्छा लगता है हमेशा।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से आप?
2: सबसे ज्यादा तो ये फोन इन कार्यक्रम ही पसंद आते हैं, इसके अलावा ईमेल वगैरह है, ये सब भी अच्छे लगते।
0: अच्छा, तो आज क्या फरमाइश करना चाहेंगे आज के दिन?
2: मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया
0: सुनवाते हैं आपको, आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आकाशवाणी, मैं गांव धरुआ से बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप? तो
1: बढ़िया
0: आज कार्यक्रम में आपने फोन किया है, क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से?
1: है। एक हम गाना सुनना चाहते थे, श्रोताओं से कहते हैं जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं।
0: गाना भी सुनवाएंगे आपको, और आपने जो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं उनके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी श्रोताओं की ओर से और हमारी ओर से भी। अब फरमाइश बताएं आपने, क्या फरमाइश है आज की?
1: सुना दीजिए कोई गाना अपनी पसंद का ही।
0: आपने फोन किया कार्यक्रम में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हेलो आकाशवाणी,
0: कौन से साथी बात कर रहे हैं?
2: मैं महाविद्या कॉलोनी से एस.के. चतुर्वेदी बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका चतुर्वेदी साहब कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आपकी स्वच्छता की कामना करता हूँ।
0: हम भी अच्छे हैं, और हमारे आकाशवाणी परिवार में भी सभी बहुत अच्छे हैं, और सभी की जो भी हमारे श्रोता हैं, जो भी हमें सुनते हैं, उनके लिए भी हम मंगल कामनाएं करते हैं भगवान से।
2: एक वो है जसो मदी मैया से पूछे नजर लाला।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे थे अभी फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति चंद्रिका कुमार की थी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, आइए आज सुनते हैं ये धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत मथुरा शहर के प्रसिद्ध गजलकार शायर महेंद्र सक्सेना हुमा से निशेष जार की हुई बातचीत का ये कार्यक्रम है। आइए आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का और सुनते हैं।
1: कहते हैं कि जहाँ रवि नहीं पहुँचता वहाँ कवि पहुँच जाता है। कोई भी साहित्यकार, कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार या कोई भी गजलकार जब अपनी रचना को मूर्ति रूप देता है तो अपने समाज के संदर्भों को, अपने आसपास के जीवन को,
0: कार्यक्रम के संयोजक OP सिंह हैं,
1: समेटे हुए रहता है, जिसके माध्यम से जब कवि भी इतिहास लिखा जाता है तो उस समय के इतिहास को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे रचनाकार, ऐसे गजलकार या ऐसे कवि जब समय पे होते हैं तो समाज की उस नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं जो समाज को एक दिशा देती है, एक प्रेरणा देती है। आज के इस धरोहर कार्यक्रम की सीरीज में हमारे साथ हैं श्री महेंद्र कुमार सक्सेना जी, हुमा जी, जिनको हुमा के नाम से हमारा शहर जानता है। आपका मथुरा से और ब्रज से बहुत लंबा नाता है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं जीवन को लेकर के लिखी हैं, बल्कि जीवन को जिस हिसाब से जिया है उसी हिसाब से लिखा भी है। उनकी एक एक रचना हमको प्रेरणा देती है, हमको रोशनी देती है और हमको जीवन के वो संदर्भ और रास्ते दिखाती है जहां होकर अगर हम चलें तो वास्तव में जीवन का आनंद आता है, जीवन जीने का आनंद आता है। आज के इस कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं श्री निशेष जार साहब, जो शिक्षाविद हैं, हमारे मथुरा में शिक्षा अधिकारी हैं, साथ ही साथ कवि और साहित्यकार भी हैं। आप भी समाज को उस नज़र से देखते हैं, परखते हैं। तो मैं जार साहब, निशेष जी, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि

0: साहब का जो जीवन रहा है, उनका जो काव्य रहा है, उनकी जो रचनाएं रही हैं, उस रास्ते से शहर के हमारे सभी श्रोताओं को वो टटोलने की और खोजने की कोशिश करें कि उनकी वाणी से कुछ लोगों को एक आगे चल करके रोशनी मिलती रहेगी। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और हमा जी आपका भी स्वागत करता हूं कि आपके उन अनुभवों से, उन संस्मरणों से और उस गजल से और काव्य से हम रूबरू होंगे। तो आप दोनों का स्वागत।
1: धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मथुरा के उस्ताद शायर महेंद्र सक्सेना हमा साहब के साथ आज रूबरू वार्ता करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं मथुरा आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का भी ये सौभाग्य मानता हूं कि आज हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं दादा महेंद्र सक्सेना हुमा से वार्ता। दादा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि गजल आपका मूल स्वर है या किसी अन्य विधा में आपने अपनी बात कहना शुरू किया?
2: निशेष जी, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मूल विधा गजल ही है। वैसे तबाजमाई तो श्रीवर्ष लिखा, दोहे लिखे, गीत लिखे, लेकिन आखिर में तबीयत मौजू अगर हुई और रुझान कहीं केंद्रित हुआ तो सिर्फ गजल और गजल। मुमकिन है इसकी वजह ये रही हो कि मैं अपनी एजुकेशन टाइम में उर्दू का विद्यार्थी था, मेरी मदर लैंग्वेज उर्दू थी, लेकिन एक वलवला सा था ये, कुछ भी लिखो, लेकिन जब तक कोई शेर नहीं हो जाता था या कुछ ऐसी बात नहीं हो जाती थी उलट बांसी चमत्कारिक, तब तक मज़ा नहीं आता था, और ये मज़ा गज़ल में ही है।
1: ये तो अच्छी बात है कि आप गज़ल ही आपका मूल स्वर रहा है। प्रायः जो लेखक होते हैं उनकी रचना धर्मिता में पारिवारिक पृष्ठभूमि, आसपास के वातावरण, इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्लीज़ आप ये हमारे श्रोताओं को अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना।
2: हाँ बिल्कुल, मैं जाति पांच के हिसाब से तो वो काइस्त सक्सेना 12 भाइयों में से एक हम भी हैं, लेकिन बहुत गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मुझे ये अपनी वंशावली को स्पष्ट करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि मेरे ताऊ डीएम के यहाँ अर्दली थे, मेरे फादर मुख्तार थे, मेरे बड़े ताऊ कैनाल डिपार्टमेंट में पेट्रोल थे। अब इतनी छोटी पोस्ट पे बड़ी बड़ी गृहस्थियाँ होती थी, पहले नसबंदी वगैरह तो थी नहीं, परिवार नियोजन तो था नहीं, किसी के 11 बच्चे हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं, उसमें हम भी शामिल थे। शिक्षा के दौरान, और शिक्षा कैसे पाई आप ये विश्वास करके मानिए कि कुशक टाउन स्कूल से 7वां पास करने के बाद मैं यानी हुमा ने किसी सरकारी स्कूल की सूरत नहीं देखी। हाई स्कूल प्राइवेट किया, उस जमाने में एटी हाई स्कूल हुआ करता था। मास्टर ब्रजमोहन लाल की हम पर बड़ी असीम कृपा थी कि उन्होंने हमें किसी तरह से हाई स्कूल कराया। हाई स्कूल करने के बाद उम्र कुछ नहीं थी, नौकरी मिलने का सवाल नहीं था, तो द्वारकाधीश की बजरिया में एक सिंधी परिवार था जो मेडल बनाता था बच्चों के, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल वगैरह के, तो 14वें रोज पर हमने वहाँ काम शुरू किया। फिर किसी तरह से इंटर किया। हमारे जमाने में इंटर जब हमने किया तो मथुरा में सेंटर नहीं था इंटर का, आगरा सेंटर था। 29 दिन 19 रुपए आगरा सेंटर करके आए, भगवान की बड़ी असीम कृपा, पास हो गए और नौकरी घर बैठे लग गई। 6 जून 1951 को इंटर का रिजल्ट आया था, 4 जून 1951 को अपॉइंटमेंट हो गया। यद्यपि मैं 17.5 वर्ष का था, उस वक्त के अकाउंटेंट और जो कुछ एग्जीक्यूटिव वगैरह होते थे उन्होंने एतराज भी किया कि साहब छोटी उम्र है, बोले बॉय सन उसमें काउंट हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 2 महीने 27 दिन छोटा था, उससे वो पूरा हो गया, नौकरी चलती रही। लेकिन नौकरी चलने से घर की कुछ हालत सुधरी, और आप विश्वास करें कि पहली बार मेरे घर के अंदर 40 रुपए की 2.5 मन गेहूं की बोरी आई थी, और मेरे मुंह से इत्तेफाक से यह निकल गया कि अब रोटी तो मिल ही जाया करेगी। वक्त आगे बढ़ा, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट का कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नोट एंड आफ्टर का था, मैं बैठा, मेरी यूपी में 2nd मेरिट आई। उस वक्त का नियम था कि जो मेरिट से पास होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाएंगे, मेरा आगे तबादला हो गया, 1958 में आगरा ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद भाई बहनों की जिम्मेदारियां थी, होती रही पूरी किसी तरह से, लेकिन आगे

0: वो जगह है जहां से मुझे शायरी का शौक लगा, और शौक क्या ही है, एक्चुअली एक तरह सा चैलेंज सा था। हालांकि मैंने अपने आत्मकथा में ये बात नहीं लिखी है, एक बड़े विद्वान थे सेंट जॉन्स कॉलेज में, फारसी के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि तुम नहीं लिख सकते गजल। अरे क्यों नहीं लिख सकते भाई, क्या बात है। हमारे जिस जगह आगरे में हम रहते थे, ऑफिस से 5-7 मिनट की दूरी थी घर की, उसमें एक हबीब अहमद खान वारिसी, बाद में मालूम पड़ा शायर थे वो और हास्य के बड़े प्रतिष्ठित कवि थे आगरे के। मैं एक दिन कपड़ा सिलवाने गया, मोहल्ले में रहते थे, बोले वो सक्सेना भाई तुम उर्दू बड़ी शानदार बोलते हो, बड़ी नफीस बोलते हो, कुछ गर्व हुआ। मैंने कहा भाई ये मेरी मादरी जुबान है, अगर मैं उर्दू नफीस बोलता हूँ तो इसमें क्या। उनने कोई इसका जवाब नहीं दिया और मुझे दावतनामा दिया इस बात का कि आज 2 बजे मैकर्स साहब की बैठक पे एक गोष्ठी है, आप उसमें चले गए।
1: तो ये आपकी पहली गोष्ठी थी?
0: पहली गोष्ठी जी। मैंने सुना, पढ़ा नहीं क्योंकि मैं शेर कहते ही नहीं था। वहां एक बुजुर्ग शायर आए हुए थे, अफजल साहब, पुलिस में नौकर थे, उम्र कम लिखा दी होगी लेकिन बुढ़े बहुत थे, सर्विस में थे उस वक्त भी। उनके सपोर्ट मुझे उस वक्त साहब ने कर दिया, कह लीजिए साहब ये इस बच्चे को संभालिए। वो बातचीत करते रहे, गजलों पर प्रश्नोत्तर, मैं जवाब देता रहा, स्टडीज फ्रेश थी, सब कुछ दिमाग में सेट था। उन्होंने एक मिसरा तरह दे दी कि इस पर गजल कह सको तो कह के ले आना मेरे पास। निशेश जी आप विश्वास करेंगे कि मेरा पूरा घर शायर, मेरे बड़े भाई माइल तखल्लुस रखते थे, मेरे फादर मुंशी केवल किशन दास रौनक तखल्लुस रखते थे, नाथ के मशहूर शायर थे, बड़े मौलवी साहब जो उस वक्त चौक में इमाम हुआ करते थे उनके बड़े प्रिय शिष्यों में से थे। लेकिन वहां पर मथुरा में रहते हुए ये बात पैदा नहीं हुई, लेकिन आगरे में जिस दिन उन्होंने मिसरा तरह दी, एक वलवला तूफान दिमाग में आ गया और 5-7-10 दिन में बामुश्किल तमाम 5-7 शेर कहकर गजल पूरी की और अफजल साहब के पास पहुंच के उनको दिखा दी। पढ़ी, बोले हाँ ठीक है, चल रहा है, चलो लो अब शुरू करो और लिखो। लिखते रहे, लेकिन 1962 में मुझे ये कहा कि आपका तखल्लुस अभी मैं नहीं दूंगा आपको, तखल्लुस तो मैं जब दूंगा जब मैं देख लूंगा कि आपकी फिक्रे परवाज क्या है, सोच की उड़ान, फिक्रे परवाज सोच की उड़ान क्या है। 1962 में एक ऐसी गजल हुई, जब उन्होंने पढ़ी तो मेरी पीठ ठोकी, तारीफ की और बोले कि मियां आज से तुम हुमा हो गई। मैंने कहा मैंने हुजूर मैं तो अच्छा खासा इंसान हूँ, आपने तो परंपरा बना दिया।
1: ये तखल्लुस आपको इस प्रकार मिला?
0: हाँ जी, हुमा इस प्रकार मिला कि उन्होंने मेरी गजल देखी, उसके 2 शेर उनको इतने पसंद आए कि एक उनका बुजुर्ग मतलब सीनियर शागिर्द था उसको सुनाई, तो जाहिर है कि उसने थोड़ा बर्दाश्त कर ही लिए वो शेर किसी वजह से। शेर थे, मैं आपको पेश करता हूँ कि अगर
1: दादा ये प्राय तकल्लुस ये मथुरा भी देहलवी और ये सब रहते हैं तो हुमा होने के पीछे यही कहानी है जो अभी आपने?
0: हाँ, हुमा होने के पीछे यही कहानी है, मैं मथुरा भी कभी नहीं लिखता
1: जी,
0: चूंकि ये जो कविता है या वर्स है या पोइट्री है ये कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये यूनिवर्सल है, इसलिए मैं हुमा के आगे मथुरा वगैरह नहीं लिखता। तो मैंने उनसे कहा मैंने हुजूर आपने तो मुझे अच्छा खासा परिंदा बना दिया, मैं तो अच्छा खासा इंसान हूँ। बोले बिल्कुल सही कहते हो, और क्या जानते हो हुमा के बारे में। तो मैंने कहा फ्लाइट उसकी, बोले बस मैं यही चाहता हूँ बेटे कि तुम्हारी जो सोच हो वो हुमा जैसी ऊंचाई की हो, आज से तुम हुमा हो। गले से लगा लिया और उस शेर पर मुझे बहुत दाद दी, उसके बाद चलता रहा। लेकिन कुछ पीरियड ऐसा भी आया जिसमें बिल्कुल शांत हो गए, ये पीरियड था करीब करीब 1970 से लेकर और 1983-84 तक, जिसमें बिल्कुल शांत रहा, जो कभी कुछ हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं। हाँ, उसमें एक शेर था कि अगर जोशे जुनू में सुए सहरा हम चले जाते, सुए सहरा जंगल की ओर, अगर जोशे जुनू में सुए सहरा हम चले जाते, बता ए दहशते दिल घर की वीरानी का क्या होता। और दूसरा शेर था कि शरीयत क्या अजा कैसी, नमाज पंज गाना क्या, समझ पाते इसे तो दौर शैतानी का क्या होता। ये 2 शेर थे जो उस्ताद को बहुत पसंद आए और उन्होंने बस हुमा लो मियां से तुम हुमा गजल इसला करके हमको दे दी। और खास बात ये रही कि जो मैंने मक्ता कहा था जिसमें कवि का उपनाम आता।

उसको मैंने इस तरह से कहा था कि गजल कहने पे माइल कर दिया, फिर ज़ौक़े बेहद ने महिंदर ढूंढते रहते गजल खानी का क्या होता। तो उन्होंने दूसरी लाइन खत्म कर दी और मक्ते को इस तरह से उन्होंने सुधारा कि गजल कहने पे माइल कर दिया, फिर ज़ौक़े बेहद ने हुमा ढूंढे से कम मिलता, गजल खानी का क्या होता, और महिंदर को काट के हुमा लिखा और मेरे

0: को काट के हुमा लिखा और मेरे हाथ में गजल दे दी कि आज से आप हुमा है।
1: तो ये आपने अभी पारिवारिक पृष्ठभूमि और किस प्रकार आपने गजल लिखना शुरू की और कैसे हुमा तखल्लुस आपको मिला, ये आपने अभी हमारे श्रोताओं को हमको बताया। दादा, एक प्राय बात कही जाती है कि जो लेखक होता है, जो रचनाकार होता है, जो गजल गो होता है, उसको ये पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा और कुछ मन में अंतर्मन में कुछ ऐसा चल रहा होता है, कुछ ऐसी घुटन होती है या कोई पीड़ा होती है या कोई कुछ समाज में कुछ विसंगति दिखती है, वो कौन सी परिस्थितियां थी आपके समक्ष जिन्होंने आपको ये लिखने के लिए मजबूर किया?
0: मैं आगरा में था, छोटा भाई आगरा कॉलेज से एमए कर रहा था, 14 रुपये उसकी फीस जाती थी, 8 रुपये मकान का किराया, मुझे कुल 78 रुपये मिलते थे, 2 बच्चों पत्नी सबके साथ 78 रुपये में गुजर किस तरह से हुई होगी आप अंदाज लगा सकते हैं। और यकीन मानिए कि मैंने अगर जीवन में कभी मेरी आंखों में आंसू आया तो सिर्फ जब मैं गुड़ लेके आया था और मेरे दोनों छोटे बच्चों ने कहा हाँ पापा गुड़ लाए, गुड़ लाए, मुझे बड़ा धक्का लगा, वक्त सब कुछ करा लेता है। बस यहीं से मेरा रुझान बदला। मैंने खुद से सवाल किया कि तुम समाज को देना क्या चाहते हो, समाज से कहना क्या चाहते हो, ये तुम अपने लिए लिख रहे हो कि किसी बादशाह के लिए लिख रहे हो कि किसी की तवायफ के लिए लिख रहे हो, ये लिख किसके लिए रहे हो, संदेश क्या है इसमें। बस यहीं से कोई दिमाग थोड़ा सा चला, फिरोजाबाद में किसी चूड़ी के कारखाने में आग लग गई थी, मैं उस दिन वहीं था इंस्पेक्शन में, मालूम पड़ा कि 2 छोटे छोटे बच्चे जल के मर गए, दिल कांप गया। जो उम्र बच्चों की किताब और कलम उठाने की होती है उसमें वो चूड़ी के कारखाने में काम करते हैं, न जाने क्या दिमाग में चला, शेर निकलते चले गए। और यकीन मानिए शायरी का पूरा ट्रेंड ही बदल गया, मेरे जितने माशूक थे जो गजल की विधा में ख़ास तौर से गिनाए जाते हैं, कंगी चोटी बाल और ये खुशबू और ये माशूक हिजर विशाल मिलन बिछो वगैरह, ये सब एक किनारे हो गए और कलम ने शेर उगलने शुरू किए, कभी चूड़ी कभी तालों में ढल के बुढ़ापा आ गया बचपन से चल के, खिलौने हैं तेरे छैनी हथौड़े इन्हीं से खेल मत आंखें सजल कर, कभी चूड़ी कभी तालों में ढल कर बुढ़ापा आ गया बचपन से चलकर, खिलौने हैं तेरे छैनी हथौड़े इन्हीं से खेल मत आंखें सजल कर, ये शैशव है परीक्षा काल तेरा, ये शैशव है परीक्षा काल तेरा, अभी तू रोटियों के प्रश्न हल कर, पसीना भी कभी अनमोल होगा, पसीना भी कभी अनमोल होगा, तू इसको सत्य हल कर।
1: प्रश्न अगला प्रश्न यही करना जा रहा था कि आप जो अपनी बात कहते हो बहुत सहज और सहज शब्दों में सहज ढंग से आप बात कह देते हो, मेरे को कुछ पसंद है, जैसे मेरे घर नल है नल में जल नहीं है, हाथ बच्चे ने खिलौने पर उछाला होगा, बाप ने मुश्किल से गोदी में संभाला होगा, ये जो कला आपके अंदर है ये कहा?
0: मेरे ख्याल में राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने अपने संदेश में, राष्ट्र के नाम संदेश में, किसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा और क्या चाहिए, एक तो ये और क्या चाहिए, दूसरा पंडित नाथूराम शंकर शर्मा का साहित्य मेरे आगे सामने था, उसमें संप्रेषण के ऊपर काफी अच्छा लिखा हुआ था, मैंने अपने प्रश्न किया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, और क्या चाहिए, ये दिमाग में हथौड़े की तरह से चोट करता रहा, जबकि कोई लगाव नहीं राजा विष्णुराव प्रताप सिंह से, कोई रिश्तेदारी नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, जैसा सबके लिए भारत के प्रधानमंत्री थे हमारे लिए भी थे, लेकिन जाने उस सेंटेंस ने क्या कहा कि भाई साहब पूरी रात में गजल हुई और इस गजल से ही जो मेरी भाषा की सहजता है सरलता है उसने जन्म ले लिया, और इस सरलता और सहजता को स्वर्गीय मुकुटधारी सरू और स्वर्गीय डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी ने बहुत सराहा, और डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी ने तो ये कहा कि हुमा साहेब आप बिल्कुल इसी भाषा को प्रयोग कीजिए, अगर इसे लोग उर्दू कहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं स्वीकार कर लूंगा, बहुत सीधी सीधी सरल सी भाषा है कि दे सको तो कहूं, और क्या चाहिए, सांस घुटती है ताजा हवा चाहिए,
1: क्या बात है,
0: इस शहर में किसी के भी आंखें नहीं, आपको किस लिए आईना चाहिए, इस जमाने में इंसान मिलता नहीं, क्या गजब है तुम्हें दे।

0: देखता चाहिए। मेरा किरदार और ईमा सलामत रहे, इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए। उनका सानिध्य स्वीकार करना पड़ा, दर्द को भी तो कुछ आसरा चाहिए। और तेरे धागे लिपेटे हुए जिस्म को कुछ तो निस्वानियत की हया चाहिए। और ए महेंद्र, प्रथाओं से हट के लिखो, ये गजल है इसे कुछ नया चाहिए। तो ये नया जो है ये मेरी भाषा है।
1: दादा, अभी आपने बात करते हुए कहा था कि आपके आशिक माशूक बदल गए फिरोजाबाद की घटना के बाद से। प्रायः गजल के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कोई कहता है कि ये हिरण का आर्त स्वर है, कोई कहता है कि आशिक माशूक की वार्ता है। आपकी दृष्टि में गजल क्या है?
0: देखिए, गजल और तंग दामानी का शिकवा, सलीका हो तो गुंजाइश बहुत है। मेरी ये गजल सही विधा सही नहीं, कोई भी विधा हो अगर उसमें लोक हित नहीं है तो वो क्या है। किसी भी आप साहित्य को पढ़ें, किसी भी आप किताब को पढ़ें, बड़े बड़े लेखकों की, पुराण वेद जो भी कुछ, वेद वेद जो भी कुछ है, अंत उनका सबका है लोकहित। तो मैंने कहा, मेरी भाई ये तुम विशाल की जो रात में रो रहे हो, ये से कौन देख रहा है? क्या वाकई तुम्हारा माशूक का दिल पसीज जाएगा तुम्हारे रोने से? ये है क्या, कुछ समझ में नहीं आई बात। अरे भाई, किसी को खुश करना आया, कुछ ले आए हो बेनामी के तौर पर कि भाई इतना पैसा पेशगी दे दे, मैं तेरे लिए ये कह दूंगा। कुछ घर के हालात, कुछ आसपास के हालात, कुछ नौकरी के हालातों ने मेरे माशूकों को बदलवा दिया। मेरे माशूक बेवा औरतें, यतीम बच्चे, गोबर थापती हुई कन्या जो गोबर के हाथ से ही अपने बालों को संवार रही है, वो आदमी जिसके पैर में बहुत ज़बरदस्त चोट है रिक्शा चला रहा लंगड़ाते हुए, ये मेरे माशूक हैं। और जो भी कुछ मैंने कहा वो इन्हीं को सामने रख कर कहा। बहुत से ऐसे शेर हैं जो लोग कोटेशन में कोट कर देते हैं कि साहब ये हमारे साहब का शेर है, अब मेरा नाम लो तो ठीक है, ना लो तो ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मेरे वाकई मुझसे। यहाँ पर एक सत्येंद्र नाम के शायद कोई थे, बड़े लंबे तड़ंगे से, और वो
1: सत्येंद्र याग्वल की
0: सत्येंद्र याग्वल कहीं से, वो बड़ा लंबा तगड़ा मजबूत सा था और वो कलाकार था मंच का, सत्येंद्र था या सुरेंद्र था। उसने मुझसे एक बार ये प्रश्न किया था मेरी गजल सुनकर कि हमारा साहब आपका बड़ा पैसिमिस्टिक थॉट है। मैंने, भाई जब ऑप्टिमिज्म दिखेगा तो हम अपना थॉट बदल लेंगे, अभी तो हमें पैसिमिस्टिक ही दिख रहा है। तो वो दिखता नहीं है, जब देखते हैं कोई ना कोई नया शगुफा खड़ा हो जाता है और वो शगुफा ध्यान आकर्षित करता है। हाँ, जब इमरजेंसी लगी लोग बाग सेल्फ डिसिप्लिन हो गए
1: जी।
0: उस वक्त मैंने एक शेर कह दिया था, बोले कैसा, किसी से मत कहना, चुपचाप रख लेना, आज सुना रहा हूं। अच्छा हुआ जो जब्र के शोले भड़क गए, हम आगे बढ़ गए इसे हद इख्तियार से। तो ये जैसा माहौल होता है, जैसा वक्त होता है। अब चूंकि मैं खुद अब बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैंने कभी प्रॉस्पेरिटी, जिसको इन ट्रू सेंस, जिसको आजकल के सेंस में प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, वो नहीं देखा। रोटी मिलती रही दो वक्त, भगवान की बड़ी कृपा है। जो जिम्मेदारियाँ थी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, सब करा दी, बच्चे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह पोस्ट हो गए। लेकिन वो जो असर है वो अब भी, तुम संभल गए तो क्या, दुनिया तो वही है। दुनिया के जो जो उपाध्याय, दीनदयाल जी उपाध्याय का अंत्योदय जो संदेश है, वो मेरे ख्याल में किसी जीवन में पूरा नहीं होगा, आखिरी आदमी तक सुविधा नहीं पहुंच पाएगी।
1: दादा, अभी आपने बात की कि किस तरह से आपके बच्चों पर और सामाजिक विसंगतियों पर लिखा है, नारी अस्मिता पर भी आपने कुछ शेर कहे हैं। एक मुझे ये याद आता है, उसमें थोड़े चर्चा में भी रहा उस शेर, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: मेरे मोहल्ला ठेक नारनोल, जहाँ मैं पहले रहता था, वहाँ एक स्त्री आन के बसी और उसके शायद तीन चार बच्चे थे। अब मैं तो ये चौकीदारी करता नहीं हूँ, रिटायर होके आ गया था, लोग बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे क्योंकि बूढ़ा हो गया था। लोग आए, बोले दादा, मैंने हाँ, बोले ये तो बड़ी फाहिशा औरत है और इसके यहाँ तो एक आता एक जाता है, आप कुछ करिए। अरे मैंने, भाई तुमने देखा कुछ, क्या किया, कैसे कहते हो फाइशा? अरे बोले कि यार एक आदमी, एक जाता है एक निकलता है, एक आता है एक करता। रिजल्ट ये हुआ कि वो बात उस औरत तक पहुंच गई, मैं तो अलग रहा और उन लोगों में और उस औरत में बहुत कर्री करके बिल्कुल नॉन वेज लड़ाई हुई। और उस औरत ने जब ये कहा कि इन बच्चन को पेट तू भर जाएगा, को भरेगा, मैं कितनों कमाऊं, जिसमें भी

0: बेचा अगर होगा किसी औरत ने, घर में घुसाए हुए फाकों को टाला होगा। ये नसीहत तो भरे पेट की बदहजमी है, भूख से बढ़के जमाने में कोई पाप नहीं। और कौन था जो मेरे बच्चों को निवाला देता, मेरी असमत के सिवा इनका कोई बाप नहीं।
1: क्या बात।
0: फिर बस इसी तरह से लिखता रहा, हाथ बच्चे ने खिलौने पे उठाया होगा, उछाला होगा, बाप ने गोद में मुश्किल से समा, मेरा क्या फूस का छप्पर जला दो इसको, कम से कम आपके घर में तो उजाला होगा। छोड़ ईमान को, किरदार भी मत ओढ़ बिछा, तब तेरे हाथ में सोने का निवाला होगा। और जिसने सब कुछ भी लुटा करके कभी उफ ना करी, वो यकीनन ही तेरा चाहने वाला होगा। इस तरह के शेर होते रहे, लिखते रहे।
1: वो एक, मैंने नारी अस्मिता की बात ज्यादा की थी, अब एक शेर था आपका, उसमें आपने जनाने शब्द का प्रयोग किया, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि ये,
0: हाँ एतराज किया, लेकिन कुंवर बेचैन ने उसको बहुत हाईलाइट किया। उसने लिखा है कि इस शेर ने, जब मैंने दादा की पांडुलिपि पढ़ी तो इस मिसरे ने प्रलयसी मचा दी मेरे दिमाग में, और मैं ये सोचता रहा कि किस दमन में और किस तरह से भाई हुमा दादा ने इसको नर्म किया होगा। तो वो शेर इस तरह से है कि जा उसे और सच सुनाने जा, जा उसे और सच सुनाने जा, और दुश्मन उसे बनाने जा, और किसी बेबस की लूट कर असमत, अबे मर्द बनता है जा जनाने जा।
1: क्या दादा, गजल में आजकल हिंदी उर्दू गजल का विमर्श चल रहा है, या क्योंकि कुछ थोड़ा सा झगड़ा सा भी चल रहा है, ये चलता ही रहता है विमर्श, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं?
0: देखिए, मैं जनवादी लेखक संघ को सामने रख के और प्रगतिशील लेखक संघ, इन दोनों ने अगर कोई काम किया तो ये किया कि गजल को पूरी तरह से समाज की ओर मोड़ दिया, समाज की पूरी तरह से। अब ये अलग बात है कि उनका कम्युनिस्ट थॉट है, कि उनका कैपिटलिस्ट थॉट है, फलाना ढमका, ये तो सब चलता रहता है। लेकिन आप जितने इनके इससे जुड़े हुए लेखक या कवि हैं, उनके आप कलाम को पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही चीज मिलेगी। अब हुआ ये कि गजल में जब ये दो प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जब से गजल की भाषा सरल हुई, मैं हिंदी उर्दू के चक्कर में नहीं पड़ता, हिंदुस्तानी भाषा हुई, या यूं कहिए कि जब से गजल को हिंदी कवियों ने लिखना अपनाया, निश्चित ही ये समाज से जुड़ती चली गई। उर्दू गजल को आप, जब से ये उर्दू गजल पैदा हुई, सबसे पहली बात तो यह कि उर्दू में गजल पैदा ही नहीं हुई, फारसी से गजल उर्दू में आई।
1: अच्छा।
0: और उर्दू से पहले हिंदी भी थी
1: जी,
0: देहलवी जबान थी, शाहजानी जबान के नाम से जाना जाता था। उर्दू का पूरा खाका तो औरंगजेब के जमाने में आखिरी वक्त में तैयार हुआ, और तभी से ये अदालतों की भाषा हुई। तो उर्दू में जिस जो शेर कहने वाले शायर थे, उस जमाने में राजशाही थी, तो वो इस फिक्र में रहते थे कि या तो हुजूर के दरबार में हमारी रसाई हो जाए, ऐसे शेर पढ़े कि इनकी बोटी बोटी फड़क जाए। तो वही हिजर विशाल और वही गुल बुलबुल और तमाम चीज़ें, या फिर कसीदे खानी, क्योंकि खपंच सा बादशाह है जैसा बांस, और उसको रुस्तम बना दिया, गामा पहलवान बना दिया। ये सारी खुराफात हैं, दिमागी अय्याशी, जहनी अय्याशी थी ये। लेकिन जिस तरह जब जब ये हिंदी के क्षेत्र में आई, जो हिंदुस्तानी भाषा में लोग लिखने लगे, तब से ये गजल का झुकाव पूरी तरह से समाज की ओर है। और अब तो मैं क्या, आदम गोंडवी, किसान दहलवी, ये लोग ऐसे हैं, मुनव्वर राणा जैसा शायर समाज से अलग होकर ही लगता, जुड़ कर लिख रहा है। कहाँ चला गया हिज, कहाँ विशाल, पहले शेर सुन के हंसी आती थी, एक शेर सुनाता हूँ आपको और हंसते रहिए। नातावा हूँ, नातावा कहते हैं कमजोर को, नातावा हूँ कफन भी हो हल्का, डाल दे साया अपने आंचल का। ये शेर उस जमाने के शेर है। ये गजल कई पड़ावों से गुजरी है, गजल का आखिरी पड़ाव था रेख्ती, और मुझे नहीं मालूम इसमें वो प्रश्न है या नहीं, अगर इजाजत दें तो मैं इसे बात को आगे बढ़ाऊं
1: जी।
0: हाँ, गजल का एक आखिरी प्रस्थान रेख्ती 1943 में नारायण दास मेमोरियल स्कूल के मैदान में बहुत जबरदस्त कवि सम्मेलन हुआ था। उस वक्त मैं 10 साल का था।

0: मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, लोकल शायर उसमें नहीं थे, बाहर के थे। तो उसमें रेखसी का अंदाज ये था कि शायर जनानी भाषा में बात करेगा और अपने आप को बिल्कुल जनानी तरह से सजा के स्टेज पर लाएगा। गजल यहां तक आ गई थी। ऐसे ऐसे रकीक शेर हैं कि उनको आप खुद सुन के और शर्मिंदा होंगे, जो पढ़े जाते थे। आजादी आई, बंटवारा हुआ, कुछ इधर गए कुछ उधर आए, धीरे धीरे धीरे धीरे कल्चर मिक्स हुआ। एक जमाना था हमारे जमाने मोहल्ले में, हर मोहल्ले में दो तीन शायर मिल जाया करते थे। अब जमाने ये है कि ढूंढो तो नहीं मिलते शायर, जिसको शायर कहते हैं। तो उन्होंने गजल अपने इस आखिरी पड़ाव से कैसे पीछे हटी, ये भी सामाजिक बहिष्कार हुआ जब हुई है ये। वरना फतेहपुर सीकरी के छैला और खैला दो भाई थे, जिनका काम ही यही था कि अपने आप को औरतों की तरह से सजा लेना और मंच पर जाकर बैठकर अपनी, और इस तरह के शेर पढ़ते थे। पढ़ना ही पड़ेगा एक शेर, लिए तो फिरती हैं पेट को फैलाए हुए, पढ़ने में हिचक लगती है। लिए तो फिरती हैं पेट को फैलाए हुए, जरा सी गोश्त की बोटी ने क्या कमाल किया। यहां पहुंच चुकी थी गजल, और ये आजादी के बाद विशेषकर संसार से जो लोगों का रुझान गजल की तरफ आया, इसमें हिंदू ये जो हिंदू शायर कवि कवियों ने उस पर ध्यान दिया, तब से गजल में सामाजिक सरोकार की बातें आईं। वरना गजल तो नंगा एक वो था, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। हमारी इच्छा ये थी कि तुझे गुल के सामने खड़ा करके, फूल के सामने खड़ा करके बुलबुल से ये पूछते कि बुलबुल तुझे गुल पसंद है, हमारा माशूक कैसा है। ये शेर थे। मैंने तो अपने एक लेख में लिखा जो कानपुर में पत्रिका छपी, निस्संदेह गालिब और मीर का कोई जवाब नहीं उर्दू साहित्य में, और ये ग्लोबल शायर की हैसियत रखती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात है कि इन दोनों शायरों में से किसी ने भी समाज के लिए कोई लाइन नहीं लिखी। हाँ ये जरूर है, बेवा की मनाजात उन्होंने लिखी गालिब ने, बनारस शहर की का इतिहास लिखा गालिब ने। तमाम दुनिया अपनी पेंशन के लिए कलकत्ते तक चले गए, लेकिन उस बूढ़े बादशाह को जिसको कि पूरे हिंदुस्तान ने बादशाह मान लिया था, उसके लिए लब्बैक नहीं कहा कि इसका पीछे दो कोई देश के नाम, जिससे जोश बढ़ता जवानों में, उस वक्त क्या हिंदुस्तान के पास ताकत नहीं थी।
1: दादा आपने बहुत गंभीर प्रश्न अपनी बात में उठाए हैं, और एक तरह से गजल की गजल का इतिहास और उसकी यात्रा का आपने जिक्र किया। मैं इसके साथ एक प्रश्न जोड़ना चाहता हूं कि क्या आप ये मानते हैं कि हिंदी उर्दू गजल का जो झगड़ा है वो बेमानी है?
0: झगड़ा मेरे ख्याल में तो होने ही नहीं चाहिए, और अगर है तो वाकई बेमानी है। भाई तेरा अपना थॉट है, देखिए भाव से अभिव्यक्ति तक जो आप तैयार कर रहे हैं वो आपकी क्रीम है, अब उसका इस्तेमाल आप चाहें जैसे कर रहे हैं। मैं तो नहीं समझता कि, मैं तो बल्कि ये कह सकता हूं कि जो नामी गिरामी मुसलमान हैं शौरा, वो बड़ी अच्छी तरह से हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: बड़े अच्छे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो टीवी पे जो बहस होती है आपस में, तो कल एक मुसलमान बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहा था, बड़ी प्यारी हिंदी बोल रहा था। ये शायद कुछ उन लोगों ने कि जिनकी की एक मदरसे के तौर पे अपने आप को हेडमास्टर मान रखा है, ये उन लोगों की खुराफात है, बाकी मैं नहीं समझता। हाँ ये जरूर है भाषा का सरलीकरण। अब देखिए मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, सुनिए। अगर निजामे गुलिस्तां बदल नहीं सकते, ये फूल मर कर रहेंगे संभल नहीं सकते। अब इस शेर को अगर मैं यूं कह दूं कि अगर चमन की व्यवस्था बदल नहीं सकते, ये फूल मर कर रहेंगे संभल नहीं सकते, तो क्या गलत है?
1: जी
0: आसानी से आप तक पहुंच गया। हजार कोशिशें पे हम करी, मगर लेकिन ये दीप ऐसे बुझे हैं कि जल नहीं सकते। अब वो हजार कोशिशें पे हम सतत प्रयास किए, फिर भी हो गए नाकाम, खत्म। तो भाषा के सरलीकरण में मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास ये नहीं है कि मैं नल को नल ना लिखूं या रात को रात ना लिखूं। अगर वहां पर वो लफ्ज फिट बैठ रहा है और उससे संप्रेषण में हमारी रचना में और ज्यादा अच्छा असर पैदा हो रहा है, तो मैं उसे वही रखे रहूंगा, मैं उसको नहीं बदलूंगा।
1: उर्दू में अरूज और हिंदी में पिंगल कहते हैं, इसमें कुछ अंतर है?
0: देखिए पिंगल का और उर्दू अरूज का कोई मुकाबला नहीं।

0: कोई मुकाबला नहीं। उर्दू और रूस तो अपनी 12 बहनों पे खत्म हो जाता है, पिंगल तो आगाध है, कितना जितने गोते मारोगे उतने ही नए मोती निकाल लाओगे। और ये मैं और आपको बता दूं कि सिकंदर के आक्रमण को मेरे ख्याल में 3500 वर्ष हुए होंगे। सिकंदर यहां से बहुत साहित्य ले गया और यूनान पहुंच गया, और खलील जिसने कि ये उरूद बनाया है उर्दू का, उसने यूनान की यात्रा की और यूनान से बहुत ज्यादा उसने मवाद इकट्ठा किया अपनी बहरें वगैरह बनाने के लिए। तो ये पिंगल तो यूं समझिए कि यूनिवर्सल टर्म है, और जिसको उरूज कहते हैं वो सिर्फ कन्फाइंड टू उर्दू, हिंदी पे लागू नहीं हो सकता वो।
1: दादा, मुझ जैसे लेखकों, रचनाकार, गजलगों के सामने प्राय एक समस्या आ जाती है कि कथ्य और शिल्प में किसे किसे ज्यादा महत्व दें, आपकी दृष्टि में किसे ज्यादा महत्व देना चाहिए?
0: मुझे स्वर्गीय परमादरणीय हिमांशु जी ने एक पुस्तक दी, इतनी मोटी है, काव्य से संबंधित है, उसमें संस्कृत के आचार्यों के मत है, तो रुद्रट और मम्मट
1: जी,
0: इन दो में से किसी एक का ये कहना है, ये तो सबका कहना है जितने भी संस्कृत के काव्य आचार्य हैं, कि बिल्कुल रचना बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ये तो सभी कहते हैं। लेकिन अगर वो शुद्धता अशुद्ध जो हमने लिख दिया वो सबकी निगाह से बच के भी चला गया, और वो अशुद्ध शब्द या वो अशुद्धि उस श्लोक को या शेर को या दोहे को बहुत ऊंचाई प्रदान कर रही है
1: जी,
0: तो रुद्रट कहते हैं कि ये जो अशुद्धि है ये स्वीकार करो
1: जी।
0: तो मेरे ख्याल में बहुत सीधी सी बात है कि शिल्प अपनी जगह है, अभिव्यक्ति अपनी जगह है, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं शिल्प को इग्नोर कर दूंगा
1: जी। अगर कथ्य की हत्या हो रही है तो शिल्प से समझौता कर लेना कोई बुराई नहीं है। दादा आपने
0: करे हैं साहब
1: जी,
0: करे हैं
1: जी।
0: देखिए शब्द है जन्म, मुनव्वर राणा ने जन्म लिखा है, शब्द है उम्र, उसने उम्र को उमर लिखा है, मैंने लिखा है, धनंजय जी थे शायद कादम्बनी
1: में
0: संपादक जी, भरतपुर कवि सम्मेलन में, भाई वो तो बड़े नाम थे तो उनके पीछे पीछे लोग लगे हुए थे, हम तो आपके शहर के वैसे ही तो हम बैठे हुए थे और लोग बाग उनके पीछे लगे हुए थे, बड़ा नाम था, विशिष्ट अतिथि थे, तो उन्हें तो सबसे बाद में ही पढ़ना था, उससे पहले मेरी नौबत आ गई, मैंने गजल पढ़ी, उनको न जाने क्या सूझा, उन्होंने मेरे ही रदी काफी पे गजल
1: जी
0: पढ़ दी। मैंने गजल पढ़ी थी, सत्य से हटके गजल मत लिखना, मकबरा ताजमहल मत लिखना,
1: क्या
0: सत्य से हटके गजल मत लिखना, मकबरा ताजमहल मत लिखना, यूं ही उलझाए रहो बातों में, तुम किसी बात का हल मत लिखना।
1: क्या बात है, क्या समसामयिक बात कही दादा।
0: देशद्रोही कवंद बन के जिए
1: जी,
0: इनकी किस्मत में अजल मत लिखना। हम तो सहरा के हिरन जैसे हैं, इससे बढ़कर कोई छल मत लिखना, पत्र में जब भी लिखो आ जाना, कृष्ण की रीत का कल मत लिखना, मैं मुसाफिर हूं मेरे नाम हुमा
1: जी,
0: कोई संपत्ति अचल मत लिखना। तो इसी बहर में और इसी रदी काफिये में धनंजय जी ने गजल पढ़ी, और चूंकि मेरी गजल से टकरा रही थी वो गजल, तो उन्होंने मुझसे ही पूछा कि हमारा साहब गजल कैसी है, अरे बड़ी मुकम्मल है, मरसा गजल है, बड़ी अच्छी, बधाई। बोले नहीं नहीं, अरे मैं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, अरे क्या कुछ ऐसा लगता है कहीं कुछ है तो मैं नहीं सुन सकोगे
1: जी,
0: हाँ बता, मैंने लफ्ज फसल नहीं है फसल है
1: जी,
0: दखल नहीं है दखल है, अरे नहीं नहीं मैं नहीं, तो मैं जब ही तो कह रहा था कि बहुत अच्छी है
1: जी जी। दादा आपने बहुत गजल के बारे में, उसका इतिहास, उसकी यात्रा, उसके बारे में बहुत सार गर्भित और कुछ नई बातें भी और पुरानी बातें भी सब आपने रखी।
0: तेरहवीं शताब्दी में गजल का अवतार हुआ, तेरहवीं शताब्दी में अमीर खुसरो, कबीर, समकालीन। मैं आपसे पूछता हूं कि अमीर खुसरो समकालीन ने किसी बादशाह की तारीफ में कोई शेर लिखा? नहीं लिखा। गजल शुरू से ही आवाम से बात करती है, आप अमीर खुसरो की गजलें देख लीजिए, कबीर की गजलें देख लीजिए।
1: ये तो आपका कॉन्ट्राडिक्टरी बयान हो रहा है, अभी आपने कहा था कि गजल वहां तक पहुंच गई, इतनी गिरावट तक पहुंच गई, और आशिक और माशूक की बात हो रही थी वहां।
0: मैं वही तो कह रहा हूँ,
1: अमीर खुसरो आवाम की बात कर
0: रहे हैं, अमीर खुसरो ने आवाम की बात की, कबीर ने आवाम की बात की, लेकिन उसकी बात
1: बाद की। अच्छा अच्छा ठीक है।

0: उसकी बात की पूरी, क्योंकि ये दोनों बादशाह से डरते नहीं थे।
1: जी जी जी,
0: सर को हथेली पर रखते थे।
1: जी जी,
0: अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, शायद उसने तो कबीर से कह दिया था कि अगर तू मुसलमान ना हो तो तेरी गर्दन उतार देता, कहा था। लेकिन उसकी चूंकि उन्हें इनामत इकरामात की ख्वाहिश थी
1: जी,
0: और तो कुछ काम था नहीं। और बादशाह किसी हद तक मुगलिया सल्तनत तक तो बादशाह रही, उसके बाद तो छोटे छोटे ये राजे महाराजे बन गए, डिफेंस से इनका बिल्कुल सरोकार हट गया। अब उस वक्त को गुजारा कहाँ, जानी अयाशी मुब्तला हो गए, और फिर चलता रहा ये सिलसिला चलता रहा। ये तो आज़ादी के बाद जो लोगों के ऊपर गुजरी, और जब लोगों ने ये समझा कि बादशाह तो है नहीं जिससे कहेंगे, अब तो हमें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा
1: जी,
0: तब से ये समझ आया।
1: तो दादा, आपकी दृष्टि में आज जो गजल लिखी कही जा रही है उसकी दशा कैसी है आपकी दृष्टि में?
0: बड़ी अपीलिंग है और संदेश है उसमें
1: जी।
0: हाँ, थोड़ा सा ये जरूर है कि दीगरा नसीहत खुदरा फसीहत, ये जरूर है, हम जो कुछ बच्चों से चाहते हैं
1: तो खुद नहीं करते,
0: अगर खुद करें तो बच्चों से उसकी चाहना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: जी जी,
0: हम आपको नसीहत दे सकते हैं, निशेष जी ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन हम खुद उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है, लेकिन गजल इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी अच्छी लिखी जा रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी जा रही है।
1: कुछ पुराने गजल गो का आपने नाम लिया अपनी वार्ता में, कुछ ऐसे गजलकार जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो, आपके लेखन को प्रभावित किया हो?
0: हाँ, उस जमाने के जो गजलकार थे, बहुत ईमानदारी की बात तो ये है
1: जी
0: कि सिवाय आशिक माशूक के, या यूं समझिए कि बहुत अच्छे लिटरेचर तक मेरी अप्रोच नहीं थी, लेकिन मैं बहुत यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि उस ज़माने की गज़लें, जिस ज़माने में गज़ल की जो तारीफ़ के हिसाब से लिखी जाती थी, उस ज़माने में भी कुछ लोगों ने ऐसे शेर लिखे जो दिल को छू गए। गज़ल की पॉपुलरिटी का ये आलम रहा कि मुसलमान से अगर आप बात करेंगे तो वह एक आध शेर सुना देगा, और इसकी टक्कर में तुलसीकृत रामायण ही है जो हमको आगे लाती है। हम अपने घरेलू समस्याओं में भी उसका जिक्र करते हैं। मैं ईमानदारी के साथ नहीं कह सकता किसी शायर ने प्रभावित किया, हाँ दौरे हाजरा के शायर जो हम मेरे समकालीन हैं, मेरे साथ जिन्होंने पढ़ा लिखा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ लिया। अब रही बात बंदिश की, किस तरह से बंदिश करनी है, किस तरह से लफ्ज को फरोना है, तो बंदिश अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा सास का। तो इसमें मोती परोए जाते हैं, चलते रहते हैं। वर्तमान में जितने कवि हैं, जितने शायर हैं, एक से एक बढ़कर लगता है लिख रहे हैं, और बहुत अच्छा लिख रहे हैं।
1: कुछ का नाम लेना चाहेंगे समकालीन में, जो आपके समकालीन रहे?
0: हाँ, दो चार नाम लेना चाहूँगा। मथुरा में राहुल गुप्ता अच्छा लिख रहा है, एक ये बालाजीपुरम में
1: अरविंद,
0: हाँ अरविंद
1: जी,
0: अरविंद बहुत अच्छी गजल लिख रहा है, और दीक्षित दनकौरी दिल्ली बहुत अच्छा लिख रहा है, मासूम रागी गाजियाबाद बहुत अच्छा लिख रहा है, खूब अच्छा लिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है।
1: आपने राहुल गुप्ता का नाम लिया, मैं शायद अगला प्रश्न करता है, राहुल गुप्ता तो नए रचनाकारों में गिनती होगी कि आपके समकालीन में होगी?
0: नहीं, समकालीन तो खैर नहीं है, बच्चा है मेरा।
1: जी जी जी,
0: लेकिन उसका जो थॉट है
1: जी,
0: और जो उसके टॉपिक्स हैं शेर के अंदर, एक शेर जो होता है ना, अपनी एक शेर के अंदर कवि अपनी पूरी दुनिया समा देता है, और दूसरे शेर में दूसरी दुनिया, तीसरे शेर में, तो उसको इस बात की तमीज है कि उसे क्या कहना है।
1: जी जी,
0: अच्छा लगा उसको सुन के। एक लड़का और भी है शर्मा, जिसका मुझे नाम पूरा याद नहीं है, लेकिन अच्छी गजल लिख रहा है।
1: नए रचनाकारों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए साहब, उर्दू या हिंदी, इन तीन में, इन जबानों में तीन चीज़ें ज़रूरी हैं शायरी के लिए, कर्ता के लिए, मश्क, अभ्यास, मशवरा, वार्ता, मश्क, मशवरा और मुताला, पढ़ना, अध्ययन
1: जी,
0: करते रहिए। बस इतना ज़रूर रखिए, ईमानदार अपने आप को बनाइए, भाव टकरा जाए उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, के टकराते रहते हैं, लेकिन शेर तुम्हारा टकरा जाए उससे बचो, और अगर ये एक बार कर लिया तो फिर ये होता

0: मैंने मसा के नवोदय कवि से यही कहा है कि बेटे तुम इन दो शेरों को मत पढ़ा करो। अब वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये ज़रूर है कि जब तक आप खुद अपने आप को गज़ल या किसी भी विधा को मॉर्गेज नहीं कर देते तब तक जिसको एक्सीलेंसी कहते हैं वो प्राप्त नहीं हो सकती। रास्ता चलते अभी बहुत से लोग हमारे तुम्हारे देखते देखते बहुत से उभरे, बहुत से बैठ गए, लेकिन निरंतर गज़ल कहना, जुल्म के आखिरी अल्फाज रकम होने तक मैं ना छोड़ूंगा कलम हाथ कलम होने तक, जब तक हैं लिखते रहते हैं, चल रहा है।
1: बहुत बहुत आभार दादा आपका, आपने बहुत खुले मन से और न सिर्फ अपनी बात कही बल्कि हिंदी उर्दू गजल जैसे विवादित
0: जिस तरह से आज आयोजन हुआ है, किन्हीं दो तीन लोगों को बुला के दोहे पर आयोजन, क्योंकि मैं निश्चित रूप से सिद्ध करूंगा कि गजल कसीदे से नहीं दोहे से निकली है।
1: जी जी
0: ये चाहता हूँ।
1: बड़ी बात कही है आपने, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अंत में हम चाहेंगे, हमारे श्रोता भी चाहेंगे कि आप अपनी पसंदीदा जो दो चार गजलें हैं वो पढ़कर हमारे सामने रखें।
0: गोभाई निशेश जी, शायर से ये कहना कि अपनी पसंदीदा गजलें, शायर को आप बहुत जिम्मेदारी से लाद देते हैं
1: जी।
0: शायर की तो सारी गजल उसकी पसंदीदा होती हैं, लेकिन जिस एक गजल को कुंवर बेचन ने अपनी मुझे जो कमेंट मेरी किताब छपने के लिए जो उसने अपनी व्यूज दिए हैं, उसके रदीफ काफियों को हाईलाइट किया है, उसको मैं पेश करता हूँ। दुआ भरे आंचल भेजे थे
1: जी, दुआ भरे आंचल,
0: दुआ भरे आंचल भेजे थे पहुंच गए ना, माँ ने नैन सजल भेजे थे पहुंच गए ना,
1: क्या
0: दुआ भरे आंचल भेजे थे पहुंच गए ना, माने नैन सजल भेजे थे पहुंच गए ना, दुआ भरे आंचल भेजे थे पहुंच गए ना, माने नैन सजल भेजे थे पहुंच गए ना, बहन ने रसमन बतलाया, बहन ने रसमन बतलाया, राखी के धागे बनवा लेना, कल भेजे थे पहुंच गए ना।
1: रसमन का जवाब नहीं, क्या बात है, अच्छा बयान।
0: बहन ने रसमन पूछ राखी के धागे बनवा लेना, कल भेजे थे पहुंच गए ना, किसी विरोधी बिना लगाए किसी विरोधी को मत छोड़ो, बिना लगाए किसी विरोधी को मत छोड़ो, कीचड़ और काजल भेजे थे पहुंच गए ना, कीचड़ और काजल भेजे थे पहुंच गए ना, और जिन प्रश्नों से घर की दीवारें हिलती थीं उन प्रश्नों के हल भेजे थे पहुंच गए ना, उन प्रश्नों के हल भेजे थे पहुंच गए ना। अर्ज करता हूं कि जीते जी रोटियों को तरसता चला गया, जीते जी रोटियों को तरसता चला गया, अब लोग कह रहे हैं फरिश्ता चला गया, जीते जी रोटियों को तरसता चला गया, अब लोग कह रहे हैं फरिश्ता चला गया, जीते जी रोटियों को तरसता चला गया, मजबूर बाप इसके सिवा और क्या करे, मजबूर बाप इसके सिवा और क्या करे, बेटी के सानहे पर बिखरता चला गया, और बच्चे की खुशियां कैद थी कूड़े के ढेर में, गुड़िया मिली उठाई ठुमकता चला गया, और पश्चिम की देन है इसे क्या कीजिए हुमा, संबोधनों के बीच का रिश्ता चला गया।
2: धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र सक्सेना हुमा से निशेश जार की बातचीत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कभी कभी फिल्म का गीत आपने सुना, आवाजें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा था, धुन बनाई थी खयाम ने। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लैला मजनू फिल्म का गीत। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत मदन मोहन का।

0: लता मंगेशकर के गाए लैला मजनू फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रांझा गायन। हमारे कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी।

इतनी बात सुनकर के और बांदी हीरो से कहने लगी, हे बहन, ये जो पहचान तूने मुझे बताई है उसको एक परवाने पर लिख के दे दे और मैं तेरे रांझे का पता लगा करके लाती हूं। हीर बोली, बांदी, तू तो क्या तेरा बाप भी मेरे रांझे का पता लगा करके नहीं ला सकता है। मेरा एक काम कर दे तो मैं तेरा एहसान कयामत तक नहीं भूलूंगी। मेरा चाचा किसी बियाबान जंगल में और 14 से धूनी रमा करके और मालिक का भजन इबादत में लगा हुआ है, उसको बुला ला। बोले, ठीक है बहन, मैं जब तक अपने बच्चों से के आऊं और तू परवाना लिख करके तैयार कर, जब लौट के आती है तो। हीर ने परवाना चाचा के लिए जो लिखा था वो बांदी के हाथ में दे दिया। बांदी, सज्जनों, बहुत बड़ी बूढ़ी थी,

तीजे वन में बुढ़िया पहुंच जाती है और जा करके आराम किया, कुछ पानी की व्यवस्था थी तो जलपान किया। उसके बाद उसका चेहरा जब ऊपर उठा तो 14 से धूनी सज्जनों मायने करती हैं, उसमें महात्मा हमारे फकीर जो है मालिक की इबादत में लगे हुए हैं। तो उस धुएं के इशारे से और धुएं की तरफ चलते चलते और चौथे वन में पहुंच जाती है, जाकर के और बुढ़िया ने बांधी ने धुनी को आदाब किया और बाबा को सलाम किया। सलाम करते ही और बाबा की तारी खुल जाती है। जब आंख खुली तो बाबा बुढ़िया को देख करके कहने लगे,

0: हे बांदी, 12 और 12 24 बरस या जंगल में मोकू, मालिक की इबादत करते करते है गई। आज तक कभी ना मेरे बड़े भैया ने बुलायो और ना मेरी हीर भतीजी ने बुलायो। ये तो बता बांदी कि उसके ऊपर कोई आफत मुसीबत आ गई है। तो बांदी क्या कहती है?
1: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रांझा गायक।

आज आपने इसका प्रथम भाग सुना। हमारे कलाकार थे भगवान दास अज्ञानी और साथी। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। इस समय 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार ए मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बेटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। हमारी इसी सभा में दिन में 1:15 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता लोक। आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और किशोरियों में पोषण और एनीमिया से बचाव। आज इस कार्यक्रम में आरोग्य क्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर बांके बिहारी गर्ग से ली गई भेंट वार्ता, जिसका विषय रहेगा टाइफॉइड कारण लक्षण और निदान। इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। इसके अलावा आप सुनेंगे कुछ घरेलू टिप्स और फिल्मी गीत हमारे इसी कार्यक्रम में। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 1:45 पर। अपराह्न 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। तत्पश्चात अपराह्न 3:00 समापन होगा हमारी इस पहली सभा का।

हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5:30 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होता है युववाणी। आज इस कार्यक्रम में आज की बात के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और स्वच्छ पर्यावरण में युवाओं की भूमिका। इसी कार्यक्रम में काव्यांकुर क्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विजय महाजन का काव्य पाठ और आप सुन पाएंगे कुछ फिल्मी नगमे हमारे इसी कार्यक्रम में। संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रज वार्ता। ब्रज में यमुना नदी के प्रमुख घाट और बिनको इतिहास। वार्ता प्रस्तुत करेंगे अशोक कुमार जोशी। भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकते हैं संध्या 6:30 पर। शाम 6:50 पर किसान भाइयों के लिए हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय होंगे वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। स्थल ध्वनियांकन पर आधारित एक भेंट वार्ता हम आपको इसी कार्यक्रम में सुनवाएंगे जिसका विषय होगा सरसों की लाभकारी खेती। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉ एसके झा और इनसे बातचीत करेंगे दिलीप यादव। इसके अलावा आप सुनेंगे

कुछ ब्रज लोकगीत हमारे इसी कार्यक्रम में। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन पाएंगे संध्या 7:31 पर। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म संगीत आप हमारे सुहाने तराने कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर। इसके अलावा रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे सत्यनारायण केशोरैया की लिखी नौटंकी हम सुधरे और जग सुधरे, प्रस्तुति होगी राम गोपाल की। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति परक गीत।

समवेत स्वरों में आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। रचनाकार थे आरसी प्रसाद सिंह। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं प्रियंका खंडेलवाल।

वनितलोक सुनने वाली सभी बहनों को प्रियंका खंडेलवाल का प्यार भरा नमस्कार। और करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ। अपराधों के हर रूप को मिलकर दूर भगाएं, अपराधों के हर रूप को मिलकर दूर भगाएं, सुरक्षा की राह पर मिलकर कदम बढ़ाएं, जागरूकता और सहयोग को अपनी शक्ति बनाएं, जागरूकता और सहयोग को अपनी शक्ति बनाएं, सुरक्षित समाज का सुंदर सपना मिलकर हम सजाएं। बहनों, आज के समय में अपराध की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पहले अपराध अक्सर किसी एक शहर या देश तक सीमित रहते थे, लेकिन आज तकनीक और इंटरनेट ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है। जहां एक ओर इसका लाभ हमें मिला है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटना अब केवल किसी एक देश की पुलिस के लिए आसान नहीं है। अक्सर अपराधी एक देश में बैठकर दूसरे देश के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे मामलों में अलग अलग देशों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस इसी सहयोग के महत्व को समझाने का एक अवसर है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है अलग अलग देशों की पुलिस एक दूसरे के साथ सूचनाएं साझा करे, अपराध की रोकथाम के लिए मिलकर काम करे और अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के प्रयासों को मजबूत बनाए। बहनों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। मानव तस्करी जैसे अपराधों में अपराधी महिलाओं और बच्चों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे मामलों में देश के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान और आपसी सहयोग अपराधियों तक पहुंचने में मदद करता है। आज साइबर अपराध भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। कभी बैंक अधिकारी बनकर फोन आता है, कभी किसी इनाम या नौकरी का लालच दिया जाता है और कभी किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। इसलिए बहनों, थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंक संबंधी जानकारी साझा ना करें। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड किसी को ना बताएं। संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। बहनों, अगर हम किसी अपराध को होते देख रहे हैं तो चुप बिल्कुल ना रहें। अगर हम चुप रहेंगे तो

अपराधी का हौसला बढ़ सकता है। इसीलिए जरूरत पड़ने पर पुलिस और संबंधित विभागों को सही जानकारी देना हम सभी की जिम्मेदारी है। और सुरक्षा के साथ एक और बहुत जरूरी है, जागरूकता। बहनों, इस दिवस को हम तभी उद्देश्यपूर्ण मान सकते हैं जब हम संकल्प लें कि हम सभी देशवासी अपराध के प्रति सजग रहेंगे, साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, बच्चों की सुरक्षा करेंगे। जब हम ये जिम्मेदारियां निभाएंगे तो हम इस प्रकार गुनगुनाएंगे।

इस खूबसूरत गीत के बाद फिर हम चर्चा करते हैं। बहनों, अभी हमने बात की समाज को सुरक्षित बनाने में पुलिस और जनता के सहयोग की, लेकिन किसी भी समाज की असली ताकत केवल उसकी सुरक्षा व्यवस्था में नहीं बल्कि उसके स्वस्थ और मजबूत नागरिकों में होती है। और जब बात स्वस्थ समाज की हो तो हमारी बेटियों और किशोरियों के स्वास्थ्य को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, इसीलिए अब बात कर रहे हैं हम बहनों किशोरियों के स्वास्थ्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की, पोषण और एनीमिया से बचाव। बहनों, किशोरावस्था में शरीर तेजी से विकसित होता है और इस समय शरीर को पर्याप्त पोषण की ज़रूरत होती है। भोजन की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। बहनों, आपके मन में एक सवाल होगा कि कैसे पहचाने कि हमें एनीमिया है या नहीं। यदि आपको थकान, कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, सांस फूलना और पढ़ाई में

0: ना लगना कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको हो सकता है एनीमिया हो, ये संकेत है एनीमिया रोग के। बहनों, लक्षण देखकर हमें घबराना नहीं है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, रोग कटेगा हौसले, रख तू मन में प्रीत। अगर आपके मन में हार मानने वाली जो अवधारणाएं हैं वो विकसित हो गई हैं तो आप कभी सही नहीं होंगे। लेकिन आपने निश्चित कर लिया है कि हमें इस रोग से जीत हासिल करनी है, इस रोग पर जीत हासिल ही करनी है, तो हम उस पर हासिल जीत कर ही लेंगे। इसीलिए एनीमिया से बचने के लिए आप भोजन में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, चना, दालें, राजमा, लोबिया, तिल, आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, टमाटर जैसे विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थों को भी दिनचर्या का हिस्सा बनाने में आप दूर ना रहें। और बाहर के खाद्य पदार्थों से जितना हो दूरी बनाकर रखें, संतुलित आहार से हाथ मिलाएं। अगर आपको लगातार कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने जैसी समस्या हो रही है तो स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई ना लें। और बेटियों को अपनी सेहत के बारे में खुलकर बोलने का अवसर दें, उन्हें खुश रखें और कोशिश यही करें कि हर कोई, हर व्यक्ति खुश रहे। जब हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तभी हमारे देश का भविष्य स्वस्थ रह पाएगा और हम विश्व पटल पर एक सितारे की तरह हमेशा के लिए चमकते रहेंगे। बहनों, कहते हैं परहेज सबसे भला, औषधि पीछे आए, संयम से जो भी रहा रोग निकट ना आए। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब करते हैं रुख और सुनवाते हैं अपनी बहनों को आरोग्य क्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता, टाइफाइड कारण लक्षण और निदान। वार्ताकार हैं डॉक्टर बाके बिहारी गर्ग और उनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह। तो हम और आप मिलकर सुनते हैं यह भेंट वार्ता।
1: स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, जब भी बरसात आती है तो बीमारियों के होने के जो चांस हैं, परिस्थितियाँ वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में जल भराव होता है, आसपास पानी भर जाता है, मक्खी मच्छर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे देखने में आता है कि बीमारियों का जो प्रकोप है हमारे आसपास काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन आजकल टाइफाइड की भी समस्या काफ़ी देखने में आ रही है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जब हम उसकी जांच कराते हैं ब्लड की तो उसमें टाइफाइड निकल रहा है। तो इस समय क्यों कर टाइफाइड हो रहा है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या सिम्टम हैं, लक्षण इसके, और क्या इसका निदान हो सकता है, कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे इसका इलाज हम करा सकते हैं, ये चार पांच चीज़ें हैं जिसकी जानकारी के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर वीवी गर्ग साहब, शहर के वरिष्ठ फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब।
1: मैं बात कर रहा था अपने श्रोताओं से, टाइफाइड तो बड़ा कॉमन सा हो रहा है, इसको क्या हम पुराने समय में जो लोग म्यादी बुखार बोलते थे ये कह सकते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, पहले से म्यादी बुखार बोलते थे या मोती झरा नाम से भी जाना जाता था। पहले म्यादी बुखार क्योंकि ये लंबे समय चलता है, 3-4 हफ्ते तक चलता है और इसका एक सेट पैटर्न होता है, तो इसे हम लोग जो है म्यादी बुखार भी बोलते हैं, मोती झला भी बोलते हैं, टाइफाइड भी बोलते हैं, एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। एंट्रिक फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आंतों पे सबसे ज़्यादा असर होता है इसका, इसलिए इसे एंट्रिक फीवर भी हमारी भाषा में बोलते हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, एक दूसरा बैक्टीरिया और होता है जिसे साल्मोनेला पैराटाइफी कहते हैं। तो पैराटाइफी वाले बैक्टीरिया से तो कम, लेकिन टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी से ज्यादा,
1: तो उसी से टाइफाइड पड़ा, इंग्लिश का नाम जो है। तो जैसे लोग, पुराने लोग इसको, जैसे आपने कहा मोती जला है या म्यादी बुखार है, तो उस समय के लोगों के सिम्टम कुछ अलग पहचान लेते थे कि हाँ ये है, लेकिन अगर आज के संदर्भ में, क्योंकि नई पीढ़ी भी अब आ गई है और इतना वो नहीं है, वो बुखार को बुखार मान के चल रही, तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो पहली दिखाई देते हैं इसमें?
2: सबसे पहले तो बुखार
1: आना, बुखार आएगा, ठीक है।
2: पहले के समय में जो लोग पहचान लेते थे म्यादी बुखार है, तो वो इसका एक सेट पैटर्न है कि डे बाय डे इसका एक ये स्टेप लैडर पैटर्न
1: इतने बजे आएगा,
2: हाँ एक स्टेप, और इतना ये हर बार बढ़ के आएगा
1: बढ़ के आएगा।
2: तो

0: या
1: इससे
0: इतने इंटरवल पे आएगा और उतर जाएगा अपने आप। जी जी
1: हाँ,
0: जी
1: पहले इसका एक सेट पैटर्न था, पर हम आज की बात करें तो आजकल बुखार आया नहीं कि लोग अगर अपने आप ही दवा ले लेते हैं, आयुर्वेदिक ले लेते हैं, होम्योपैथी ले लेते हैं, बुखार की दवा ले लेते हैं। बहुत से लोग तो एंटीबायोटिक भी अपने आप ही शुरू कर देते हैं क्योंकि इजी
0: इजी
1: अवेलेबिलिटी।
0: है यार।
1: तो हम लोगों के पास जो पेशेंट्स यूजुअली हम लोग जो देखते हैं वो एक खराब स्थिति में देखते हैं, जो कि इन
0: मतलब केस
1: द
0: बिगड़ के आपके
1: बिगड़
0: पास
1: के
0: आ रहे
1: हम लोगों
0: हैं।
1: के पास आते हैं क्योंकि वो कई एंटीबायोटिक खा के आते हैं कई। तो हमें फिर उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो सबसे पहला तो बुखार ही है, फिर उल्टी दस्त हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और सर दर्द हो रहा है, कमजोरी हो रही है, थकान हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि आंतों की परेशानी है,
0: आंतों की
1: आंतों की
0: परेशानी।
1: परेशानी तो पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है, तो हल्का सा कफ भी हो सकता
0: मतलब
1: है,
0: आंतों पे आ रहा
1: भूख
0: तो फिर भूख भी कम
1: भी
0: लगेगी,
1: कम
0: कमजोरी आ ही
1: लगेगी।
0: जाएगी
1: हाँ
0: और बाकी चीजें फिर
1: हाँ
0: वो बढ़ती
1: हाँ
0: जाती हैं
1: बढ़ती
0: फिर।
1: जाती हैं, कई बार उसमें रोज स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसे जिसका नाम मोती जला कहते
0: मोती
1: थे,
0: जला कहते थे।
1: तो
0: हाँ,
1: हल्के से रोज कलर के स्पॉट्स आए शरीर पे, रैशेज आ जाते
0: वो
1: हैं
0: दिखाई देने
1: पीठ पे,
0: लगते थे।
1: ट्रंक पे, तो वो दिखाई देने लगते थे, तो उसे लोग मोती जला बोल देते थे
0: हाँ, कि
1: कि ये
0: छोटी छोटी
1: मोती,
0: चीजें दिख रही हैं दूर से,
1: हाँ,
0: बुंद की
1: तो
0: जैसी, तो
1: ये
0: वो
1: मोती जला हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके, जो कि पहले दूसरे हफ्ते में आ जाते हैं बुखार के। बेसिकली जैसे कि आज मान लो कोई भी आदमी उससे इन्फेक्ट हुआ बैक्टीरिया से, तो जो बुखार आने में जो समय लगता है वो कई बार वेरिएबल होता है, 1 हफ्ते से 8 हफ्ते तक कई बार लग जाते हैं। जैसे आज आप वो हुए तो 1 हफ्ते से, लेकिन यूजुअली 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में हो
0: सिम्टम आ
1: जाता है, आ
0: जाते हैं,
1: जाते हैं।
0: बुखार भी आ
1: हाँ,
0: जाएगा
1: यूजुअली एक
0: चेहरे
1: हफ्ते से दो हफ्ते के बीच में आ जाते हैं, बट इट मे टेक अप टू 8 वीक्स ऑल्सो।
0: किसी की अगर इम्यूनिटी ठीक है तो
1: हाँ,
0: बहुत लंबा समय
1: लंबा भी
0: भी,
1: खींच
0: तो
1: जाएगा।
0: जितने समय भी आ रहा है जाने में
1: हाँ,
0: भी उतना ही समय लगता है। कई बार इसको बताते हैं कि लंबा चलता है इसका
1: नहीं, यदि
0: इलाज।
1: प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो हफ्ते 1.5 से 2 हफ्ते के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता
0: ठीक
1: है,
0: ठीक
1: ठीक हो जाता
0: होता
1: है।
0: है। अब
1: और यदि ना ले ट्रीटमेंट तो फिर ये अपना कोर्स पूरा करता है
0: फिर तो
1: पूरा, फिर तो लंबा खींच
0: लंबा
1: ज़्यादा है,
0: चलेगा
1: चल
0: उसमें।
1: जाता है।
0: अब जैसे बरसात है तो बरसात में क्या होने के चांसेस के ज्यादा बढ़ जाते हैं क्या?
1: वो इसलिए कि कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि
0: पानी
1: हमारा
0: है।
1: वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, कई बार जो है वो सीवेज से कनेक्ट हो जाता है, तो उससे जो बैक्टीरिया है वो पानी में, हमारे पीने के पानी में आ जाता है, या जो सब्जियां हैं वेजिटेबल्स हैं उन्हें हम कई
0: जो
1: बार रॉ
0: बाहर से आ
1: खाते,
0: रही है।
1: हाँ उन्हें हम रॉ खाते खा लेते हैं, तो उनके थ्रू वो बैक्टीरिया आ जाते हैं। तीसरा क्या कहते हैं, हमारे हाथ हैं, इसका जो बेसिकली ये फैलता है उसे फिकोरल रूट बोलते हैं। फिकोरल रूट का मतलब है कि मुंह से आपका एंटर किया और लेटरिन के रास्ते बैक्टीरिया बाहर भी निकल जाता
0: हाँ,
1: है,
0: वहीं से फिर
1: वो
0: वो
1: स्प्रेड
0: फैलेगा।
1: करता है। हाँ, तो
0: ओके।
1: उसमें इसे इसलिए इसका स्प्रेड भी जो है ऐसे ही होता है, तो उसमें फैलने का ये है कि आप जो है से लेटरिन गए, लेटरिन आके आपने हाथ नहीं धोए
0: नहीं
1: कायदे
0: दो।
1: से, आपने उसी हाथ से आपने खाना पीना खा लिया, तो इन्फेक्शन जो है आपका सीधे सीधे पहुंच रहा है। तो इसमें हैंड वॉशिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप खाना बना रहे हैं, आप उन्हीं इन्फेक्टेड हाथ से बना रहे हैं,
0: हाँ,
1: तो बैक्टीरिया
0: तो
1: चला
0: चला
1: जाएगा,
0: जाएगा।
1: तो और यदि आप खा रहे हैं या बना रहे हैं तो भी उसी से पहुंच जाएगा। तो इसमें यह है कि खाना बनाने से पहले भी और खाना
0: खाने से
1: खाने
0: पहले
1: से पहले भी हाथ धोना
0: हाँ,
1: चाहिए, और टॉयलेट से आके भी पहले सबसे पहले हाथ
0: हाथ
1: धोने चाहिए, तो उससे
0: मतलब
1: चांसेस कम हो जाते
0: साफ
1: हैं।
0: सफाई
1: नहीं,
0: बहुत
1: साफ
0: प्रॉपर,
1: नहीं,
0: अगर घर
1: प्रॉपर
0: में
1: सैनिटेशन,
0: अपनी भी, घर की
1: हाँ
0: भी और
1: हाँ
0: परिवेश की भी,
1: जी,
0: तो
1: कम होगा।
0: कम होगा।
1: ऐसे ही कंटेमिनेटेड वाटर नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आपने पी लिया जैसे रॉ निकलते हैं ऐसे ही पानी पी लिया, तो सेफ वाटर ड्रिंकिंग होनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो आप पानी को पहले उबाल लीजिए
0: जी।
1: और उबाल के ठंडा कर लीजिए फिर पी लीजिए।
0: हाँ, आप लोग जनरली जब बरसात पहले होती थी तो आप लोग यही कहते थे कि भैया कुछ नहीं है तो पानी को उबाल
1: उबाल
0: लो,
1: लो फिर पी लो।
0: पी लो, ढक लो उसको, फिर ठंडा करके
1: हाँ, तो
0: पी
1: ये
0: लो।
1: उसके ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं ये सारी
0: तो इसको
1: चीज़।
0: क्या अपन वाटर बॉर्न डिजीज के उस कैटेगरी में भी रख सकते हैं, पानी से जनित बीमारियां
1: कह
0: जो
1: सकते हैं
0: फैलाव,
1: कि
0: क्योंकि पानी
1: हाँ,
0: गंदा अगर
1: पानी का,
0: है
1: हाँ
0: तो वो आपको
1: कंटेमिनेटेड वाटर से तो फैलेगा। अच्छा,
0: फैलेगा।
1: चाट पकौड़ी खाने गए, आपने चाट पकौड़ी खाई, वो जो आपको चाट खिला रहा है उस वो
0: अब हाँ, पूरे
1: हाँ
0: गर्मी का मौसम है, अब पसीना भी आएगा, वो
1: हाँ
0: इधर उधर शरीर

0: हाँ, पहुंचा,
1: तो उसने हाथ में उसके साफ नहीं है उसमें इन्फेक्टेड
0: या किस पानी से वो
1: बना रहा है, पानी बना
0: रहा है,
1: तो ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है।
0: तो मतलब ये है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, हाथों को साफ रखें, परिवेश को साफ रखें, खाना, आपने सब्जियों और फलों की बात की
1: हाँ,
0: तो फल को तो हम ठीक ही मानते हैं, रोई खा लेते हैं,
1: साफ
0: कुछ
1: करके
0: सब्जियों को
1: खाना
0: हाँ
1: चाहिए,
0: तो साफ
1: साफ
0: करके,
1: करके खाना चाहिए।
0: कम से
1: हाँ
0: कम जो पोटेबल वाटर है
1: हाँ
0: साफ पानी हो
1: हाँ उससे आप साफ
0: उससे
1: करें,
0: साफ करें
1: फिर लें।
0: सुखा लें उसमें।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: अब जैसे कई बार आदमी भीग भी जाता है, बारिश का मौसम चल रहा है तो
1: भीगने से तो नहीं
0: इसमें
1: होगा,
0: नहीं होगा ना,
1: नहीं
0: हाँ
1: नहीं
0: नहीं
1: भीगने से इसका कोई
0: क्योंकि
1: संबंध
0: वायरल
1: नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है
1: हाँ
0: तो
1: नहीं
0: नहीं है
1: नहीं
0: उसमें।
1: नहीं
0: तो
1: भीगने
0: अब
1: से
0: चलिए ठीक है, ये हो गया, किसी व्यक्ति के शरीर में आ गया, निदान भी ऐसा लग रहा है कि भाई है, तो फिर तो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, बचाव की तो बात हमने
1: हाँ,
0: कर ली कि भाई
1: नहीं
0: साफ
1: मैं
0: सफाई
1: इससे पहले
0: रखें।
1: एक बात और कहूँगा,
0: जी
1: आजकल जो है लोग काफ़ी लिटरेट हो गए हैं,
0: हाँ
1: वो अपने आप लैब पे जाएंगे, कहेंगे विडाल टेस्ट कर दो,
0: हाँ
1: टाइफाइड
0: ये
1: के लिए
0: टाइफाइड के लिए विडाल
1: विडाल
0: टेस्ट,
1: टेस्ट कर दो।
0: हाँ
1: तो ये विडाल टेस्ट भी बड़ा नोटोरियस है, ये फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, फॉल्स नेगेटिव भी आता है। तो इस और
0: इसका
1: बहुत
0: क्या
1: सारी
0: मतलब,
1: भी
0: मतलब
1: मतलब बीमारी नहीं है तो भी आ सकता है पॉजिटिव, और बीमारी है तो भी नेगेटिव आ सकता है, इसका मतलब
0: तो
1: ये
0: मतलब ये नहीं कि आपने
1: है।
0: विड़ाल
1: हाँ,
0: करा
1: इसकी
0: लिया।
1: सेंसिटिविटी बहुत कम है, स्पेसिफिसिटी बहुत कम है। तो उसकी जगह वैसे तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो ये है कि आपको बुखार आया है एंड यू आर सस्पेक्टिंग कि टाइफाइड हो सकता है, तो आप ब्लड कल्चर कराएं, आपको ब्लड कल्चर कराना चाहिए। लेकिन कौन आदमी कराता है, हम लोगों के पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो वो इतनी दवाएं खा के आते हैं, तो यदि हम ब्लड कल्चर कराएंगे तो वो भी स्टराइल आ जाएगा, क्योंकि वो एंटीबायोटिक से सप्रेस हो जाती है, वो ख़त्म नहीं होती, सप्रेस हो जाती
0: दब
1: है,
0: गई, आएगी नहीं वो,
1: आएगी नहीं वो।
0: आएगी
1: हाँ,
0: नहीं।
1: तो वो आएगी नहीं, तो हम लोग भी फिर क्या करते हैं कि भाई एक उससे आगे के थोड़ा सा अच्छा टेस्ट है टाइफाइड और,
0: हाँ
1: तो वो हम करा लेते हैं, उसमें आ जाता है, तो फिर हम मान लेते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है, तो हम मान लेते हैं कि भाई टाइफाइड ही होगा। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये टेस्ट जो है गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड तो ब्लड कल्चर है, या जो कैरियर स्टेट में जिनका बहुत लंबा फीवर चला जाता है उनका स्टूल कल्चर करते हैं, क्योंकि आदमी को बुखार नहीं है और वो हमारे आपके बीच में घूम रहे हैं।
0: हाँ तो वो फिर
1: हाँ, लेकिन वो
0: फैलाव का
1: कैरियर
0: काम
1: था,
0: कर
1: आधी
0: काम,
1: अधूरी दवाएं खाई, बीमारी
0: हाँ
1: पूरी तरह से गई नहीं, सिम्टम फ्री हो गया, सिम्टम्स नहीं है उसके कोई, लेकिन वो
0: बीमारी को फैला,
1: फैला
0: कैरियर का काम
1: फैला
0: कर रहा है,
1: फैला
0: खुद
1: रहा
0: लेके डोल रहा
1: है,
0: है
1: खुद
0: जो
1: लेके डोल रहा है।
0: सोसाइटी में
1: तो ऐसे लोगों में फिर स्टूल कल्चर कराना चाहिए, कभी कभी यूरिन कल्चर
0: मरीज
1: में
0: को
1: भी
0: लगता है कि यार मैं ठीक
1: होता
0: हो गया और डॉक्टर साहब ने तो मुझे
1: है।
0: इतने टेस्ट बता
1: हाँ
0: दिए,
1: बता
0: लेकिन
1: दिए।
0: ना एक्चुअल की तह तक जाना है,
1: हाँ
0: क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि कई बार कहते हैं कि टाइफाइड रहा, बार बार आया,
1: हाँ
0: रिपीट हुआ,
1: हाँ
0: तो व्यक्ति की इम्यूनिटी शायद इतनी कमजोर हो जाती है क्योंकि उसकी आंतें कमजोर हो गई,
1: हाँ
0: खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, भूख
1: हाँ
0: चली गई।
1: ये बेसिकली आंतों की बीमारी है, और आंतों से ये ब्लड में जाता है बैक्टीरिया। कई बार तो ये होता है कि आंतों में घाव बन गए, ब्लीडिंग हो गई, उससे ब्लीडिंग हुई, आंतों के परफोरेशन हो गए, ये जानलेवा भी हो सकती है ये टाइफाइड, क्योंकि
0: लंबा
1: आंतों
0: लंबा हो गया
1: लंबा
0: तो।
1: हो गया, तो आंतों के परफोरेशन का हो जाने पे सर्जरी इमरजेंसी हो गई, देन सर्जरी, और कई बार ब्रेन पे भी इस इफेक्ट होता है, कन्फ्यूजन और ये सारी चीज़ें करता है, कार्डियक उस पर
0: इसका
1: भी।
0: डॉक्टर साहब क्या कोई वो है, क्या टीका है क्या
1: हाँ
0: इसका,
1: बिल्कुल है टीका
0: क्योंकि
1: इसका।
0: इसके बारे में इसका
1: हाँ
0: टीका है, कभी कम चर्चा होती है इस बात पर,
1: नहीं, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में टीका आता है
0: आता है बचाव में।
1: बचाव में, और हमारे पीडियाट्रिशियंस इसे लगवाते हैं, वैसे तो 6 महीने के बच्चे पे भी लगवा सकते हैं, लेकिन यूजुअली 9 to 12 month के महीने से लगवाते हैं,
0: अब
1: और
0: रिकमेंडेड उसमें आ गया है।
1: आ गया है 0.5 ml का छोटा इंजेक्शन है, वो लगवा देते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी उससे इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, बाद में यदि हो भी रहा है तो कम
0: घातक नहीं होगा,
1: घातक
0: लेथल
1: नहीं
0: नहीं होगा
1: होगा
0: मतलब उसमें,
1: इतना
0: जैसे आपने कहा कि
1: इम्यूनिटी।
0: ये
1: हाँ
0: जानलेवा हो सकता है, तो अगर
1: क्योंकि
0: टीका लगाए तो
1: हाँ
0: फिर उतना घातक नहीं होगा।
1: हाँ बेसिकली ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बेस्ड हैं, यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कम घातक होगा, और यदि आपकी इम्यूनिटी ख़राब है तो फिर ज़्यादा घातक
0: ज्यादा
1: ज़्यादा
0: घातक,
1: घातक
0: ज्यादा।
1: होगा।
0: तो अब ऐसे लोग जो बचपन तो अपना निकाल चुके हैं, जवानी भी है, तो
1: लगवा
0: वो
1: सक
0: भी लगवा सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल लगवा सकते हैं इन कंडीशंस में, या तो वो बाहर एंडेमिक एरियाज में जा रहे हों जहाँ टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, या

0: ऐसा उन्हें लगता है कि यहाँ टाइफाइड होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन एडल्ट के लिए ये है कि कुछ कहते हैं 2 साल, कुछ कहते हैं 3 साल बाद एक बूस्टर डोज लग जानी चाहिए,
1: कि टाइफाइड खतरनाक हो सकता है अगर हम लापरवाही
0: जानलेवा
1: रख
0: भी हो सकता
1: तो
0: है।
1: जान तो हमें लापरवाह नहीं होना है। और दो तीन चीज़ें कि बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनका वैक्सीनेशन करा लें, हालांकि इस पर इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन टाइफाइड का भी वैक्सीनेशन है और बहुत महंगा नहीं है, और जो अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसको रिकमेंड भी करते हैं। आपकी भी उम्र बढ़ गई है, कहीं ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ टाइफाइड हो सकता है, आप भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं, उस इस उम्र में भी हो जाता है। तीसरे यह है कि अच्छा पानी पिएं, साफ पानी पिएं। आजकल तो ज़्यादातर लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, लेकिन नहीं है जिनके पास तो पोर्टेबल वाटर, अच्छा पानी पिएं, अपने आसपास साफ सफाई रखें, और हाथ की और घर की, खाना बनाते समय, खाते समय, अपने आसपास में बहुत सफाई का हमें ध्यान रखना है। कोरोना में इस बात को हमने बहुत अच्छी
0: अच्छे
1: तरीके
0: से
1: से
0: सीखा
1: जिया
0: तो
1: है और महसूस किया, और उसके रिजल्ट्स भी देखे। और भारतीय परंपरा और परिस्थितियों में सफाई का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण वो है। तो डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी उस पर निश्चित तौर पर आप गौर करेंगे, अपनाएंगे, और उस अपनाई हुई जानकारी से बेहतर स्वास्थ्य और समाज में बेहतर मैसेज आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आप आई जानकारी दी,
0: एक
1: इसके
0: बार
1: लिए
0: फिर
1: बहुत
0: से
1: बहुत
0: शुक्रिया आपका।
1: जी।
2: अभी हमने और हमारी प्यारी बहनों ने सुनी आरोग्य भेंट वार्ता क्रम के अंतर्गत वार्ता टाइफाइड कारण लक्षण और निदान। वार्ताकार थे डॉक्टर बाके बिहारी गर्ग और उनसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। और इसी के साथ अब रुख करते हैं बहनों मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं एक गीत।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोग। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया प्रियंका खंडेलवाल ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म घर के इस गीत को। गुलजार ने गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी वर्मन ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत। इस गीत को हमने साथियों फिल्म घराना से लिया है। आवाज़ है आशा की। शकील बदायूनी ने इसे लिखा है और संगीत दिया है रवि ने। तो आइए

अभी आपने सुना आशा भोसले की इस आवाज़ को फिल्म घराना के इस गीत के लिए। शकील वदायुनी ने गीत को लिखा और रवि ने दिया संगीत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। साथियों, फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: to the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध हैं। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
2: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
3: Ours is a very trusted relationship.
4: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
3: Ratification likely in the coming future.
1: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तराश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग

0: का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बैटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
4: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च और रेस्क्यू के ऑपरेशन में बेसिकली ब्लीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेटेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है कि हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है। और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
5: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय

0: मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले चार दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने दो मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के दो गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
3: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई हैं। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालिंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01-2331-0481-23717171 और 2331-4444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरना सबालिंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर

समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओ, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायास ही नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समयानुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टोक्स किस देश के, किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टोक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं।

0: साइकिल का आविष्कार किसने किया था। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप NCERT के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
2: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों, लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री, पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
1: बालक बालिका हो सकते हैं।
2: हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
1: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
2: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी,
2: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है जितने भी हमारे समाज में स्त्री, पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर
1: जी,
2: उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए
1: जी,
2: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
1: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
2: हाँ,
1: आप ये कहना चाहते
2: जी,
1: हैं
2: जरूर।
1: जी, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए NCERT की क्या भूमिका है?
2: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है
1: जी,
2: और इसी के चलते NCERT भी इसके सालगिरह को मना रहा है
1: जी,
2: जैसा कि हम देख सकते हैं। और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं
1: जी,
2: उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है
1: जी,
2: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
1: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
2: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी
1: जी।
2: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो
1: या लोग तो वंचित वर्ग भी कह सकते हैं,
2: वंचित लोग जो हैं
1: जी।
2: तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि SC ST OBC और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं, कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो

0: भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें
1: उन सबको शामिल करती है।
0: शामिल करती
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांग जनों में भी हमारी बहुत सारी
1: जी
0: लड़कियां होती हैं।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं SDGs की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है हमारी जो लड़कियां हैं या
1: ड्रॉप आउट्स हम
0: ट्रांसजेंडर,
1: जिसको
0: ड्रॉप आउट
1: कहते हैं।
0: रेट्स
1: जी
0: जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इन
1: किनमें, लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
0: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों के जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।
1: जी
0: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सके, इन पर काम कर सके, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
1: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। अब हम ये जानना चाहेंगे, विशेष करके श्रोताओं की ओर से मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या-क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते
1: तो
0: हैं
1: सुरक्षित वातावरण।
0: सुरक्षित बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
1: जी,
0: वो सबको मिले।
1: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की। तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
0: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है।
1: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते
0: हाँ,
1: हैं। जी
0: बच्चियों का,
1: जी
0: लड़कियों का।
1: हाँ
0: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं,
1: जी
0: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सकें।
1: आवास की सुविधाएं नहीं होती हैं।
0: आवास की सुविधाएं जो हैं वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है।
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हों,
0: उपलब्ध हों।
1: आप ये कहना चाहती
0: जी
1: हैं?
0: जी
1: जी
0: तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं,
1: हाँ
0: तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सकें। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।
1: जी
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है।
1: जी
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है,
1: जी
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है, हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की।
1: जी
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की,
1: जी
0: जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC ST
1: आदिवासी
0: OBC
1: लोग, जनजातीय
0: माइनॉरिटी,
1: लोग।
0: जनजातीय लोग, है ना। तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो,

0: हमारी टेक्स्ट बुक में इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है,
0: जी
1: इसका शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है, जो हम ऑन

0: असली मतलब क्या है, जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं. बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है.
1: जी
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके.
1: जी
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1: जी
0: है
1: जी
0: उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है.
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि समाज
0: और
1: में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है
0: जी
1: तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको
0: जी
1: कम मिले,
0: जी
1: इस तरह की बातें होती थी पहले।
0: या हाँ,
1: जी
0: तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी. आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है, या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है.
1: जी
0: लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है
1: हाँ
0: तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं.
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है. तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है.
1: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे।
0: जी
1: तो अब आते हैं एनसीईआरटी पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग।
0: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज.
1: जी
0: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया.
1: जी
0: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें.
1: जी
0: जो जेंडर का अर्थ था वो
1: बिल्कुल
0: सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था. लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना
1: जबकि
0: है.
1: जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता है।
0: जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना,
1: जी
0: किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके. तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है. और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है. इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह हैं उनको भी शामिल किया गया है.
1: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं, कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें कि दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता की जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना,
1: जी
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है. दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सके.
1: रूढ़िवादिता, जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
0: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं, महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं.
1: जी
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना.
1: जी
0: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी। अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य अब किस

0: घर से करते हैं।
1: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें, उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें। जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे, उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
0: हाँ,
1: हाँ
0: पायलट्स के रूप में इत्यादि, है ना?
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
0: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी
1: उनकी
0: रही,
1: बहुत ज्यादा
0: सारे राष्ट्र
1: प्रतिभागिता
0: में इसकी
1: रही।
0: चर्चा है।
1: हाँ,
0: जी
1: तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
0: एक अलग छवि बनी,
1: अलग
0: बल्कि
1: छवि जो है
0: जी
1: उनकी
0: जी
1: बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं, जिसको कि भाषा के रूप में अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है,
0: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है।
1: एक
0: जी
1: पुरुष
0: हाँ।
1: है, तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
0: चेयरपर्सन,
1: विच इज अ
0: जी हाँ।
1: न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
0: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
1: जी,
0: जी
1: बहुत जरूरी है ये देखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में,
0: जी
1: अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं। तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता
0: जी
1: है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो
0: हो
1: सकता
0: सकता है, बिल्कुल हो
1: है
0: सकता
1: ना।
0: है। जी
1: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
0: न्यूट्रल वर्ड
1: बट
0: है। जी
1: एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
0: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता, कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यावहारिक सलाह आप देना चाहते हैं, या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं, जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
1: जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे एक छात्र जो है खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी
0: जी
1: इसके भीतर। सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए
0: जी
1: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले
0: और
1: सके।
0: दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो कि हम एक साथ
1: समानता,
0: बैठ सकते हैं।
1: जी।
0: जी
1: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
0: और खाना
1: और
0: बनाने के लिए
1: खाना
0: महिला।
1: बनाने के लिए लड़कियों को करें,
0: जी
1: या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़ाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए।
0: जी
1: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
0: जी
1: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो है उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा।
0: जेंडर न्यूट्रल भाषा, यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
1: जी हाँ,
0: जी हाँ।
1: तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपनी कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़की

0: लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते हैं।
1: हाँ, विद्यार्थियों कह सकते हैं,
0: न्यूट्रल शब्द भी
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं,
0: शिक्षार्थियों भी कह सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी हाँ
0: जी, कई बार क्या होता है ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं, तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहां लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है।
1: जी।
0: तो बुद्धिमता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए।
1: जी।
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा होगा कि नर्स का जो, जैसे ही हम सुनते हैं इस प्रोफेशन के बारे में, हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें, हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर हॉस्टेस की जो छवि है उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है।
0: जी, एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई देता।
1: जी।
0: उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज
0: बट
1: होते हैं।
0: हाँ, तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सके।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला, आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी।
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन जहां पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहां पर भी आप पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी।
1: जी।
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800-440-5559, और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5:30 पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

प्रसन्न हैं और अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश में जरूर जुटे हुए होंगे। दोस्तों, युववाणी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आपसे बातचीत का एक सिलसिला है। यहाँ हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो हमारे आज से जुड़े भी हैं और हमारे आने वाले कल से भी जुड़े हुए हैं। तो आज क्यों ना शुरुआत आपसे एक छोटे से सवाल से करें। अगर समाज को सुरक्षित बनाना हो और पर्यावरण को स्वच्छ रखना हो तो क्या इसमें युवाओं की कोई भूमिका हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। दोस्तों, आज की हमारी बातचीत इसी सोच के इर्द गिर्द घूमेगी। आज की बात में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस की और साथ ही बात करेंगे स्वच्छ पर्यावरण में युवाओं की भूमिका की, विशेष रूप से स्वच्छ वायु और नीले आकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में। दोस्तों, सुरक्षा हो या स्वच्छ हवा, दोनों ही हमारे लिए बेहतर भविष्य की बुनियाद रखते हैं। तो आइए विचारों की इस यात्रा पर मेरे साथ बने रहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं कैसे विषय से जिसका संबंध हमारी सुरक्षा और सहयोग की भावना से है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। पुलिस का काम हम में से हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध की रोकथाम करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आज अपराध और चुनौतियां भी सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई हैं। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध जैसी चुनौतियां कई देशों से जुड़ी हो सकती हैं और यही कारण है कि विभिन्न देशों की पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान, अपराधियों की पहचान और उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग आवश्यक है और यहाँ युवाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी तकनीकी से सबसे अधिक जुड़ी हुई है और ऐसे में जागरूक युवा न केवल स्वयं साइबर अपराध से बच सकते हैं बल्कि अपने परिवार, अपने मित्रों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई संदिग्ध लिंक आपके मोबाइल पर आती है तो क्या आप बिना सोचे उस लिंक पर क्लिक करेंगे? शायद नहीं। और यही जागरूकता डिजिटल सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। अब आइए आज की बात को एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर मोड़ देते हैं, स्वच्छ पर्यावरण में युवाओं की भूमिका। दोस्तों, स्वच्छ वायु हमारे जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना स्वच्छ जल और पौष्टिक भोजन। हर वर्ष 7 सितंबर को यानी आज के दिन स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि साफ हवा केवल प्रकृति की देन नहीं है बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। अब सवाल है, इसमें युवा क्या कर सकते हैं? उत्तर बहुत सरल है दोस्तों, अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके। जहां संभव हो निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें, कूड़ा न जलाएं, बिजली की अनावश्यक खपत कम करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी करें। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है दोस्तों, युवा सोशल मीडिया को उसकी ताकत को सकारात्मक बदलाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वच्छ हवा, प्लास्टिक प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और वृक्षारोपण जैसे विषयों पर जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, क्योंकि एक जागरूक युवा केवल खुद नहीं बदलता, वो अपने आसपास के कई लोगों को बदलने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, आज हमने दो अलग अलग विषयों पर बात की, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग और स्वच्छ पर्यावरण। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो दोनों के केंद्र में एक ही भावना, सहयोग और जिम्मेदारी है।
सुरक्षित समाज बनाने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन जागरूक नागरिकों की

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को मेरा यानी अरविंद कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं आपका रेडियो दोस्त अरविंद कुमार। दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद है जहां भी हैं स्वस्थ हैं।

भूमिका भी उतनी ही आवश्यक है। ठीक इसी तरह स्वच्छ पर्यावरण बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी एक संस्था की नहीं है, इसमें हम सभी की भागीदारी आवश्यक है, जिम्मेदारी जरूरी है और युवाओं की भूमिका सबसे प्रभावशाली हो सकती है। तो आज की युववाणी कार्यक्रम के माध्यम से, आज की बात के माध्यम से आपसे बस एक छोटी सी अपील, कानून का सम्मान कीजिए, डिजिटल रूप से सजग रहिए, पर्यावरण का संरक्षण कीजिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए।

0: ए आर रहमान, जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में रॉक स्टार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। क्लिंटो सेरेजो का लिखा हुआ यह गीत था, ए आर रहमान का संगीत निर्देशन। दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम में रुकेंगे एक अल्प विराम के लिए, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे एक काव्यांकुर के अंतर्गत काव्य पाठ।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: इस विराम के बाद कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। युववाणी कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं काव्यांकुर के क्रम में काव्यपाठ। युवा कवि हैं विजय महाजन।
3: दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष जो कविता सुनाने जा रहा हूं वो शहीद भगत सिंह से जुड़ी हुई उनके जीवन की तमाम बातों को आपके समक्ष दर्शाएगी। और आज की मेरी इस कविता का शीर्षक है, क्योंकि वो अमर हैं। सांसें थम गई हैं पर तेरी यादें साथ हैं। सांसें थम गई हैं पर तेरी यादें साथ हैं। चकना चूर कर दिया था घमंड तूने अंग्रेजों का, तभी तो हर नौजवान

आज तेरे साथ है। अंग्रेजों की काली करतूतों का दिन दहाड़े बदला लिया था। अंग्रेजों की काली करतूतों का दिन दहाड़े बदला लिया था। लाला लाजपत को मारने वाले सांडर्स का वध किया था। साथी राजगुरु सुखदेव और यतीन्द्र नाथ उनके साथ साथ थे। तभी तो अंग्रेजों की नींद उड़ी और बुरे उनके हालात थे। जेल में बैठकर भी आराम नहीं, जेल में बैठकर भी आराम नहीं, पढ़ते थे क्रांति भरी किताबों को, पढ़ते थे क्रांति भरी किताबों को, कहते थे हम बख्शेंगे नहीं अंग्रेजों को नवाबों को। चाहते तो माफ़ीनामा देकर अंग्रेजों के सामने झुककर अपनी जान बचा लेते, अपनी जान बचा लेते। ऐसा होता अगर तो आज हम उन्हें शूरवीर नहीं कहते।

अगर तो आज हम उन्हें शूरवीर नहीं कहते, शूरवीर नहीं कहते। देश के लिए ही उन्होंने दुष्टों की जान ली थी, देश के लिए ही उन्होंने दुष्टों की जान ली थी, वक्त आने पर उन्होंने खुद की जान दी थी। ना डर था मन में किसी का जो रास्ता वो बदल लेते, ना डर था मन में किसी का जो रास्ता वो बदल लेते, डटे रहे अपनी बात पर तभी तो आज हम आज़ादी से रहते। मरने से पहले, मरने से पहले दोस्तों उन्होंने लेनिन की जीवनी को पढ़ा था, मरने से पहले दोस्तों उन्होंने लेनिन की जीवनी को पढ़ा था, बहुत कम है कुछ करने वाले उस उम्र में जिस उम्र वो फांसी चढ़ा था। जिसके शहीद होने से पूरे देश की आंखें नम थीं, जिसके शहीद होने से पूरे देश की आंखें नम थीं, देश के लिए मरने की उसने खाई कसम थी। भगत सिंह थे वो सुखदेव थे, यतीन्द्रनाथ थे वो राजगुरु थे, भगत सिंह थे वो सुखदेव थे, यतीन्द्रनाथ थे वो राजगुरु थे, असल जिंदगी में तो वो दोस्तों वीरों के गुरु थे। देश के लिए सोचते थे जीते जी हरदम, देश के लिए सोचते थे जीते जी हरदम, कोई पूछता था उनसे तो लेते थे छुपा अपने हर गम। दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा, दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा, फिरंगियों को मौत के घाट उतारा, फिरंगियों को मौत के घाट उतारा, कहते थे नहीं बख्शूंगा उन्हें जिसने देश के साथ की बेईमानी हो, चाहे वो क्यों ना एक हिंदुस्तानी हो। सच्चे वीरों को आज भी तहे दिल से याद किया जाता है, सच्चे वीरों को आज भी तहे दिल से याद किया जाता है, भारत तो क्या विदेशों में भी इन्हें सम्मान दिया जाता है। आज उनके ना होने पर भी, आज उनके ना होने पर भी होने का एहसास हर डगर है, आज उनके ना होने पर भी होने का एहसास हर डगर है। मरे नहीं हैं वो, ना मरेंगे, क्योंकि वो अमर हैं, क्योंकि वो अमर हैं। मेरी अगली कविता है जो मैंने मानवीय जीवन से जुड़ी हुई बातों पर लिखी हुई है, और इसका शीर्षक है पल पल याद करेगा। ए इंसान तू नेक काम कर, लोगों के लिए जी, लोगों के लिए मर, ऐसे कर्म कर मानवता की मिसाल कायम करने वाले, बहुत कम है इस दुनिया में लोगों की भलाई करने वाले। पढ़ी तो तूने भी थी बचपन में बहुत सी कहानियाँ, पढ़ी तो तूने भी थी बचपन में बहुत सी कहानियाँ, अच्छी लगी होंगी तुझे उसमें अच्छे कर्मों की निशानियाँ। पढ़कर बावले आज तू उनको भूल गया, पढ़कर बावले आज तू उनको भूल गया, हैवानियत के सामने बिककर आज तेरा उसूल गया। झूठे दिखावे करके तू बन गया लोगों का हितैषी, झूठे दिखावे करके तू बन गया लोगों का हितैषी, जब बुलाएगा मालिक तो ना जाने हालत होगी कैसी। असहाय लोगों का तूने फ़ायदा जो उठाया है, असहाय लोगों का तूने फ़ायदा जो उठाया है, इससे तूने अपने पापों का भार बढ़ाया है। तेरे कर्मों का सारा हिसाब किताब वो करेगा, तेरे कर्मों का सारा हिसाब किताब वो करेगा, इंसान होके भी इंसान ना बन सका ये तू पल पल याद करेगा। इसीलिए ए इंसान तू नेक काम कर, लोगों के लिए जी, लोगों के लिए मर। और मेरी अगली कविता है जो बचपन पर लिखी गई है। बचपन एक ऐसी घड़ी होती है जब एक व्यक्ति सभी चिंताओं से मुक्त होता है, उस घड़ी में उसको बचपन को याद करने की बात है, और ये कविता लिखी गई है, इसका नाम है बचपन लौटा दूँ। ईंटों की बुनियाद पर टिकी ये जिंदगी, मोहल्ले की गलियों में कटी थी ये जिंदगी, वो बच्चों के साथ लुक्का छिपी था खेलता, बापू की डांट और माँ की मार को झेलता, रोज नए नए सपनों के साथ उठता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बापू चला गया, इसी गम के साथ मेरी माँ भी चल दी। मैंने भगवान से कहा कि मेरे माँ बापू को इतनी जल्दी क्यों बुलाया, जिस उम्र में दिलाने थे खिलौने, बजाय उसके जिम्मेदारियों का बोझ समाया। नादान हूँ मैं ये बोझ कैसे संभालूंगा, नादान हूँ मैं ये बोझ कैसे संभालूंगा, बचपन लौटा दो चाहे आधी रोटी खा लूँगा, बचपन लौटा दो चाहे आधी रोटी खा लूँगा। बचपन जैसे तैसे कटा काट कर मैं जवानी में आया, बचपन जैसे तैसे कटा काट कर मैं जवानी में आया, पेट का बोझ तो बचपन से ही था अब बीमारियों का और आया। बचपन में ना समझ सका बापू की फटकार भरी बातें, बचपन में ना समझ सका बापू की फटकार भरी बातें, अब जब समझा तो कट रही जागी जागी रातें। दोस्तों ये मजबूरियां।

0: बहुत सताती हैं इंसान को दोस्तों। ये मजबूरियाँ बहुत सताती हैं इंसान को, हैवान बना देती हैं अच्छे भले इंसान को। समाज में बुराइयों का जन्म मजबूरी से ही होता है। समाज में बुराइयों का जन्म मजबूरी से ही होता है। इंसान कभी जन्म से बुरा नहीं होता है। रास्तों में बिछे कांटे उठाने में ही गुजार दी जिंदगी। रास्तों में बिछे कांटे उठाने में ही गुजार दी जिंदगी। बोरियां हाथों में लेकर आज बीनता हूँ गंदगी। नया सवेरा आते ही काम पर निकल जाता हूँ। नया सवेरा आते ही काम पर निकल जाता हूँ। कोई पूछने वाला नहीं मैं देर से घर क्यों आता हूँ। आसपास के सब मुझे अनाथ कहकर बुलाते हैं। आसपास के सब मुझे अनाथ कहकर बुलाते हैं। इन चुभने वाली बातों से मेरे दिल को ठेस पहुँचाते हैं। शराफत से मिली नहीं ना मिलेगी खुशियाँ इस संसार में। शराफत से मिली नहीं ना मिलेगी खुशियाँ इस संसार में। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी बीतती है माँ बाप के प्यार में। नादान हूँ मैं ये बोझ कैसे संभालूंगा। नादान हूँ मैं ये बोझ कैसे संभालूंगा। बचपन लौटा दो चाहे आधी रोटी खा लूँगा।
1: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विजय महाजन से काव्य पाठ काव्यांकुर के अंतर्गत। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से सुनिधि चौहान अरिजीत सिंह और नीति मोहन की मधुर आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, विशाल शेखर का संगीत निर्देशन।

सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य की रचना विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में। और इसी के साथ युववाणी कार्यक्रम अब यहीं

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, फिर 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई।

0: डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजदा सेदान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

संध्या 6:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक, जिसमें आज ब्रज वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक होगा ब्रज में यमुना नदी के प्रमुख घाट और विनकुन इतिहास। वार्ताकार होंगे अशोक कुमार जोशी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। संध्या 7, क्षमा करें, इसे पुनः सुन ले। संध्या 6:50 पर कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण प्रसारित किया जाएगा, जिसमें चर्चा के विषय होंगे वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता सरसों की लाभकारी खेती के बारे में। डॉक्टर एस के झा से बातचीत करेंगे दिलीप यादव, और इसी के साथ आनंद ले सकेंगे कुछ ब्रज लोक गीतों का। संध्या 7:31 पर श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सहनी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8 आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत का आनंद आप रात्रि 9:15 पर भी ले सकेंगे। रात्रि 8:20 पर देशगान प्रसारित किए जाते हैं। रात्रि 8:30 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

पब्लिक स्पीक रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे नौटंकी, हम सुधरे और जग सुधरे। इसके लेखक होंगे सत्यनारायण कैशोरैया, प्रस्तुति राम गोपाल की होगी।

रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी इस दूसरी सभा का।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना समवेत स्वरों में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:15 हुए हैं। समय हो रहा है कार्यक्रम ब्रज साहित्य का। आइए आपको सुनवाते हैं ब्रजवार्ता। ब्रज में यमुना नदी के प्रमुख घाट और बिनको इतिहास। वार्ताकार हैं अशोक कुमार जोशी।
1: श्री यमुना जी पतित पावन करें, प्रथम ही जब दियो दर्शन सकल पातक हरे। उत्तराखंड के जमुनोत्री ते निकस कर ब्रजमंडल की करघनी की तरह सुशोभित होते भये। तीर्थराज प्रयाग तक प्रवाहित है बेवारी जमुना, ब्रज रसकन को प्राण है। ब्रजमंडल में श्री यमुना जी राधा माधव के जुगल रस में बिहार की सृष्टाहु ना है अपितु दृष्टाहु है। यमुना जी के मनोरमन तटन पर घनी वृक्षावली एवं कुंजन में प्रिया प्रीतम की अनेकान लीला विलास में श्री यमुना जी परम सहायक है। पुराणन में वर्णन मिले है कि श्री यमुना जी सूर्यदेव की पुत्री, यमराज व शनिदेव की बहन हैं। वैष्णव मतानुसार श्री यमुना जी श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हैं। गर्ग संहिता में वर्णन आवे है कि देवतान की स्तुति पर भगवान कृष्ण जब भूतल पर अवतार ग्रहण करवे को तैयार भये तो राधा रानी जी राजी नाए भई। उनने कही कि जहाँ गोवर्धन पर्वत वृंदावन व यमुना जी नाए वहाँ पे मेरो जायो नाए है सके। तब श्री कृष्ण ने निज धाम ते 84 कोस भूमि यमुना जी एवं गोवर्धन पर्वत को भूतल पे भेजो। भूलोक में कलिंद पर्वत ते निकसवे के कारण यमुना जी को नाम कालिंदी हु पर हो। आगे हु ब्रजमंडल में आज हु चैत शुक्ल छठ को यमुना जी को जन्मदिन बड़े उत्साह व उल्लास से मनायो जावे है। श्री यमुना जी श्याम वर्णी हैं। बामन पुराण में कथा आवे कि दक्ष के यज्ञ में जब शिव जी को अपमान भयो और सती ने अपनी देह को त्याग दियो तो भगवान से बड़े कुपित भये। बाक्रोधाग्नि में उनने यमुना जी में स्नान कियो ताही ते यमुना जी कारी पर गई। जेहू मान्यता है कि श्याम सुंदर ते अत्यधिक प्रेम के कारण श्री यमुना जी कारी पर गईं। श्री यमुना जी केवल पटरानी ही नाए अपितु साक्षात कृष्ण स्वरूपा हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति एवं पाप निवृत्ति को मुख्य कारण श्री यमुना जी की शरण गहवो ही है। यमुना जल के स्पर्श एवं स्नान ते समस्त दुखन को नाश हुए।

जावे है। बाराह पुराण के अनुसार ब्रजमंडल में जमुना स्नान को फल गंगा स्नान ते 100 गुना बढ़कर है। श्री यमुना जी को वंदन अर्चन कृष्ण प्रेम ते परिपूर्ण कर देवे है। श्री यमुना पग बंदन कीजे, जहाँ हिल मिल जल केल करत नित, पेय प्यारी रस भीजे, श्री यमुना पग बंदन कीजे। श्री यमुना को जल बारस को ही प्रवाह है, जामे अवगाहन करवे ते जीव धन्य है जावे है। यमुना स्नान के पुण्यन को प्राप्त करवे को श्री यमुना जी के घाट ही प्रमुख उपाय हैं। जामे बहुत से घाट तो लुप्त प्राय है गए हैं, फिर यमुना के वर्तमान प्रमुख घाटन की चर्चा करवे को प्रयास हम जा वार्ता में करेंगे। मथुरा के प्रमुख घाटन में प्रथम कदम बारो घाट है, जय राम घाट हु कहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जा घाट पर आए हते। बाते आगे अछूतोद्धार घाट है, यहाँ पे स्नान करवे ते शूद्र हु ब्राह्मण के समान पवित्र है जावे है। निकट में ही चैचा घाट है, बाते आगे दंडी बारो घाट है, जाई घाट पे दयानंद जी के गुरु ब्रजानंद जी विराजते हते। जा घाट ते आगे तिंदुक तीर्थ है और गोविंद घाट है। सूर्य तीर्थ और सूर्य घाट, बड़वारो घाट, बटस्वामी तीर्थ और इस प्रकार नाग तीर्थ व ध्रुव घाट है, जहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने बड़ी कठोर तपस्या करी। थोड़ी दूर पर श्याम घाट, जो जयपुर वाले महाराज ने बनवाया हो तो वो विराजमान है। आगे प्रयाग तीर्थ वारो प्रयाग घाट है, माघ महीना में जामे स्नान करवे ते प्रयाग में माघ स्नान करवे को फल प्राप्त होवे है। आगे योगमाया घाट व सती घाट है। थोड़ी सी दूर पर जमुना जी को प्रमुख विश्राम घाट है, जहाँ कृष्ण जी ने कंस को मार के विश्राम कीनो। यम द्वितीया पे हजारन नर नारी यहाँ पे स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करे हैं। यहाँ यमुना जी को दिव्य मंदिर है तथा यहीं नित्य श्री यमुना जी की आरती होवे है। बाकी अद्भुत छटा को वर्णन शब्दन में नाए है सके है। आगे मणिकर्ण का घाट है, वहाँ श्री महाप्रभु बल्लभाचार्य जी की बैठक है, जहाँ पुष्टि मार्गी वैष्णवजन पूजन अर्चन करे हैं। बारह घाट ते आगे अस्कुंडा घाट है, संत घाट, स्वामी घाट, मंदाकिनी तीर्थ और बैकुंठ घाट हु जय श्रृंखला में आमे हैं। दशाश्वमेध घाट पे गंगा दशहरा पर विशेष स्नान एवं दान को फल प्राप्त होवे है। प्राचीन घाटन में गार्गी सारगी और सेनापति घाट को हु उल्लेख हमें पुराण में प्राप्त होवे है। अब वृंदावन के प्रमुख घाटन की चर्चा हूँ कर ले में। भगवान श्री कृष्ण की काली मर्दन, चीरहरण लीला, केसी बद लीला सब यमुना के घाटन पर ही भई हती। यही कारण थे राजा रजवाड़िन ने इन घाटन को महत्व देखते भये अपने शासन काल में पक्के घाटन को निर्माण करायो। प्राचीन घाटन में कछु प्रमुख घाटन को छोड़ के शेष लुप्त प्राय है गए हैं, फिर इन प्राचीन घाटन की चर्चा अवश्य करनी है। सर्वप्रथम जो है बाराह घाट है, वृंदावन के दक्षिण पश्चिम में ये प्राचीन घाट है। यहाँ भगवान बाराह की दिव्य मूर्ति विराजमान है और यहाँ पास में ही गौतम मुनि को आश्रम अभी भी अवस्थित है। गोविंद घाट, भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को जाई स्थान पर परास्त कीनो, रासलीला के ब्याज ते गोपिन के संग में महारास को प्रसंग यहीं संपन्न भयो। गोस्वामी हित हरवंश जी ने यहाँ पे रासमंडल की स्थापना करी, जहाँ आज हु रासलीला को मंचन होवे है और हजारन भक्त बाको आनंद प्राप्त करे हैं। बंसीवट घाट, भगवान श्री कृष्ण ने बंसी घाट पे मधुर बंसी बजाई, जाते गोपीजन मुग्ध है करके रासलीला में खींची चली आईं, वो अपनी सब सुध-बुध भूल गईं और रात भर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के संग महारास करती रहीं। बंसीवट आज हु महारास की हमें स्मृति करावे है। आदिबद्री घाट, पानी घाट से पश्चिम में जो घाट है, उल्लेख मिले है कि नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि भैया हमें बद्रीनाथ के दर्शन कराओ। भगवान ने कि बाबा बद्रीनाथ बहुत दूर है, हम यहीं बद्री नारायण भगवान को यहीं बुलाए देंगे, यहीं आपके दर्शन करवाए देंगे। भगवान ने अपनी योग माया से बद्रीनाथ को वहीं प्रकट कर दियो, जाही ते आदिबद्री के नाम ते जे घाट प्रसिद्ध भयो है। आगे राजघाट है, आदिबद्री के दक्षिण में है ये, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने नाभिक वन के गोपन को जमुना जी पार करवाई एवं उनते दूध दही को दान ग्रहण कियो। अक्रूर घाट, अक्रूर घाट पे भगवान ने श्री अक्रूर जी को
अपनो चतुर्भुज स्वरूप

0: स्वरूप का दर्शन कराया। अक्रूर जी भगवान के दिव्य दर्शन देख करके बड़े अचंभित रह गए। अक्रूर जी को यहाँ मंदिर भी स्थापना भयो है, ये पास में यहीं अक्रूर गांव भी स्थित है। बाकी आगे युगल घाट के उत्तर में बिहार घाट है। उल्लेख है कि भगवान को गोप ग्वालन एवं गोपिन के संग बिहार भयो, जाके कारण जाको नाम बिहार घाट पर गयो। पानी घाट, जा घाट पर गोपिन को ऋषि दुर्वासा की कृपा ते दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भई और उन्हें जावात की प्रतीति भई कि श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है पर साक्षात योगेश्वर भगवान के रूप में जा धरती पर प्रकट भये हैं, ऐसो जे पानी घाट है। कालीदेह घाट, कालीदेह घाट की कथा पुराण में वर्णन प्राप्त हुए है कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में निवास कर रहे तो काले नाम को एक बड़ो भारी नाग जो है यमुना जी में रह तो भगवान ने कंदुक क्रीड़ा के ब्याज ते और बाकू यमुना ते निकारो निग्रह कीनो और यमुना को नाग के प्रदूषण ते मुक्त करो एवं बा को नाम काली घाट तविते पड़ गयो है। श्रृंगारवट घाट, जा घाट पे भगवान कृष्ण ने राधा जी को केस श्रृंगार कीनो, जाते जाको नाम श्रृंगारवट घाट प्रसिद्ध भयो है। अंधेर घाट के उत्तर में इमली तला घाट है। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित इमली को वृक्ष भगवान कृष्ण के समय को ही है। जाई वृक्ष के नीचे महाप्रभु चैतन्य को श्री कृष्ण लीला एवं दिव्य लीला स्थलन के दर्शन भये, जाकू गौरांग घाट हु कहे हैं और गौड़ी संप्रदाय के लोग जाकी विशेष मान्यता करे हैं। चीर घाट, श्रृंगार घाट ते लगो भयो चीर घाट है। उल्लेख है कि एक बार गोपीजन नग्न होकर स्नान यमुना जी में कर रही थी। भगवान ने शिक्षा देवे के ताई गोपिन के वस्त्र को हरण करके पेड़ पर बैठ गए। गोपी बड़ी दुखी भई और भगवान से याचना करवे लगी, प्रभु हमारे वस्त्रन को हमें प्रदान करो। भगवान ने की गोपियों, तुमने यमुना में नग्न स्नान करके वरुण देव को अपमान करो है, अब तुम प्रतिज्ञा करो और क्षमा मांगो कि आगे से कभी भी इसी यमुना जी में नग्न स्नान ना करेंगी तो तुम्हें मैं वस्त्र प्रदान करूँ। गोपिन ने ये प्रतिज्ञा करी, क्षमा मांगी और जो है भगवान ने उनको वस्त्र प्रदान किए और जय घाट पर गोपिन ने एक महीना तक कात्यायनी देवी को व्रत करो और जाते भगवान कृष्ण की उन्हें प्राप्ति भई, ऐसो ये चीर घाट को महात्म बताया गया है। आज के वृंदावन के प्रमुख घाटों में एक केसी घाट हुए। उल्लेख है कि कंस ने केसी नामक राक्षस को कृष्ण को मारवे को भेजो। केसी घोड़ा को रूप धर के आयो, भगवान ने बाकू पहचान लियो और बाको बध कर दियो। तभी ते जा जगह को नाम केसी घाट पर गयो। मान्यता है कि यहाँ पे पिंडदान करवे ते गया में पिंडदान करवे को फल प्राप्त होवे है। वृंदावन में यमुना किनारे मदन टेर घाट, राम गोपाल घाट, भ्रमर घाट, सूरज घाट, युगल घाट, धीर समीर घाट, जगन्नाथ घाट, राधा घाट, भीम घाट, नागरदास घाट, टिकारी घाट, गोविंद घाट आदि हु हैं, किंतु समय के बदलाव और विकास के नाम पे इनमें ते बहुतेरे घाट आज अपनो अस्तित्व खोई चुके हैं। मथुरा ते आगे कोयला घाट है, जहाँ वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही यमुना पार करी और गोकुल गांव में पहुँच करके श्री भगवान को पधरायो। गोकुल गांव में भी प्रमुख रूप से ठकुरानी घाट और बल्लभ घाट आदि हैं, जहाँ पुष्ट मार्गी गोसाई एवं वैष्णव भक्त नित्य श्री यमुना जी को पूजन और वंदन करे हैं। गोकुल ते आगे ब्रह्मांड घाट है, जहाँ भगवान ने माटी खाई। यहाँ पर स्थित रमणीति आश्रम की शाखा हुए है, जहाँ नित्य श्री यमुना जी की आरती हुए है, जहाँ में सैकड़ान भक्त उपस्थित है करके आरती करें, यमुना जी को पूजन करे हैं। आज समय की यही पुकार है कि हम काऊ प्रकार से यमुना जी को स्वच्छ एवं निर्मल रखें तो ही हमारी श्री यमुना महारानी एवं बाकी घाटन को स्वरूप बच सके है।
1: तो अभी आप सुन रहे थे ब्रज में यमुना नदी के प्रमुख घाट और विनको इतिहास। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे अशोक कुमार जोशी। और आइए आनंद लेते हैं ये बधाई लोकगीत का।

डोरीलाल गोला की गाय इसी ब्रज लोक गीत के साथ ही ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे जोगन फिल्म से गीता रॉय के स्वर में ये भजन। आइए आप सुनते हैं काला बाजार फिल्म से गीता दत्त और साधना मल्होत्रा के स्वरों में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के सुर में काला बाजार फिल्म से ये भक्ति रचना। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संध्या वंदन। अगली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंकुश से, स्वर हैं पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ के।

पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे अंकुश फिल्म से ये भजन। और अब कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दशावतार से, जिस पर आप सुन रहे हैं संजीव अभ्यंकर और साथ में के

संजीव अभ्यंकर और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म दशावतार के लिए, और इसी भक्ति रचना के साथ ही संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को राम राम। भैया देखो, आजकल ले आप तो जानो कि खरीफ की फसल हमारी खेती में ठाड़ी है, और देखो कछु फसल ऐसी हैं जो के कट चुकी हैं, जैसे कि तुम्हारो मक्का, जिन भैया ने दुधिल मक्का जो है मुठिया बेच दई और खेत खाली कर दई, कछु भैया ने बाजरा काट दो, या कछु भैया ने ऐसा है कि चरी करी और चरी जो है चराए के खेत है के खाली। तो अब वहाँ में जो है अगली फसल बोवे के काज हमारो किसान भैया तैयारी कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे हम ऐसी कंपोस्ट की जो खेती के काज में मान लो कि बहुत ही लाभकारी है। तो जाते कहें बर्मी कंपोस्ट, सब भैया जाने केंचुआ की खाद, यानी कि जो केंचुआ लेके और उनको हम जो है गोबर के माध्यम से और छोटे छोटे दाने बनवाए के अगर खेती में डारें तो हमारा खेत इतनो जोर को फूक है जाएगो, इतना उपजाऊ है जाएगो कि जो को फसल हम वहाँ बोंगे तो भैया दुगनी चौगनी होगी और हमारे खेत में ऐसी उर्वरकता बढ़ेगी कि खेती सघन है जाएगी। अब कैसे बनावें? देखो भैया, सबसे पहले तो खेती में जो है उपजाऊपन लाने के काज हमें पहले केंचुआ लाने पड़ेंगे। अब उन केंचुअन के कहा करेंगे कि सीरक में अब हमें एक ऐसी हौदी सी बनवानी है पक्की, जाते कि भाई केंचुआ जमीन में नहीं जाए। और फिर कहा करें कि भैया हम गोबर लेकर के ठंडो गोबर, गरम गरम नहीं, ठंडो करके गोबर और थोड़ो थोड़ो अगर हम डालते जाएं तो केंचुआ व गोबर को खाएंगे और खाए करके और वो दाने दाने से निकालेंगे। उन दाने दाने से इनको अब हम धीरे धीरे जब सूख से जाएं थोड़े से तो उन्हें एक लंगु कर लेंगे। फिर भैया वो केंचुआ वही में ब्यांगे, थोड़े थे ज़्यादा होंगे। अब ऐसी करके केंचुन की मात्रा बढ़ती जाएगी। हम चाहें तो दूसरी हौदी में डाल सकें उनने, फिर हमने गोबर डाल सकें।

थोड़ी सी मिट्टी मिला के, तो उनको प्रिय भोजन है वो गोबर और गीली मिट्टी। अब वाय वो धीरे धीरे खामते चले जाएंगे, तो भैया ऐसी वाह को खाद बनामते चले जाएंगे। बस हमें क्या करना है, जैसी भी दाने से नेक ऐसे है जाए बुरक भी लाग सूख से जाए, सोई वाय लेके अपनी खेती में ऐसे बुरक दो जैसे हम DAP बुरके काए, और खूब सघन बुरक दो, खूब घनो जो कहें कहा कि भैया खूब 20 किलो भी गाव बुरक दो, और बुरक के और वहां पानी दे के, और बाकी जैसी जुताई आ जाए गोड़ दो बढ़िया तरह से सबरी मिट्टी में मिलाए दो, तो समझो खेत में भैया ऐसी जोर की ताकत आवेगी कि अगली फसल तुम्हारी ऐसी भुन आए के आवेगी। भैया ऐसे समझ लियो कि आपने न जाने कितनों बड़ो खाद लगाए दो, न जाने कितनी गांव में पैदावार लगाए दी। तो बर्मी कंपोस्ट जो है भैया पहले तो ही किसान न के काजे बड़ी लाभकारी रही है खेती में, पहले बड़ी बूढ़े इतने ज्यादा खाद ना उदय करते तो खेती ऐसी फूकी है जाती। तुम जानो मक्का की खेती में इतने गिड़ूरे ब्या जाते कि पैर पैर पे गिड़ूरे पड़े डोलते भैया यूं ही ब्या जाते, तो हमारो किसान भैया उनने बिल्कुल हानि नहीं पहुंचा, तो उन्हें बढ़ने दें तो खूब बढ़ने दें तो, और बोई जमीन में चले जाते खेत को ऐसो फोको कर देते कि खेत हमारा बड़ी जोर की पैदावार दें दो। तो भैया चो ना हम पहले से काम अन्य करें, चो जा खाद के पीछे भागे भैया, तो बर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता हमारी खेती के काज बहुत ज्यादा है। तो भैया जी करी हमने कछु चर्चा बर्मी कंपोस्ट पे। अब देखो कार्यक्रम में थोड़ा सा मनोरंजन आपको करवा में, तो मोहन सिंह कुंतल के सुर में आपको एक लोकगीत सुनवा में, मथुरा 3 लोक ते न्यारी।

0: कान्हा बंसी तो बजावे राधे नाम की। मोहन सिंह कुंतल के स्वर में, भैया अभी आप ब्रज लोकगीत को आनंद ले रहे थे। देखो भैया, जैसे कि हमने पहले चर्चा करी, खेत हमारे कछु खाली है गए चरी के, कछु मक्का के, और कछु जो है हमारी जो जायद की फसलें ना ही, जो सब्जी न की या जो हमारे बेल बारे फल हों में क्या उनकी, तो उन खेत में भैयाओ या समय पे सरसों की बुवाई की तैयारी चल रही है। अब सरसों की जो लाभकारी खेती है भाई, हमारे काज क्यों लाभ की है, हम कैसे सरसों से लाभ ले सकें, क्योंकि परंपरागत खेती हम करते चले आ रहे हैं, कछु थोड़ा सा बदलाव करके हम अगर मान लो 4 गुना 6 गुना लाभ ले लें तो या में कहा बुराई है। हम कहा करें कि भैया हर बार अगर मान लो दूसरी फसल बो रहे हैं, हर बार मान लो गेहूं कर रहे हैं या जौ कर रहे हैं या और कछु कर रहे हैं, और हमें इतना मुनाफा ना मिल पा रहा, तो बदलाव करके अगर हमें मुनाफा मिल जाए तो या में कोई बड़ी बात ना है। तो सरसों की लाभकारी खेती हम कैसे करें, तो यही विषय पर आज आपको एक जानकारी डिब्बा में डॉक्टर एस के झा जानकारी देंगे। भेंट कर रहे हैं इनसे दिलीप यादव, सुनो भैया।
1: सर भैया आपको स्वागत है, हमारे संग है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एडीजी दलहन तेलहन डॉक्टर एस के झा, और आज राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की 33वीं वार्षिक बैठक में आप सेवर भरतपुर में पधारे हैं और लंबे समय आपने यहाँ सरसों पे भी काम किया। तो डॉक्टर साहब, सरसों की बात हम करें, सरसों की जो स्थिति है मथुरा भरतपुर ये जो इलाकों है, मथुरा में सरसों को क्षेत्रफल बहुत कम है, तेल की आवश्यकता, खाद्य तेल की आवश्यकता पे हमारी जो निर्भरता है लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसान भैया की रुचि कम पानी और कम लागत वाली फसल हैवे के बाद भी सरसों की तरफ से किसान भैया का जो रुझान है वो कम है, तो ये जो कमी है या कि कहा दुष्परिणाम किसान की माली हालत पे आप देख रहे हैं, और कैसे आपको बढ़ाया जा सके, कैसे सरसों को लाभकारी बनाया जाए।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सरसों इस इलाके में बहुत प्रमुखता से खेती की जाती है और की जा रही है काफी लंबे समय से, और यही कारण है भारत सरकार ने सरसों के ऊपर में जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी, वो भी ब्रज के ही इलाके में करी है, और इस संस्थान के अब 33 साल होने को हो गए, और 33 सालों में जो इस संस्थान की उपलब्धि रही है, जो भारतवर्ष में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर जो किस्मों के विकास या तकनीकों का विकास, इन सब बातों को लेकर के जो भी अनुसंधान किए जा रहे हैं उनके अच्छे परिणाम आए हैं। आज ये बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज पूरे तिलहनी जितनी फसलें हैं, 9 फसलें हैं जिसपे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान करती है, सरसों उसमें एक है, इन सभी 9 फसलों में सरसों सबसे ज्यादा उत्पादन इस वर्ष 25-26 में लगभग 138 लाख टन उत्पादन होने की का अनुमान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इसमें कहीं न कहीं किसान भाइयों, आपने जो उन्नत तकनीकी लिया है,

जो अच्छी खेती की है, कुछ रकबा बढ़ाया है, कुछ क्षेत्रफल बढ़ा है, इन सब का योगदान है कि आज हम 138 लाख टन पे, और ये लगभग मैं कहता हूं कि जो दूसरी फसलें हैं जैसे मूंगफली, सोयाबीन, इनसे ये अधिक पैदावार दी है। साथ ही साथ जो इसमें तेल की मात्रा है, यदि हम उसका अनुमान करें तो वो तेल की मात्रा भी सबसे ज्यादा हमारे इस सरसों से मिला है। जहां तक इन्होंने कहा कि रुझान कम हो रहा है, क्यों? सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसी फसल है जहां मूंगफली में हम देखते हैं कि 1.5 क्विंटल 150 किलो बीज दर है, सरसों 5 किलो बीज दर एक हेक्टेयर में काम होता है। यानी यहां आप समझ सकते हैं कि बीज एक कोई मसला नहीं है, बीज का कोई की समस्या नहीं है। ज्यादातर जो हमारे किस्म है वो स्व परागण की विधि अपनाते हैं, तो इसलिए आप उन किस्मों को कई साल तक यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर प्रयोग में ला सकते हैं। हाइब्रिड की जहां तक बात है, हाइब्रिड में समस्या रही है हमारे यहाँ सरसों की, जिसकी वजह से आपको हाइब्रिड का चलन कम हो गया है, क्योंकि उसके बीज के उत्पादन में समस्या आती है और वो आपको देखने को मिलता है कि उसमें बहुत लागत लग जाती है, किसान के लिए वो लाभकारी नहीं रहता है। अन्यथा ये एक बात हो गई। दूसरी जो समस्याएं आती जा रही थी हमारे इसमें, वो है कि जो मौसम में जो बदलाव आया है, जो शुरू के दिनों में हमें तापमान ऊंचा रहता है जब बुआई का समय आता है, इसकी वजह से कई बार हमको दोबारा से उसका बुआई करनी पड़ती है, अंकुरण सही नहीं होता है, चितकबरा कीट की समस्या आ जाती है। बाद के समय में जब पकाओ फसल आती है तो उस समय में जो ठंड चाहिए वहां वो ठंड नहीं मिल पाती है, तो गर्मी आ जाने की वजह से फरवरी में, तो उस समय में भी उत्पादन पे, उससे बीज सेटिंग पे असर पड़ता है और वो इस तरह हमारे लिए किसान भाइयों को हतोत्साहित करती है। लेकिन जहां तक सरसों की बात है, तो सरसों ऐसे तमाम क्षेत्रों में देखा गया है, चाहे पूरब में चले जाएं, पश्चिम में चले जाएं, दक्षिण में चले जाएं, उत्तर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे ये सब तरह के कृषि जलवायु क्षेत्र में आपको पैदावार देती है। लगातार खेती करने से, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार खेती करने से हमारे खेतों में भी कई तरह के जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तना गलन का रोग कुछ समय से आया है, बार बार अगर हम एक खेत में सरसों लेते हैं और तना गलन आ गया है तो आपको निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, कोई दूसरी फसल लेने की, फसल चक्र अपनाने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के समस्याएं आती रहती हैं। कई बार बरसात कम हो जाती है तो उससे हमें सूखा या इस तरह का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो किस्मों का चुनाव हो, वो किस्मों के चुनाव में हमें सावधानी रखनी है। बाकी जो हम देख रहे हैं कि जैसे हमारी पद्धति है किसानों की कि हम जुताई बहुत करते हैं, तो बहुत जुताई करके हमने बहुत खर्चे कर दिए, 10-10, 12-12, 15-15 तक जुताई भरतपुर के इलाके में मैं देखता था पहले जब मैं यहाँ काम करता था, करते थे किसान, जब भी बरसात हुई थोड़ी सी उन्होंने जुताई कर दी, तो ये बहुत ज्यादा खर्चा आता था। धीरे धीरे हमने देखा है कि यदि आप बिना जुताई के सीधे बुआई कर देते हैं, जिसको हम जीरो टिलेज बोलते हैं, जिसमें जीरो कोई भी आपको उसमें जुताई नहीं करना है, सीधे बुआई ही करना है, तो वो जो एक तकनीकी आई उससे भी आदमी को, किसानों को, आपको ये लागत कम हो जाएगी, लाभ ज्यादा होगा उसमें। लेकिन थोड़ी सी आपकी जो तकनीकी है वो बदलेगी, क्योंकि ऐसे खेतों में खरपतवार बहुत हो जाते हैं, तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आपको खरपतवार नाशी का उपयोग करना होगा। बाकी इसके आगे जब हम जाते हैं, सिंचाई की बात आती है। सिंचाई के लिए जो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम खेतों में पानी भरते हैं, पहले के समय में मैं देखता रहा, आज पाइपलाइन से भी सिंचाई होने लगी है, तो वो जो सिंचाई बढ़ती है तो उसकी एक मात्रा होनी चाहिए, जो हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के द्वारा बताया है कि आपको 7.5 सेंटीमीटर 3 इंच की सिंचाई करनी चाहिए सरसों में। लेकिन हम 75 सेंटीमीटर कर देंगे, हम पूरा भर देंगे, क्योंकि भाई हमने खरीदी है पानी, तो उससे नुकसान होता है, आपको बहुत नीचे तक चली जाती है वो पानी, तो

उससे नुकसान होता है। तो ये सब तमाम बातें हैं। अच्छे आप बीज ले लें, जो अच्छे बीज के साथ साथ जो तकनीकी की बात की जा रही है, बुवाई की बात की जा रही है, सिंचाई की बात की जा रही है, या पोषक तत्व। अब पोषक तत्व में हम देख रहे हैं कि हम खास तौर से रासायनिक पोषक तत्व के ऊपर ही ध्यान देते हैं या जोड़ देते हैं, जबकि अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक, बहुत सारे ऐसे जीवाणु वाले खाद सब आ गए हैं। आप उसमें नाइट्रोजन भी है, जीवाणु से मिल रहा है, फास्फोरस भी जीवाणु से मिल रहा है, पोटास भी मिल रहा है, सल्फर गंधक भी मिल रहा है, जिंक भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों को मिला के समेकित तरीके से हम अपना पोषण प्रबंधन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बात आती है आगे कि जो बीज उपचार वगैरह में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में यदि आपके पौधे में कुछ बीमारी लग गई और वो नुकसान हो गया अगर वो, तो वो फिर आपके पैदावार पर असर करता है। तो इसलिए वहाँ भी आपको बहुत सारे सूक्ष्म जीव मिल रहे हैं जिनसे आप उपचार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा न थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है, पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। ये इस इलाके में जहाँ खारा पानी है, उस खारे पानी में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली हमारी तिलहनी फसल है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि सरसों की फसल जो आज के समय में पूरे भारतवर्ष में मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा उत्पादन जिसका हुआ है, और हाँ अभी हमें और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अभी हम लोगों ने एक तकनीकी का इजाद किया है जिससे कि आपको वो ओरोबैंकी गुड़िया, उसके लिए आप अगर आपके खेतों में, बारानी खेतों में खास तौर से होती है खेती में, कि आपको वो गुड़िया जिसको आप कहते हैं ओरोबैंकी है, ये जड़ों में लग के और फिर उसका सारा शोषण करती है, ये परजीवी है, वो सरसों के पौधे के ऊपर में निर्भर करती है। तो इनका नियंत्रण करना किसानों के लिए बहुत कठिन हो जाता था। ज्यादातर समय में ये देखा जाता था कि किसान भाई का जब पौधा 60 दिन 70 दिन का होता था तब जाकर के वो उगता था, वो जमीन के ऊपर आता था, तब करने कुछ नहीं कर पाते हैं। तब तक उसने 60 दिन 70 दिनों में उसने काफी आपके पानी, आपका ये जो पोषक तत्व हैं इनका वो शोषण कर चुका रहता था, इसलिए पैदावार कम होती थी। तो ऐसे में जो अब आज हमारे संस्थान से जो अनुसंधान हुए हैं और जिसमें कि अब अनुशंसा की जा रही है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि यदि आप उसका अनुसरण करते हैं तो इस समस्या से भी, जो कि बहुत दिनों से ये लंबी समस्या रही है किसान भाइयों की, इसका भी निदान हो गया है। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में अब किसान भाइयों के लिए रबी की ये फसल, रबी में बहुत हद तक मैं समझता हूँ खरीफ से कम रिस्क रहता है। खरीफ में बरसात ही हो गई तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन रबी में जाकर के किसान भाइयों को थोड़ा मौसम भी एक स्टेबल हो जाता है। और आपके मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे संस्थान से, यानी ये जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है और जो आपके साथ पिछले 33 वर्षों से यहाँ ब्रज के इलाके में स्थापित है, आए दिन कुछ न कुछ तकनीकी, कुछ न कुछ नई किस्में आती जा रही हैं, उतार चढ़ाव लगा रहेगा, क्योंकि ये खेती ऐसी चीज है कि सब कुछ हो जाता है, अंत में कुछ अंधड़ तूफान आ गया, अंत में ओले पड़ गए, अंत में कुछ खराबी हो गई, आप सब लेकर के आए खेत में, काट के आए, थ्रेसिंग करके, तब तक बरसात हो गई। तो ये जो रिस्क है, ये जो खतरा बना हुआ है, ये खेती में है। हम उतने समृद्ध देश के किसान भी नहीं हैं कि सबके पास सारी तरह की सुविधाएं हैं और इस तरह से करें जैसे विदेशों में हम देखते हैं, बड़े बड़े देशों में, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार आपके साथ में है और आपको सरसों में जो आप लोगों ने करके दिखाया है, जिसकी बदौलत आज ये संस्थान यहां है, नहीं तो किसी और जगह पर भी इसकी स्थापना की जा सकती। लेकिन क्यों आज से 33 वर्ष पूर्व ये निर्णय लिया भारत सरकार ने कि नहीं, ब्रज के इलाके में ही हम ये करेंगे, सरसों अनुसंधान की स्थापना करेंगे, और वो अब 33 साल में आया है। मैं आग्रह करूंगा आप सब लोग जुड़ें, और कई तरीके से जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। जैसे हमने बहुत सारे ऐप बना रखे हैं, आजकल मोबाइल का जमाना है, हर किसान के घर में एक न एक स्मार्टफोन है, उस पे आप हमारे यहाँ के एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको किस्मों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको खादों की अनुशंसा

0: रहती है, जिसमें बीमारियों को पहचानने का भी आपको सुझाव दिया जाता है, उन बीमारियों पर नियंत्रण कैसे पाएं उसकी भी जानकारी दी जाती है। तो इस तमाम तरह की जानकारी को भी आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने मध्यम अवधि में मौसम का पूर्वानुमान और उससे संबंधित जो भी एक सलाह है, परामर्श है किसानों के लिए आवश्यक, वो भी हम लगातार देते चले आ रहे हैं वर्षों से, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं ताकि आपके मोबाइल पे वो संवाद हम कर सकें, आपको बता सके कि आने वाले 5-7 दिनों में किस तरह का मौसम होने वाला है और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो मेरा आपसे ये आग्रह है। इसके अलावा जो किसान भाइयों की जो सबसे बड़ी चिंता रहती है कि हमारा ये उत्पाद बिके, उसके अच्छे मूल्य मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, तो सरकार ने जो 150% की का वादा किया है वो उस तरह से हमारे ये न्यूनतम समर्थन मूल्य में हर वर्ष वृद्धि होती है और जो लागत आपकी है उससे 1.5 गुना कम से कम आपको मिले, वाप मुनाफा हो जाए, तो वो आपको लगातार आकर्षित कर रही है। तो मैं समझता हूँ संगठित होकर के FPO के माध्यम से भी आप लोग जुड़ें तो हो सकता है ज्यादा अच्छा से आप इस खेती को कर सकते हैं, जहां जहां FPO ने इसमें दखल दिया है। FPO क्या है? आप ही लोगों की एक संस्था है, आप लोगों ने खुद उसको बनाया है, फिर रजिस्टर्ड किया है और आप उसके माध्यम से तकनीकी लेके आते हैं, खर्चे भी कम पड़ते हैं, मुनाफा ज्यादा होता है। तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार की इस संस्था के साथ और ये जो बहुत तरह की जो ये संस्थाएं हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनके माध्यम से भी आपको तमाम जानकारियां आपके क्षेत्र में उपलब्ध होती हैं, तो आपको नवीनतम तकनीकी जानकारी का उपयोग करिए और ये लाभकारी सौदा है। सरसों की खेती बहुत लाभकारी सौदा है। मैं आपसे कहूंगा कि आप इससे जुड़े रहें, मन छोटा ना करें।
1: किशन भी हमारे संग है EDG दलहन तिलहन डॉक्टर SK झा साहब, और आपने सरसों की जानकारी दी, निश्चित रूप से ये जानकारी आप सबको लाभप्रद रही।
2: तो भैया आपने जानकारी ली कि भाई सरसों की जो खेती है हम कैसे लाभकारी बना सकें, कैसे बाती हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कर सकें और सरसों का तरीका से करें जाते कि वाकई अच्छी पैदावार हो, और भैया हमें जो परंपरागत तरीका से करते आ रहे हैं वाते हटके कछु लाभ हो। जानकारी दे रहे डॉक्टर SK झा और इनसों भेंट करे दिलीप यादव। अब भैया आपको एक लोकगीत और सुनवा में दामोदर शर्मा के सुर में ब्रज में है रही जय जयकार।

0: भैया यही लोकगीत के संग ही अब हमें आज्ञा दो, कार्यक्रम को यही संपन्न करवेगी। सभी भैयन को राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया वीरेंद्र सिंह ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा। आपसे कुछ ही बोलूंगा।

0: बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 25 जिले बाढ़ की चपेट में, राहत बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों के लिए जताया भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों के बीच हुई चर्चा। बागपत में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 24 घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए दिए निर्देश। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। वार्ड लेवल रैंकिंग में भी राजधानी का वार्ड 70 रहा अव्वल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति की समीक्षा कर राहत और बचाव कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पीलीभीत में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से शारदा व देवहा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: शारदा नदी में बनबसा बैराज से आज 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। देवहा नदी में डिस्चार्ज 11,000 क्यूसेक था। इससे पूरनपुर, सदर, कलीनगर और बीसलपुर तहसील क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें व संपर्क मार्ग डूबे हुए हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट करके प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखने को कहा है। लगातार बरसात होने से निचली बस्तियां भी जलमग्न है और आज 8वीं तक के स्कूल बंद रहे। जलभराव के कारण माध्यमिक विद्यालयों में अगले 3 दिन का अवकाश घोषित करने की मांग आज शिक्षक संगठन ने जिलाधिकारी से की है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।
3: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज विभिन्न पेयजल योजनाओं की मंडलवार समीक्षा की। उन्होंने मानसून के बाद अक्टूबर से पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर रोड

0: रेस्टोरेशन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी अभियान की तैयारियां समय से पूरी कर लें। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बस सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने आज लखनऊ में बैठक की। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं को और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच पहले से संचालित 25 मार्गों के अलावा बिहार ने 14 नए मार्गों पर परिवहन की बसों के संचालन का प्रस्ताव दिया है।
1: 25 रूटें पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के पहले से संचालित था और उसका एक्सटेंशन करने का बात थी 10 साल के लिए, और 14 नए रूट बिहार की तरफ से प्रस्तावित किया गया है। कुछ उसमें हम लोगों ने और भी अतिरिक्त रूट बढ़ाने के लिए कहा है। प्रतिदिन जो है लाखों लोग बिहार से उत्तर प्रदेश आते हैं, लाखों लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाते हैं, तो सबके आवागमन की सुविधा रखना हम सबका दायित्व है। इस पर हम सब लोगों ने आज एक एक बिंदुओं पर निर्णय किया है।
0: बागपत में देर रात हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 24 लोग घायल हो गए। हादसा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा गांव टोल के पास हुआ जब एक तेज रफ्तार कैंटर ने श्रद्धालुओं से भरे वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सवारी वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि श्रद्धालुओं से भरे सवारी वाहन में 30 से अधिक लोग सवार थे जो राजस्थान से लौट रहे थे और बदायूं की ओर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया है।
2: दुर्घटना में लगभग 24 व्यक्ति घायल बताए गए हैं और इनमें से कई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से चोटें आई हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार हेतु अलग अलग सीएचसी में भेजा गया, जहां गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा उपचार हेतु हायर सेंटर जो हमारे मेरठ में है वहां पर रेफर किया गया। अब तक जो प्राप्त सूचना हुई है उसमें 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। ये सभी लोग बदायूं जनपद के थे, राजस्थान में पूजा अर्चना के लिए गए थे। 5 दिन बाद पूजा अर्चना पूरी करके वापस आ रहे थे तभी दुर्घटना हुई है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 9 सितंबर को वाराणसी से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगी। इस वर्ष का अभियान 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा। इनमें आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही तथा बच्चों के विकास के लिए पोषण, प्रारंभिक प्रोत्साहन और शिक्षा शामिल है। राष्ट्रीय पोषण माह का इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में लखनऊ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों में पहला स्थान मिला है। स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। लखनऊ की उस उपलब्धि के लिए 1,50,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी 1 में उत्तर प्रदेश के 6 शहरों ने स्थान बनाया। इनमें लखनऊ ने देश में पहला, आगरा ने चौथा, गाजियाबाद ने 9वां, कानपुर ने 11वां, प्रयागराज ने 13वां और मेरठ ने 22वां स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की वार्ड लेवल रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कैटेगरी 1 में राजधानी लखनऊ के वार्ड 70 ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं गिरी 2 में प्रयागराज के वार्ड 31

0: देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में झांसी, मुरादाबाद और नोएडा टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
1: उत्तर प्रदेश को मिली इस उपलब्धि पर प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि स्वच्छ हवा और स्वच्छ शहर केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लखनऊ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष मलखान सिंह ने आज पीआरवी वाहन रवाना किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक, मोटर दुर्घटना, भूमि अर्जन, पुनर्वासन से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
2: जैसा कि आप सभी को जानकारी है, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जा रहा है और इसके साथ ही मीडिएशन 3.0 का कार्यक्रम भी प्रचलित है। मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में न्यायालय में पहुंचकर मध्यस्थता एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 25 जिले बाढ़ की चपेट में, राहत बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों के लिए जताया भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों के बीच हुई चर्चा। बागपत में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 24 घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। वार्ड लेवल रैंकिंग में भी राजधानी का वार्ड 70 रहा अव्वल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: किधर है?
4: बेटी का नया अकाउंट और मेरा KYC अपडेट,
3: ये तो झटपट काम है।
4: कैसे?
3: अगर KYC डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
4: और बाकी चेंजेस?
3: घर बैठे वीडियो KYC या आधार OTP बेस्ड eKYC से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
5: RBI कहता है
6: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
9: हम आकाशवाणी के
10: FM 102.2 MHz पर, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी।

शाम सुहानी सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शाम का ये खुशनुमा वक्त और साथ हो आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का संगीत, तो भला शाम और सुहानी कैसे ना हो जाए। तो बताइए, आज की संगीत भरी शाम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? किस गीत से जुड़ी है आपकी कोई खूबसूरत याद, और किस गीत को सुनकर आपका मन कह उठता है बस यही गीत एक बार और। आपके इन्हीं संदेशों और फरमाइशों को हम गीतों का रूप देकर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश और अपना संदेश हमें भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9412225715, यानी 9412225577।

तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी पसंद, आपकी यादें और आपके संदेश मिलकर सजाने वाले हैं आज की ये शाम सुहानी। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर अरविंद कुमार। शुरू करते हैं संगीत का ये खूबसूरत सफर शाम सुहानी।

चितलकर और साथियों की आवाजों में अलबेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत निर्देशन था। और इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए हैं। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तेड़े, आशीष मोर्रेकर, भोईवाड़ा पैठण से शेख चांद महादेवी परदेशी, शेख अदनान, शेख नुमान, शेख जकिया बाजी, सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन एकनाथ और संगीता, डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल सिया और इनके पारिवारिक जन पैठड़ से, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता, दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोड़, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोड़, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहतन शाकिर, अलकमा खत्री।

नमः रमेश गौड़, शादाब खत्री। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी रजत, रमजत, मुरली नीरा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और शव्या रामटेके। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल और उषा पाटिल का संदेश मिला है। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सिंह, प्रभा देवी सिंह, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक। हरियाणा झज्जर के श्रोता हैं बिट्टू भाटिया, रीता रजत और मयंक भाटिया। विरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सन्नी भावसार। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, महेंद्र मोदी और कुलदीप कमर। बठिना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजवती कौर, काजल साहू। अकोला महाराष्ट्र से जुड़े हैं अमेल इंगले, अर्चना सर्वेश और अधीरा इंगले।

अकोला महाराष्ट्र से सुशीला देवी बंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय, वर्निंग खेंडा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी और तमन्ना भाटिया, जेल रोड रायगढ़ से सौरभ, निषाद, प्रकाश, बल्लू, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा राठौर, कासगंज से जुड़े हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत और सुरेश चौरसिया, फरुखा भाटी।

मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता, पलक लुगना, यश मंसूरी और नवासा नुबैर मंसूरी, मुंगी सपूर, कानपुर देहात से उन्होंने संदेश भेजा है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, फिल्म का नाम है हीरा पन्ना, आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में हीरा पन्ना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन था। इस गीत को सुनने के लिए हमें जो संदेश प्राप्त हुए हैं उनमें नाम शामिल हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी सौरभ और शाइना शर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। अहिल्यानगर भावी नीम गांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा हर्षदा वैष्णवी, आदर्श और युवराज गोंधली। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी, राजेश, राकेश और ऋषिता। नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राज जाधव, मंगेश इंगले, संध्या और सुराज विराज। अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा का संदेश में मिला है। मधुबनी बिहार से जुड़े हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, क्रांति भगत, कामेश्वर प्रसाद, भगत अरुण और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश उग्नेजा, पूनम उग्नेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता हुजा। ललितपुर के श्रोता हैं संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, अनीता, ज्योति, संजना, रेखा भारती, पूर्वी रूही, शक्ति, भक्ति, अनु, अनन्या, आदर्श, लव, कुड़ी सेक्टर 5, सूर्य नगरी, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष। तालुका निवासा खोपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला और देवीदास। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रवारी।

कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और कैफ अंसारी। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास और मानिकपुरी इनके श्रोतागण। गिरिडीह झारखंड से यासीन, अनजान, साइमा, हसन, मेफरा और सादिया चाहत। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र टांगी। डबवाली से

डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी तानिया नारंग। समाना शहर पंजाब से संगीता, महक, सुनीता और इनके ढेर सारे साथीगण। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। बिलाईनगर छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, श्याम कुमार, चीनू, आसमा, दीपक और अनुषी। निजामाबाद तेलंगाना से अजीज मतीन, शेख फारूक, सईद खलील, करीम शेख सलीम। जमशेदपुर से विपिन, स्वाति देव और आर्य कुमार। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी। भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा। और श्रोताओ, शाम की इस सुहानी महफिल में अब जरा रंग भी घुल जाए, कुछ शोखी, कुछ नटखट अंदाज और मोहम्मद की ये हल्की सी मिठास लीजिए। सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें दिलकश अदाएं, चुलबुल शरारत, मोहम्मद का खूबसूरत एहसास। हमराही फिल्म से हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन, आवाज रफी साहब की।

मोहम्मद रफी की आवाज में हमराही फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का था। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशें प्राप्त हुई थी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगाहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजन और इनके परिवारजनों की। नागलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा। बिजनौर से मोहम्मद वकर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कोसर। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। पलसी बुझरुक महाराष्ट्र से विजय शिवकार, ऋषिकेश, रेणुका और जयश्री। ग्राम रजौनी महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंद्रपाल, दीक्षापाल, प्रतीक्षापाल, विमलेश, दिव्यांश और इनके परिवारजन। लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्र सिंह। अंबगढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आशा सबीहा, अनसर रेहान खान। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रज्योत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी और कांकित कांगड़ा। और अब बारी है कार्यक्रम के अगले और आखिरी गीत की। एक बार फिर से मोहम्मद रफी की आवाज हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्यार ही प्यार फिल्म के लिए। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का है।

मोहम्मद रफ़ी के गाए प्यार ही प्यार फिल्म के इस गीत के साथ ही शाम सानी प्रोग्राम से अब मुझे यानी अरविंद कुमार को अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी ने इस प्रोग्राम में अपना संदेश भेजा, मैसेज भेजी, फरमाइश भेजी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सहनी, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाज में अभी आप सुन रहे थे पद्मावत फिल्म से ए एम तुराज का लिखा हुआ यह गीत संजय लीला भंसाली के संगीत निर्देशन में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। गीतकार हैं महबूब, संगीत इस्माइल दरबार का है, आवाजें हैं उस्ताद सुल्तान खान, शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की।

हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उस्ताद सुल्तान खान, शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीतकार थे महबूब और संगीत इस्माइल दरबार का था। फिल्म संगीत की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है कालिया। मजरू के बोल हैं आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन।

मजरूह की रचना थी, आरडी बर्मन का संगीत निर्देशन था। कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट के माध्यम से, फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत, संगीत अनुमलिक का है।

सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए रिफ्यूजी फिल्म के संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देशगान।

लगन साधना ते मिल करके आगे कदम बढ़ानो है। जा फूलन की बगिया में ते जा

अभी आप सुन रहे थे घनश्याम दास के स्वर में विदेश भक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं काला पानी फिल्म के कुछ गाने। श्रोताओ, कहानी जब रहस्य भरी हो, किरदारों में रोमांच हो और गीतों में उस दौर की दिलकश रवानी, तो सिनेमा का रंग कुछ और ही निखर जाता है। प्रस्तुत है हमारी संगीत यात्रा एक ही फिल्म से, एक और खूबसूरत पड़ाव।

श्रोताओं, कहानी शुरू होती है करण यानी देवानंद के किरदार से। करण का जीवन एक ही उद्देश्य से संचालित है, अपने पिता को निर्दोष साबित करना। करण के पिता पर एक हत्या का आरोप है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन करण को विश्वास है कि उसके पिता अपराधी नहीं हैं। वो सच्चाई की तलाश में निकल पड़ता है और यहीं से कहानी में प्रवेश करता है रहस्य, अपराध और षड्यंत्र का संसार। करण की तलाश आगे बढ़ती है, वो एक एक करके उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है जो उसके पिता की बेगुनाही तक पहुंच सकती है, लेकिन अपराध की दुनिया में सच तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर एक नया रहस्य है, और इन सब के बीच आशा के साथ उसका रिश्ता भी आगे बढ़ रहा है। प्रेम में एक अजीब सी बेचैनी होती है, कभी लगता है सामने वाला हमारी भावनाओं को समझ रहा है, और कभी लगता है शायद हमारे प्रेम की उसे कोई कद्र नहीं। इसी भाव का आवाज देता फिल्म का अगला गीत।

श्रोतो, प्रेम की कहानी में रोटना मनाना ना हो तो प्रेम कहानी कुछ अधूरी सी लगती है। और जब बात हो पुराने जमाने के सिनेमा की, तो नायिका की नाराजगी और नायक की गुण मनोहार, इनका अपना अलग ही आनंद है। काला पानी की कहानी भी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। करण अपने पिता को निर्दोष साबित करने के लिए लगातार प्रयास करता है। वो उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है जिनके पास इस पुराने अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण राज हैं। कहानी में रोमांच बढ़ता है। दर्शक के मन में भी यही सवाल उठता है, आखिर करण के पिता को किसने फंसाया? असली अपराधी कौन है और क्या करण अपने पिता को न्याय दिला पाएगा? इन्हीं सवालों के बीच प्रेम भी अपनी राह तलाशता रहता है। आशा और करण के रिश्ते में कभी नज़दीकियां हैं, कभी रूठना है, कभी मनाना है, और फिर आता है प्यार सा वो क्षण जब प्रेम में हार जाना भी जीत जैसा लगता है। श्रोताओ, अब बारी है फिल्म काला पानी के एक बेहद मधुर और यादगार गीत की। आइए आपको सुनवाते हैं।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
1: अच्छा जी मैं हरी चलूं।
2: श्रोताओं, आपने सुना फिल्म काला पानी के कुछ यादगार गीत, और गीतों का ये खूबसूरत सफर आपने तय किया मेरे यानी अरविंद कुमार के साथ। एक ओर अपराध और रहस्य की कहानी, दूसरी ओर पिता के प्रति पुत्र का समर्पण और इन्हीं इनके बीच प्रेम की कोमल भावनाएं। फिल्म काला पानी ने रहस्य और रोमांच के साथ

साथ मानवीय रिश्तों को भी बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया। और शायद यही वजह है कि इतने वर्षों बाद भी इसके गीत हमारी स्मृतियों में वैसे ही ताजा हैं। तो दोस्तों, इस संगीत यात्रा से विदा लेने से पहले बस इतना ही। कुछ फिल्में पर्दे से उतर जाती हैं, कुछ कहानियां समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन अच्छे गीत वे दिल के कहीं ठहर जाते हैं। इसी ठहराव, इसी मधुर स्मृति और सदाबहार संगीत के साथ मुझे इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा अब से कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है।

0: गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास साहस अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई

0: जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
5: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
1: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
6: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी PG और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी PG आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है।

0: का संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
5: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
6: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और MCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
5: देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ बजट।
1: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार

0: And at World Archery Para Series, Sheetal Devi enters Women's Compound Individual Final in Ahmedabad, assuring a medal for India. That's all in news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर. लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने.

आशा भोसले की आवाज में चोर मचाए शोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे रविंद्र जैन और संगीत भी इन्हीं का था। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में द बर्निंग ट्रेन फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत किशोर कुमार, मन्नाडे और महमूद की आवाज़ों में पड़ोसन फिल्म से।

0: दरअसल फिल्म के संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुहाने तरह ने अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। और आज का हमारा विषय है लोक अदालत यानी जनता की अदालत। हम सब जानते हैं कि हमारी सामान्य अदालतों में एक छोटे से केस को भी सुलझने में कई साल लग जाते हैं। सभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगा वकील कर सके। तारीख पर तारीख मिलती रहती है। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए हमारे संविधान ने हमें लोक अदालत का तोहफा दिया। और आज पूरे आधे घंटे हम इसी विषय पर बात करेंगे कि लोक अदालत क्या है, कैसे ये काम करती है, इसकी प्रक्रिया क्या है और आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे आज के मेहमान हैं एडवोकेट आशीष कुमार पांडे जी को, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। नमस्कार आशीष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन ऑल इंडिया रेडियो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर।
0: जी श्रोताओं, और आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे नंबर पर कॉल करना शुरू कीजिए। नंबर है 0112311 01 2301 06 और 0112311 44 44 पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रश्न #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आशीष जी, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक अदालत क्या है और ये कैसे काम करती है।
1: देखिए, भारत का जो संविधान है वो एक एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है। वो सबके लिए न्याय की उपलब्धता होनी चाहिए, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और इसी तरीके से संविधान में त्वरित न्याय की भी बात करी गई है। अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को जब हम एक वास्तविकता के साथ सामने रखते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली में आप पाएंगे कि मामले बहुत समय तक लंबित हो जाते हैं, लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेन होता है, लोगों को कई बार आप पाते हैं कि प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं मिल पाती है, और सालों साल, जैसे कि एक पॉपुलर डायलॉग है कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है। और बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं सरकारों की तरफ से कि किस तरीके से हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज को प्रैक्टिकली जमीन पर उतार पाएं। अब इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास रहा है, हमने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 87 में लाए। उसके तहत मल्टी टीयर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। नेशनल लेवल पर आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। अब ये अथॉरिटीज समय समय पर उन फोरम्स को कॉन्स्टिट्यूट करती रहती हैं जिन फोरम्स में कोर्ट में चल रहे केसेस या जो केसेस कोर्ट में ले जाए जाने वाले हैं उन केसेस को रेफर कर सकते हैं
0: जी।
1: ये फोरम्स आपस में दोनों पार्टीज को बिठाकर एक तरीके से कॉन्सिलिएशन का काम करती हैं और आपस में ही एक सुलह समझौते के आधार पर अपना अवार्ड पास करती हैं। तो एक तरीके से जिसको हम ADR सिस्टम कहते हैं, एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है, इसकी तरफ प्रयास किया गया है लोक अदालतों के द्वारा। जी
0: जी, और अब हमारे श्रोताओं के प्रश्नों की भी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा हिसार से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी।
2: हाँ जी, नमस्कार जी, और वकील साहब को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार राजेंद्र जी,
2: मैं ये जानना चाहता हूँ वकील साहब से कि लोक अदालत में कौन से केसों की सुनवाई होती है और दूसरा और कौन से केस की नहीं होती। आम आदमी कैसे पता करे कि कहाँ लोक अदालत लगती है और इसके बारे में कब कब सूचना दी जाती है, इसके बारे में जानना था। नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार। देखिए, मैं आपके आखिरी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, कब कब लोक अदालतें लगती हैं और कहाँ कहाँ लोक अदालतें लगती हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक एनुअल कैलेंडर जारी करती है जिसमें कि कब कब लोक अदालतें लगनी हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड

0: कैलेंडर होता है। अब दूसरा प्रश्न आपका है, ये कहां लगती हैं? न्याय के सर्वोच्च स्तर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी, तालुका स्तर पर, मंडल स्तर पर, हर जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। और वो लोक अदालतें सामान्यतः जो राष्ट्रीय कैलेंडर बना होता है उसके अनुसार काम करती हैं, और कभी कभी स्पेशल लोक अदालत भी लगती हैं। फिर आपने सवाल पूछा कि किस तरीके के केसेस इसमें डील किए जा सकते हैं और किस तरीके के नहीं डील किए जा सकते हैं। देखिए, जो भी सिविल केसेस होते हैं ऑलमोस्ट सारे केसेस लोक अदालतों में रेफर किए जा सकते हैं, वहां पर ले जाए जा सकते हैं। और वो क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे आपका चेक बाउंस का केस हो गया, या ऐसे कंपाउंडेबल केसेस जिसके लिए लॉ में प्रोविजन है, वो सारे केसेस लोक अदालतों में लाए जा सकते हैं। लेकिन जहां पर कोई हीनस क्राइम हुआ है, जैसे अगर कोई रेप का केस हुआ है, एक मर्डर हुआ है, इस तरीके के केसेस में चूंकि स्टेट भी अपने आप में एक पार्टी होती है, ये क्राइम्स न केवल विक्टिम के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं बल्कि समाज के खिलाफ भी एक क्राइम होता है, इस तरीके के केसेस को लोक अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। जो आपके पारिवारिक झगड़े होते हैं, जो आपके समाज में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, या एक बहुत बड़ी यूटिलिटी निकल कर आई है लोक अदालतों की, आपका गाड़ियों का चालान हो जाता है, आपके बिजली बिल कभी ज़्यादा आ जाते हैं या पानी का बिल ज़्यादा आ जाता है, इस तरीके के सारे मुकदमों की सुनवाई आप पाते हैं लोक अदालतों में होती है, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। हम पाते हैं कि पिछले करीब 5 सालों में करोड़ों केसेस ऐसे हुए हैं, छोटे छोटे केसेस, जिनको की लोक अदालतों के द्वारा आपसी सुलह समझौते से कंप्लीट किया जा सका है। जी
1: आशीष जी, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार, और विशेषज्ञ को मेरा भी नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार राकेश जी।
2: जी मेरा ये प्रश्न है कि जब हम लोक अदालत में जो है केस बनते हैं तो कितना टाइम हमारे को उसमें लग सकता है, मेरा ये प्रश्न है।
0: देखिए, लोक अदालत एक दिन विशेष के लिए तय की जाती है, एक पर्टिकुलर डे पर आपका मैटर मार्क होता है। लेकिन लोक अदालत की चूंकि प्रक्रिया इस तरीके की होती है कि कॉन्सिलिएशन पहले जरूरी होता है, तो जब भी आपका केस लोक अदालत के लिए या आप खुद ही एप्लीकेशन के थ्रू रेफर कराते हैं, या कोर्ट को कभी लगता है जिस कोर्ट में पेंडिंग है कि ये एक सुइटेबल केस हो सकता है लोक अदालत के लिए, इसको भेजा जाना चाहिए, तो उसके पहले एक कॉन्सिलिएशन की प्रोसेस, दोनों पार्टीज आपस में बैठकर बात करके कोई एक ऐसा समझौता जो कि दोनों पार्टीज को मंजूर है, जब वो चीज हो जाती है तो उसके बाद आप पाते हैं कि ये केवल एक दिन में ही समाप्त हो जाता है। किसी एक दिन विशेष के लिए लोक अदालत लगती है, और अगर पार्टीज ने अपना समझौता कर लिया है तब तक तो वहां पर लोक अदालत अवार्ड पास कर देती है, और वो अवार्ड एक डिक्री ऑफ द कोर्ट होता है। जी
1: आशीष, हम लोग केसेस की बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
0: जी देखिए, केसेस को अप्लाई करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इनफैक्ट केसेस में भी मैं कैटेगराइज करूंगा कि एक तरीके का केस होता है जो ऑलरेडी फाइल हो चुका है और कोर्ट में चल रहा है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जो ऐसे मामले हैं जहां पर कोई पार्टी कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रही है, वो कंसर्न कोर्ट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास, लीगल सर्विसेज कमेटी के पास एक एप्लीकेशन दे सकती है, और उस एप्लीकेशन के बाद दोनों पार्टीज को नोटिस चली जाती है कि ये आपका कोर्ट, आपका केस इस पर्टिकुलर मीडिएशन के लिए या लोक अदालत के लिए रेफर किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो मैटर ऑलरेडी चल रहे हैं वहां पर या दोनों पार्टीज आपस में कंसेंट इस चीज के लिए दे सकती हैं कोर्ट को, या एक पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट के सामने और कोर्ट को लगता है कि ये एक सही मामला हो सकता है जहां पर लोक अदालत के थ्रू कोई निर्णय निकल सकता है। या फिर अगर दोनों पार्टीज की भी कंसेंट नहीं है, फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज एक्सप्लोर कर सकती हैं और कोर्ट को समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके की चीजें हो सकती हैं सुलह समझौता, तो कोर्ट सुओ मोटो भी मैटर को लोक अदालत को रेफर कर सकती है।
1: जी आशीष जी, आज के इस कार्यक्रम में हम लोक अदालत की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, तो एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दरभंगा बिहार से, मोहन पासवान जी। जी मोहन जी।
3: जी जय हिंद मैडम तथ्य।
1: जी जय हिंद।
0: जय हिंद मोहन जी।
3: जी मैं जानना चाहता हूँ कि लोक अदालत में आम लोगों के लिए सरकारी वकील का भी व्यवस्था होता है सहायता के लिए?
0: जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती हैं इनके ट्विन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि जिन लोगों को एक लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, वकील नहीं मिल पा रहा है, वो उसका कोई भी कारण हो सकता है, मूलतः उसका एक आर्थिक कारण भी होता है, और कई वर्गों के लिए हमारे समाज में लीगल एड की अलग से भी प्रोविजन है। ऐसे में सरकारी वकील, जिसको कि हम सरकारी वकील कहते हैं, वो बेसिकली एक लीगल एड काउंसिल होता है जो कि इम्पैनल्ड होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज से, और वो वकील आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की तरफ से मार्क किया जाता है। और मेरा ये आकाशवाणी के माध्यम से सबसे अनुरोध है, देखिए किसी भी जब सुलह समझौते से कोई निर्णय निकलता है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो सुलह कर रहा है उसको अपने लीगल ऑप्शंस पता होने चाहिए, उसको अपने केस की मेरिट पता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये ही नहीं पता कि उसका केस कितना स्ट्रांग है या कितना कमजोर है, तो वो कभी भी सुलह समझौते की टेबल पर एक मजबूती के साथ नहीं बैठ सकता, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं लीगल रिप्रेजेंटेशन होना, एक अच्छा कानूनी जानकार होना उस सलाह के लिए, लोक अदालत में पार्टिसिपेशन के लिए, ये आवश्यक है। और अगर आपके पास ऐसा वकील नहीं है तो आप निसंदेह, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, और लीगल एड काउंसिल्स आपकी मदद करने के लिए वहां आपको जरूर मार्क किए जाएंगे।
1: आशीष जी आइए आप एक और प्रश्न ले लेते हैं ठाणे से गुरुनाथ जी का। जी गुरुनाथ जी।
4: नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: मेरा क्वेश्चन था लैंड के बारे में था, जमीन का विवाद है मेरा, मेरा परिवार के अंदर जो है वो, तो उसमें मतलब लोक अदालत में जाने के लिए क्या हम सामने वालों को भी मतलब पार्टी करना पड़ेगा कि हम खुद जाके अपील कर सकते हैं?
1: जी।
4: और मेरा दूसरा सवाल है, इनसे कैसे पता चले कब लोग अदालत लगती है, कोर्ट में जाए उनसे पता चले, यही पूछना था।
0: जी देखिए, आपके दूसरे सवाल का पहला मैं पहले उत्तर दे देता हूँ। जो भी कंसर्न कोर्ट है आपकी, जो भी ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट होगी, आप वहां पर जाएंगे तो एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, लीगल सर्विसेज कमेटी का एक ऑफिस वहां हर कोर्ट में होता है। वो उस कोर्ट में जो नेशनल कैलेंडर है उसके अनुसार कब लोक अदालत आ रही है या कोई स्पेशल लोक अदालत का गठन किया जा रहा है, इस चीज को आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने बोली कि आपका एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए क्या आपको दूसरी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा या खुद भी कर सकते हैं? देखिए इसमें अगर आप लोक अदालत में मामला ले जाना चाहते हैं और दूसरी पार्टी भी एग्री करती है, मैं मान के चलता हूं कि आपने केस ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, तो दोनों पार्टीज अगली डेट पर कोर्ट के सामने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दे सकती हैं। लेकिन अगर अगली पार्टी उस पर एग्री नहीं कर रही है, ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दे रही है, तो भी आप अपने वकील से कहकर एक एप्लीकेशन फाइल करा सकते हैं या ओरल सबमिशन भी कर सकते हैं, और कोर्ट को यदि लगता है कि इसमें एक सुलह समझौते की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है तो वो मैटर लोक अदालत को रेफर कर दिया जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट आपको जो इसका लाभ मिलेगा कि अगर ये मैटर लोक अदालत में सेटल होता है तो एक तो जो बहुत प्रॉपर्टी का मैटर है सालों साल खिंचते हैं इस देश में, तो उसमें आपको जल्दी उस पर त्वरित रिलीफ मिल सकती है जो कि दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगी, और दूसरी की साथ में साथ जो आपने कोर्ट फी फाइल करी होगी अपने केस को फाइल करने के लिए, और वो कोर्ट फी भी आपको अगर मामला लोक अदालत में सेटल हो जाता है तो वो कोर्ट फी भी आपको वापस हो जाएगी। जी
1: आशीष जी, लेकिन अगर एक पक्ष सपोज कीजिए फैसले से खुश नहीं होता है तो क्या वो ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं?
0: देखिए ये कंफ्यूजन काफी लोगों को रहता है
1: जी।
0: लेकिन लोक अदालत का अगर आप नेचर देखेंगे, वहां जो अवार्ड्स का नेचर होता है वो कंसेंट से होता है। कंसेंट का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज टेबल पर साथ में बैठी, उन्होंने अपने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कोई एक ऐसे ऑप्शन पर पहुंचे जो कि दोनों पार्टीज के लिए एक सहमति का पॉइंट बिंदु बन सकता है। अब अगर दोनों पार्टीज किसी मामले को सेटल करती हैं और उस चीज को लेकर सहमत हैं तो कोई भी पार्टी उसको चैलेंज करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो लोक अदालत के जो अवार्ड होते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और ये अपीलेबल नहीं होते हैं। लेकिन एक बहुत ही, जब मैं कहता हूं कि अपीलेबल नहीं होते हैं तो इसका ये मतलब है, केवल इतना मतलब समझिए कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है, लेकिन एक बहुत छोटी सी फाइन डिस्टिंक्शन ये भी है कि जुडिश

0: जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है देश में। जुडिशियल रिव्यू अगर लोक अदालत में भी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जैसे परमानेंट लोक अदालत होती है वहां पर पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन 1 करोड़ होता है, अगर लोक अदालत ने ही अपना ज्यूरिडिक्शन को ब्रीच किया हुआ है या जो अवार्ड आया है वहां उसमें धोखाधड़ी करके अवार्ड आया है, जैसे एक पार्टी बैठी हुई है उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया या एक क्लेम किया जो कि सही नहीं है, गलत है, और इस तरीके से अगर आपने कोई अवार्ड को हासिल किया है तो वो जो सहमति होती है वो मानते हैं कि कंसेंट आपकी विशिएटेड है, और विशिएटेड कंसेंट के आधार पर जो एग्रीमेंट और जो फाइनली लोक अदालत में अवार्ड में कन्वर्ट हो रहा है उसको रिट पिटीशन के थ्रू हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में होता है, लोक अदालत के अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।
1: जी, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से धर्मवीर जी का। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार।
0: नमस्कार धर्मवीर
2: सर, मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे। जैसे कि अगर कोई 33 साल पहले अगर कोई अपराध करके भाग जाता है और उसके साथी पे मुकदमा चलता है, केस चलता है, वो एक्सपायर हो जाता है, जो भागा हुआ मेन अपराधी है उसकी खोज खबर निकालने के लिए हमें उसका क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा या कैसे क्या करना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये है कि जो आजकल दहेज के मामले चलते हैं, जो शादी तो नई नई शादियों के बाद तलाक होने की नौबत आती है, तो ये बहुत अच्छा कानून में थोड़ा सा शुरुआत कर दी है कि मीडिएटर की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई जा रही है, क्योंकि पहले तो बहुत खतरनाक केस माने जाते थे दहेज मामले में, पूरा परिवार अंदर हो जाता था। ये बहुत अच्छा सरकार या कानून ने अच्छा किया कि इसमें बहुत अच्छी तरह से बारीक की जो देख के कुछ काफी हद तक दोनों पार्टियों को, लड़के वालों को ज्यादातर सुविधा मिली है।
0: जी धर्मवीर जी, दोनों सवालों के आप के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि कोई अगर अपराध करके भागा हुआ है और उसका वो उसकी डेथ हो गई है और उसका साथी, मैं मानता हूँ साथी से आपका मतलब को एक्यूज से है, उसको कैसे ढूंढा जाए, तो देखिए ये लोक अदालत में मैटर आएगा या नहीं आएगा ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस था या नहीं था। एक अपराध ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ फाइनेंशियल गबन किया हो, आपने आपके पैसे लेकर भाग गया हो, या आपको लेट से एक छोटी मोटी चोट लगी हो जिसको कि कंपाउंडेबल एक हो सकता है न्यायिक प्रणाली को देखते हुए। इस तरीके के मामलों में तो आप लोक अदालत को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा गंभीर अपराध घटित हुआ है, ऐसा क्राइम घटित हुआ है जिसको जो कंपाउंड नहीं हो सकता, जो पार्टी आपस में सेटल नहीं कर सकती हैं, उस अपराध के लिए लोक अदालत सही फोरम नहीं है, और उसके लिए जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं देश की वही एप्रोप्रिएट फोरम होती हैं। और जब कोई भी एक्यूज्ड अगर नहीं मिल रहा है और काफी समय से एब्सकॉन्डिंग है, तो सबसे पहला एक स्टेप होता है उसको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एक डिक्लेयर कराया जाता है, और उसके बाद आप अपने काउंसिल से सलाह लेंगे। तो लॉ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर देखिए इस चीज की गारंटी तो नहीं होती है कि जो भागा हुआ है वो व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गारंटी इस चीज की होती है कि जो अथॉरिटीज हैं रिस्पॉन्सिबल, क्या वो एक्शन ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। उन अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिलवाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कानून में जिनका की सहारा आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल आपका दहेज उत्पीड़न से, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, मीडिएशन इस समय देश में काफी चर्चा में है और सही कारणों से चर्चा में है। लोक अदालत और मीडिएशन में अगर आप बेसिक अंतर समझना चाहें तो लोक अदालत का जो अवार्ड होता है वो अपने आप में कोर्ट की डिक्री के बराबर होता है और वो इन्फोर्सिबल होता है। मीडिएशन क्या है? मीडिएशन में एक मीडिएटर पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, और जब अगर पार्टीज के बीच में कोई समझौता हो जाता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, ऑप्शंस एक्सप्लोर होते हैं और कोई समझौता हो जाता है, तो उस मीडिएशन एग्रीमेंट को कोर्ट को भेजा जाता है, कोर्ट फिर उसमें ऑर्डर पास करता है, तब वो डिक्री ऑफ द कोर्ट बनता है। इसी तरीके से मीडिएशन एक बहुत ही प्राइवेट प्रोसेस है, एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, जबकि लोक अदालत एक अदालत की तरह खुला एक मंच होती है जिसमें कि जो भी वहां पर मौजूद है वो उन चीजों को फैक्ट के बारे में जान सकता है। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जहां पर कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ है, और उन प्रावधानों के दुरुपयोग को देखते हुए ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं, उन ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाया गया है। अब जहां भी कंपाउंडेबिलिटी की बात आती है फिर लोक अदालत अपने आप में एक सही फोरम बन जाती है। अगर सपोज करिए, देखिए एक ट्रिनिटी ऑफ केसेस की बात होती है लीगल फ्रेटर्निटी में, कि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, एक डिवोर्स का केस चल रहा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस

चल रहा होता है और दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा होता है। ये तीन केसेस आपस में मिलके चल रहे होते हैं। तो कई बार पार्टीज के पास ये ऑप्शन होता है कि आप लोक अदालतों में जाएं या मीडिएशन में जाएं। मीडिएशन भी कई तरीके के होते हैं। एक प्राइवेट मीडिएशन भी हो सकता है जो कि गांव समाज के लोग ही आपस में फैमिली मेंबर्स मिलकर बैठकर पार्टीज को समझा सकते हैं, एक एग्रीमेंट साइन हो सकता है और वो फिर सिविल कोर्ट में चला जाता है।

0: पर जहां कॉम्प्रोमाइज करने की पॉसिबिलिटी कानून के द्वारा दी गई है, वहां पर मीडिएशन को या लोक अदालतों के की फोरम को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। जी धर्मपाल जी।
1: आशीष जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से, श्रीपद झाकड़े जी। जी श्रीपद जी।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम। नमस्कार सर।
0: नमस्कार श्रीपद जी।
2: हाँ, मेरा सवाल यह है कि मैं क्या
1: श्रीपद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपने पीछे रेडियो ऑन किया हुआ है या टीवी ऑन किया हुआ है तो प्लीज।
2: अभी आ रही है आवाज
1: जी? हाँ बताइए।
2: हाँ, मैं मतलब अभी दृष्टिबाधित है, और मतलब हम लोगों के लिए मतलब किस प्रकार कानूनी सहायता मिल सकती है, मतलब क्या क्या प्रेफरेंस मिल सकता है कानूनी सहायता में?
1: कानूनी सहायता में किस तरह का प्रेफरेंस दिया जा सकता है?
0: देखिए, देश में कानूनी सहायता, मैं फिर से ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, यह आपका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट है। अब उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, उस राइट को सबको अवेलेबल कराने के लिए सरकारों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से कई तरीके की व्यवस्था की गई है। जब आप बात करते हैं कि आपको किस तरीके से आप अपने राइट्स को, इन राइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं, तो हर जो भी लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस होता है, वहां पर अगर आप जाकर बात करेंगे तो एक एलिजिबिलिटी लिस्ट होती है। आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई देश का कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, या अदर तरीके से जो डाउनट्रोडन सेक्शन हमारी सोसाइटी का है उसको बिलोंग करता है, और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए जो लीगल एड काउंसिल्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है, और बहुत सारे प्रोविजंस देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें ऐसे किए गए हैं। लेकिन वहां पर जो लोग जो कैपेबल हैं, उन कैपेबल लोगों के लिए शायद उतनी आवश्यकता नहीं है स्टेट की तरफ से मदद के लिए, इसलिए एक फिल्टर लगाया जाता है। एक जो लो इनकम ग्रुप है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है, और अब पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इवन तो चूंकि समय के साथ न्याय इतना महंगा हो चुका है देश में, कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लिए भी लीगल एड के प्रोविजंस हो रहे हैं। तो निसंदेह अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सही लीगल प्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे सामाजिक कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल कारण हो सकते हैं, तो आप जो कंसर्न लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, अगर आपका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है वहां जाइए, या अगर हाई कोर्ट में है वहां जाइए। आपको मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाएगी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं, और आपको एक सक्षम वकील कोर्ट की तरफ से मार्क किया जाएगा।
1: बिल्कुल, और न्याय वैसे भी एक सामाजिक अवधारणा है, और मुझे लगता है कि जब न्याय मिल जाता है किसी को भी, तो जनता जो होती है वो अपने आप ही खुश हो जाती है। आशीष जी, एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से संजय जी का। जी संजय जी।
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
3: संजय दिल्ली से। मैम मेरा सवाल ये है, ये इतने अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो काम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं कर पा रहे, छोटे मोटे मामले लोग अदालतों को दे दे रहे हैं। मेरा मानना है पुलिस वालों को अगर शक्ति दिखाई दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह कई ऐसे बड़े बड़े फैसले दे करके सरकारों के नियम तौर तरीके बदल देते हैं, तो क्यों ना पुलिस वालों के लिए कुछ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये लोग, क्योंकि ज्यादातर
1: जी बीच में ही हमारी कॉल
0: आवाज कट गई, लेकिन जो उनकी मंशा थी पूछने की, क्या पुलिस वालों के ऊपर सख्ती दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं
1: जी।
0: अब इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा कई सारी अपनी जो लीगल अथॉरिटी है उसको वायलेट करते हुए ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस आते हैं, और ये आज की सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा विजिबल भी होते हैं। लेकिन एक ऑल इन कंपासिंग या ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसा कि पुलिस वालों पर सख्ती दिखाई जानी चाहिए, तो देखिए पुलिस वाले भी इसी समाज का हिस्सा हैं, वो भी सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं, और विश्वास मानिए आप जिन पुलिस वालों पर सख्ती दिखाने की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता चलता है कि आपके इलाके से थाने को खत्म कर दिया गया है और दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं,
1: तो और मुश्किल हो
0: जाए। आप खुद अपने आप को पाएंगे कि आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो हर चीज के दो पहलू है, जहां पर कानून का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, वो फिर किसी के द्वारा हो, प्राइवेट सिटीजन के द्वारा हो या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हो, वहां पर कानून को अपना काम

0: करना चाहिए, लेकिन हमें इस चीज को भी समझना चाहिए कि हर पब्लिक ऑफिसर, हर पुलिस वाला भी एक ड्यूटी निभा रहा है। जी
1: जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमाशंकर जी। जी रमाशंकर जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि डिजिटल और साइबर क्राइम, सेक्सुअल क्राइम और रोड एक्सीडेंट के लिए भी लोग अदालतें सक्षम हैं?
0: जी देखिए, तीन तरीके के आपने मुकदमों की बात करी। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक इशू हो सकता है। साइबर क्राइम एक ऐसा भी हो सकता है जहां पर इस कंपाउंड नहीं किया जा सकता है या आपसी सुलह समझौता नहीं हो सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि देखिए साइबर अपराधों की जो डेफिनेशन है, अगर आप उसमें पाएंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए अगर आपको डिसीव किया गया है, आपके साथ चीटिंग करी गई है, आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया गया है, और ऐसा प्रोविजन है कि आप जिस व्यक्ति ने वो अपराध किया है उसके साथ बैठकर मामले को सुलह समझौते से खत्म करना चाहते हैं, वो आपको आपके पैसे लूटे हुए वापस कर देना चाहता है और आप नहीं चाहते कि आगे चीजों को परसू किया जाए, ऐसे कुछ विशेष मामलों में साइबर अपराधों में भी लोक अदालत की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज, आपने मोटर एक्सीडेंट की बात करी। मोटर एक्सीडेंट भी देखिए दो तरीके से केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि अगर आप कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है और किसी ने एक इंटेंशनली उसको एक्सीडेंट कर दिया या लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कर दिया, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट केस हो सकता है। लेकिन मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड आप पाएंगे बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उससे कॉम्पनसेशन की बात हो सकती है। तो ऐसे मामले विशेष रूप से लोक अदालतों में जाते हैं और बहुत ही इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा हुआ है। लेकिन इसी पॉइंट पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपको एक अच्छे जिस जब अगर आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड मामले को लोक अदालत में लेकर जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा काउंसिल भी अपने साथ रखना चाहिए जो कि आपको बता सके कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं। कई बार कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज की जो नेगोशिएशन की पावर होती है वो एक विक्टिम की नेगोशिएशन पावर से बहुत ज्यादा होती है। लोक अदालत में जो भी आपके अवार्ड आते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी आप वहां पर अपने लिए निर्णय लें, जो भी सुलह समझौता करें, वो एक इन्फॉर्म्ड सुलह समझौता होना चाहिए, वो एक इग्नोरेंट स्टेज में लिया गया सुलह समझौता नहीं हो सकता है। तीसरा जो इन्होंने एक तीसरे क्राइम की बात करी, इफ यू कैन रिकॉल इट, आपने एक और क्राइम की बात करी थी।
1: लेकिन हमारे पास समय कम है, हम अगले जो है प्रोग्राम में जरूर इसको शामिल करेंगे, लेकिन अंत में चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे आशीष जी आपसे कि एक नागरिक के रूप में हम कैसे लोक अदालत को सफल बना सकते हैं।
0: देखिए लोग, आज की देश आपकी जो आज सिनारियो है ये इस तरीके का हो गया है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। पहले देश में एक ऐसा सामाजिक एनवायरनमेंट था कि बहुत सारे जो झगड़े थे वो आपस में परिवार और समाज मिलकर ही सुलह कराकर समाप्त कर देता था, लेकिन एक उसका पहलू ये भी था कि बहुत ऐसी सारी जो घटनाएं जो कि रिपोर्ट होनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव में आगे रिपोर्ट नहीं हो पाती थी। अब आज की डेट में आपके सवाल को आंसर करने के लिए एक सिंपल सा मंत्र ये है कि वो ऐसे सारे डिस्प्यूट्स जिसमें कि आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ है, और ऐसा अपराध जहां पर आप आपस में बैठकर चीजों को बात करके शायद एक बेहतर भविष्य के लिए एक ऐसे समझौते की तरफ पहुंच सकते हैं जो कि दोनों पार्टी इसको मंजूर हो, जिस तरीके से पारिवारिक डिस्प्यूट होते हैं, परिवार में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी होते हैं, उन चीजों को देखते हुए आप इन मामलों को लोक अदालत में लेकर जाए और खुले मन से जाए, खुली सलाह के साथ जाए, और आपको वहां सफलता मिलेगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। तो इसके साथ ही फरहत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है नौटंकी, हम सुधरे और जग सुधरे। लेखक हैं सत्यनारायण कैशोरैया, प्रस्तुति राम गोपाल की है।

भैया फंसे जो पोस्ट की चक्कर। भैया एक नशा पोस्ट का भी होता है, जो लेते हैं वो समझते होंगे।

0: चाची राम ढकेली काहे की चिंता में घुली जा रही हैं?
1: बेटा सुखलाल, अरे मेरी चिंता तो ये है, सुन, दूबर रहना है आज।

0: भैया आज की नारी कैसी है? आज की आग लगावे कोई कुआ गिर जावे, कोई ग्रह कलेश मचावे, चाहे दिलवा दे मान चाहे चोरे में दुखी करावे।
1: भैया आ जावे गाजा।

0: योगी महाराज जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
1: आयुष्मान भव।
2: महाराज आज के समाज में ही का है रोय।
1: सुनो बच्चा,

अभी आप सुन रहे थे नौटंकी, हम सुधरे और जग सुधरे। लेखक थे सत्यनारायण कैशो रैया, प्रस्तुति राम गोपाल की थी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

समवेत स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। रचना थी पुष्पा अवस्थी की। समवेत स्वरों में आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, रचना गोपाल रंजन सिन्हा की है।

0: इसी के साथ देशकान का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल

0: गुजरात यात्रा पर रहेंगे श्री मोदी। राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Defence Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the Council held today under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
4: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement.